मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज के साथ डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 21 मई सन 2026। सुबह के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर

0: आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा, कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और सीपीआईएम ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
2: प्रातः बेला की आराधना वंदना।

हमारी अपनी जन्मभूमि जहां हमने जीवन पाया, ये हमारी ही कर्म भूमि है जहां हम जीवन की संभावनाएं और स्वप्न साकार करते हैं, जिसके कण कण पर हमें अभिमान है और जो हमारा गौरव भी है। अपना सर्वस्व देकर भी इसका सम्मान और सुरक्षा हमारा ध्येय है।

इस जीवन यात्रा में हम सब मुसाफिर हैं। यात्रा का अपना सौंदर्य है तो कठिनाइयां भी, आकर्षण है तो मोह लोभ के फंद भी। यात्रा की सफलता की पहली शर्त चलते रहना है वक्त के साथ, तो सार्थकता इस बात में कि हर पल को जी सकें, उसके आनंद को महसूस कर सकें।

जीवन सफर में हम सब अनेकानेक नेह के संबंध बांधते हैं, बनाते हैं और उन्हीं में अपना जीवन का सार पा लेते हैं। कर्म और कर्तव्यों की ये राह भी उसी परमपिता तक पहुंचती है जो इस जीवन को रच

मन ही जीवन दर्पण है, जिसकी उजास जीवन की राहों को आलोकित करती है, तो वहीं मन के अंधेरे हर जगमग को ढक लेते हैं। हे ज्योतिर्मयी, मन को प्रकाशित करो, रोशनी दो।

उस परम शक्ति के सम्मुख हम सब समंदर में बूंदों सदृश हैं, अपने समस्त आग्रहों के साथ नतमस्तक हैं। हमारी गलती, कमी, कमजोरी बिसरा कर हमें अनुग्रहित करें।

सकल जगत में एक ही शक्ति, एक ही चेतना, एक ही सत्य, एक ही परमात्मा है। उसे जिस दृष्टि से देखो वही दिखाई पड़ता है, जिस भावना से पूजो उसी रूप में मोहता है।

कार्यक्रम वंदना में आप सुन रहे थे सविता देवी, मुकेश, जगजीत सिंह, सुरेश वाडकर और साथियों को। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान, स्वर सुरेश वाडकर का है, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का।

एक दिन काकभुशुंडी सुमेरु पर्वत के शिखर पर वट वृक्ष के नीचे बैठे लोमश ऋषि के पास जा पहुंचे। उनकी विनम्रता देख और दीन वचन सुनकर ऋषि ने उनके वहां आने का उद्देश्य पूछा। ब्राह्मण रूप काकभुशुंडी ने ऋषिवर से सगुण ब्रह्म की आराधना का ज्ञान देने की प्रार्थना की। मुनिवर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कहीं। कई उपमा उपमेयों द्वारा लोमश ऋषि ने ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण किया, फिर भी निर्गुण ब्रह्म मत काकभुशुंडी के हृदय में नहीं बैठ पाया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। अब समय है आज के चिंतन का। आलेख डॉक्टर सुरेश सम्राट का है।
1: व्यक्ति का अपने कुछ होने और उसको प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति का नाम ही अहंकार है। इसके अपने अपने पैमाने हैं। यह प्रवृत्ति धन दौलत और वैभव के साथ फलती फूलती रहती है। इससे स्पष्ट है कि गरीब दरिद्र सच्चा साधु और सज्जन ही इस प्रवृत्ति से बच पाते हैं। असल में यह अहम ही अहंकार की जड़ होता है, जिसका उद्देश्य संग्रह और संचय करके सब कुछ पाने की ओर भागते रहना ही है। अहंकारी व्यक्ति हमेशा पाना ही चाहता है, देना उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। इसीलिए अहम की भावना को अक्षम्य व्यवहार की श्रेणी में रखा गया है। यह वह भावना है जिसे किसी आहार या रसद की जरूरत नहीं होती। एक बार यह व्यक्ति के चरित्र में प्रवेश कर जाती है तो फिर उसे पूरी तरह अपनी गिरफ्त में लेकर ही छोड़ती है। यहाँ तक कि व्यक्ति इसके मोह जाल में फंसकर अपने पतन और उत्थान की पहचान करना ही भूल जाता है। अहंकार स्वार्थ की तरफ ऐसे भागता है जैसे चुंबक लोहे की तरफ। अहंकारी रात दिन अपने धन बल वैभव और यश के मद में इतना डूब जाता है कि उस पर अहंकार नशे की तरह छाया रहता है। अहंकारी व्यक्ति को पहचानना कठिन कार्य नहीं। अहंकारी व्यक्ति किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं होता। वह हमेशा चाहता है कि लोग उसके प्रति कृतज्ञ हों, उसकी प्रशंसा करें, उसका गुणगान करें, उसके कथित एहसानों को माने। वह यह सिद्ध करना चाहता है कि हर वैभव को प्राप्त करना उसका हक है और उसकी कृपा पाना दूसरों की नियति। वह दूसरों की सफलता, उपलब्धि और प्रशंसा सुनकर ईर्ष्या से आग बबूला हो जाता है और फिर उसे नीचा दिखाने की रणनीति बनाने लगता है। इतिहास ने भी हमेशा इस बात को दोहराया है कि अहंकार का अंत बुरा होता है। उसके द्वारा ऐसे अनिष्ट भी होते हैं जो दूसरों के लिए कष्टकारी होते हैं। अहंकार के कारण ही बड़े बड़े युद्ध हुए और मानवता तक उसकी क्रूरता से नहीं बच सकी। अनेक अत्याचारों की जड़ में यही अहंकार प्रमुख कारण होता है। अहंकार और उसके परिणामों को लेकर यह सब ज्ञान होते हुए भी व्यक्ति अहंकार से नहीं बच पाता। यह बिंदु हर दौर और हर युग में चिंतन का विषय रहा है। धर्म, आध्यात्म और साहित्य में अहंकार का घोर तिरस्कार होते हुए भी व्यक्ति इससे क्यों नहीं बच पाता, यह वर्तमान में भी शोध और चिंतन का विषय बना हुआ है। प्राचीन काल से ही वेद, उपनिषद, नीतिशास्त्र, चिंतक और विचारक अहंकार के प्रति लोगों को सजग करते रहे। इसके बावजूद गुरु योग वशिष्ठ ने इस प्रवृत्ति की व्यापकता को देखते हुए यहाँ

0: तक कहा कि जिसने अहंकार को छोड़ दिया वह भवसागर तर गया। वर्तमान जीवन शैली में दिखावा और वैभव ऐसे आकर्षण हैं जिनसे बच पाना मुश्किल है। धन, बल और यश इसी राह की मंजिलें हैं और यही राह व्यक्ति को अहंकार की ओर ले जाती है। दिखावा और वैभव के प्रति आकर्षण समाज में जितना व्यापक है, अहंकार भी उसी औसत से व्यापक है। किसी को पद का अहंकार है तो किसी को धन बल का, कोई अपने वैभव पर इठला रहा है तो कोई प्रशंसा पर। कहने का तात्पर्य यह है कि अहंकार अब एक आम प्रवृत्ति बन गई है। इसका कारण सामाजिक मनोविज्ञान भी है। समाज में अहंकार के प्रसार की गहनता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब दूसरे का अहंकार बुराई की वजह से असहनीय नहीं लगता, वरन वह इसलिए असहनीय लगता है कि वह स्वयं के अहंकार को आहत करता है। अब स्थिति अहंकार से अहंकार के टकराने की है, जो किसी भी समाज के लिए हितकारी नहीं हो सकती। शायद इसीलिए प्रख्यात लेखक टॉलस्टॉय ने कहा था, अहंकारहीन जीवन लगभग असंभव है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि यह जानते हुए भी कि अहंकार जितना बड़ा होता है मनुष्य उतना ही छोटा होता है, व्यक्ति अहंकार के जाल में फंसता चला जाता है। आज घर, परिवार, पड़ोस और समाज के अनेक विवादों का कारण यही अहंकार है। हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि झगड़ा कुछ नहीं, केवल प्रतिष्ठा की लड़ाई है, तो किसी विवाद के पीछे सच यूँ सुनाई देता है कि कुछ नहीं, दोनों पक्षों का अहम टकरा रहा है। इतनी बुराइयों की जड़ अहंकार से मुक्ति पाना कोई कठिन कार्य नहीं है। मात्र सादा जीवन, उच्च विचार के मार्ग पर सच्चे हृदय से चलकर इस ग्रंथि से मुक्ति पाई जा सकती है।
1: ये था आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। समय है आज की कृषि चर्चा का, जिसका विषय है गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल। वार्ताकार हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा।
2: नमस्कार किसान भाइयों, आज जो चर्चा हम करने जा रहे हैं उसका विषय है गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल। गर्मी का मौसम मनुष्य के साथ साथ पशुओं के लिए भी अत्यंत कठिन होता है। अधिक तापमान, तेज धूप और गर्म हवा के कारण पशुओं में तनाव बढ़ जाता है, जिससे पशु का दूध उत्पादन तथा कई प्रकार की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। यदि हम इस मौसम में पशुओं की उचित देखभाल करें तो हम दूध उत्पादन एवं पशुओं के का स्वास्थ्य दोनों को अच्छे बना रख सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी और इसमें मुख्य जो सावधानियां हैं, सबसे पहला आपको पशु के लिए उचित हवादार आवास की व्यवस्था करनी है। उसके साथ ही उस पर जो उसकी छत होती है आपके आवास की, उस पर घास फूस डाल दीजिए, या आप जो पहले के समय पे कच्चे कोलू बनते थे मिट्टी के, उससे उस छत को ढक दीजिए, ताकि जो सूर्य की किरणों से उस पशु आवास का तापक्रम बढ़ता है, उस तापक्रम को हम नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरी बात, पशु का खान पान बहुत आवश्यक चीज़ है। जिस तरह से हम लोग भी, हमारी भी खान पान की जो मात्रा होती है सर्दी में ज़्यादा रहती है, गर्मी में कम होती है, उसी तरीके से पशु भी गर्मियों में अपना खाना दाना जो भी खाता है वो खाता तो है, लेकिन उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो हम इस चीज़ का ध्यान दें कि पशु को हमेशा एक पौष्टिक आहार, और पौष्टिक आहार में आप हरे चारे का समावेश अवश्य करें, क्योंकि हरे चारे में 90% से ज़्यादा पानी होता है, जो कि उस पशु के शरीर के तापक्रम को मेंटेन करने के लिए, इसके साथ साथ उसके भोजन को पचाने के लिए अति आवश्यक होता है। इसी के साथ हम थोड़ा जो पशु को दाना वगैरह देते हैं उसमें थोड़ा नमक अवश्य मिला दें। इसका मुख्य प्रभाव जो पड़ता है हीट स्ट्रेस का, जिसको कि हम बोलते हैं पशु गर्मी से तनाव, और उस तनाव की वजह से उसका जो हार्मोन रिलीज होते हैं पशु के शरीर में वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, और उनके इम्बैलेंस होने की वजह से हमारा उत्पादन, दूध का उत्पादन कम होता है। इसके बचाव के लिए आप पशुओं को छायादार जगह पर रखें, दोपहर में धूप में या गर्मी में चराने के लिए नहीं ले जाएं। पशुओं के शरीर पर ठंडे पानी का छिड़काव करें। अगर स्थिति ज़्यादा बिगड़ती है तो हम इलेक्ट्रोल पाउडर का घोल बना के और पशुओं को पिला भी सकते हैं। इसके साथ ही हम रोग नियंत्रण एवं स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि विशेष रूप से आपने

0: देखा होगा गर्मी के समय पे मक्खी मच्छर ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इनके इनका प्रकोप को कम करने के लिए हमें पशुशाला की नियमित सफाई करनी चाहिए। गोबर और गंदे पानी का उचित तरीके से निपटान करें। समय समय पर कृमिनाशक दवाएं पशुओं को अवश्य दें तथा बीमार अगर कोई पशु हो जाता है तो उसको स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अब दूध उत्पादन बढ़ाने के सुझाव, क्या कर सकते हैं हम गर्मियों में ताकि दूध उत्पादन बढ़े। पशु को तनाव मुक्त रखें, नियमित समय पर उसकी मिल्किंग करवाएं, संतुलित पशु आहार दें और स्वस्थ और ठंडा वातावरण उनको उपलब्ध कराएं ताकि पशु गर्मी की वजह से उसके ऊपर जो विपरीत प्रभाव पड़ते हैं शरीर पे उनसे हम बचाव कर सकते हैं। तो सभी पशुपालक भाइयों से निवेदन है कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। आज की कृषि चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।
1: आकाशवाणी भोपाल से अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। हमारा अगला प्रसारण इस छोटे से अंतराल के बाद होगा।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल।
4: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज है। भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
8: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: निकल पड़े, घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर, तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
2: ये आकाशवाणी भोपाल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
3: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पंचराष्ट्रयात्रायाः पंचमं अंतिमं च चरणं सफलतया संपाद्य इटली देशात् नवदिल्लीं प्रत्यागतवान्। ह्यः भारत इटली देशयोः मध्ये विशेष रणनैतिक सहयोगरूपेण स्वसंबंधस्य उन्नयनस्य घोषणा अभवत्। कृषिः, महत्वपूर्ण खनिजाः, आयुर्वेदः, विज्ञानं, तंत्रज्ञानं इत्यादिषु अनेकेषु क्षेत्रेषु द्वयोः देशयोः मध्ये अनेकाः सन्धयः हस्ताक्षरिताः। कर अपराधानां, धनशोधनस्य, आतंकवित्तपोषणस्य च निवारणार्थम् अपि राष्ट्रद्वयेन ज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षरं जातम्। इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह रोम नगरे संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ नौकावहन क्षेत्रेषु नौकापत्तनानां आधुनिकीकरणे, रसद क्षेत्रे नील अर्थव्यवस्थायां च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः।
4: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
3: इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्येषा वदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धमानः अस्ति, अपि च उभौ देशौ उन्नत निर्माणस्य, आधारभूत संरचनायाः, ऊर्जायाः, अर्थव्यवस्थायाः, रक्षायाः च क्षेत्रेषु परिश्रमेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। भारतम् इटली च सांस्कृतिक विनिमयं प्रवर्धयितुं, प्राचीन सभ्यतानां मध्ये संवादं सुदृढं कर्तुं च 2000 27वं वर्षं संस्कृतेः पर्यटनस्य च वर्षरूपेण आचरिष्यतः। इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया उक्तं यत् एषः उपक्रमः द्वयोः

0: देशयोः मध्ये परस्परम् अवगमनं गभीरं कर्तुं सांस्कृतिककूटनीतिञ्च अधिकं सुदृढं कर्तुं साहाय्यं करिष्यति। सा अवदत् देशयोः मध्ये सुदृढतरसम्बन्धाः न केवलं राजनैतिक आर्थिकसम्बन्धैः अपि तु जनानां समाजानाञ्च मध्ये सम्पर्कस्य माध्यमेन अपि मापिताः भवन्ति। प्रधानमन्त्रिणे श्रीनरेन्द्रमोदिने इटली देशस्य रोम नगरे खाद्य कृषि संघटनेन प्रतिष्ठितं एग्रिकोला पदकं प्रदत्तम्। पुरस्कारं प्राप्य श्रीमोदी भारतस्य कोटि कोटि कृषकाणां पशुपालकानां मत्स्यपालकानां कृषि वैज्ञानिकानां श्रमिकाणाञ्च कृते एतत् सम्मानं समर्पितवान्। पदकमिदं खाद्य कृषि संघटनस्य महानिदेशकेन प्रदत्तम्। गृहमन्त्री अमितशाहः, वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् तथा वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः प्रधानमन्त्रिणः कृते एग्रिकोला पदकं प्राप्त्यर्थम् अभिनन्दनं कृतवन्तः। गृहमन्त्री अमितशाहः अवदत् यत् भारतं कृषिक्षेत्रे वैश्विकनेतृत्वेन उद्भूतम् अस्ति तथा च देशस्य कृषिप्रतिरूपं समग्रविश्वस्य कृते एकं मानदण्डं स्थापयति। पश्चिमबङ्गालराज्ये दक्षिणचतुर्विंशतिः परगणमण्डलस्य फाल्टा विधानसभाक्षेत्रे पुनर्मतदानम् अधुना 7 आरभ्यते, यद्धि सायं 6 समाप्तं भविष्यति। आहत्य 6 सौभाग्यस्य प्रतीक्षां कुर्वन्ति, येषु 2 निर्दलीयौ अपि स्तः। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन रक्तवर्णीयसञ्चेतना प्रख्यापिता यत् उत्तरप्रदेशस्य मध्यप्रदेशस्य विदर्भस्य च भागेषु आगामिदिनत्रयं यावत् तापतरङ्गतः तीव्रतापतरङ्गस्य स्थितिः भवति। विभागेन अनुमानितं यत् हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आन्ध्रप्रदेश, हिमाचलप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलङ्गाना, उत्तराखण्डे च एतादृशाः एव परिस्थितयः सम्भवन्ति। IPL इति 20-20 क्रिकेट् लीग् प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ कोलकाता नैट् रैडर्स् दलेन मुम्बई इण्डियन्स् दलं 4 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 गुजरात् टैटन्स् दलम् अहमदाबाद् नगरे चेन्नै सुपर् किङ्ग्स् दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: भारत और इटली ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों देशों की प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति

को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान उग्रिक ओला मेडल से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर सीमा सुरक्षा में बाधा डालने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अब भी खुला है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल शाम मुंबई पहुंचे। साइप्रस का शिष्टमंडल आज दिल्ली के लिए रवाना होगा। साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी कल मुलाकात करेंगी। ये राजकीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा के एक साल से भी कम समय बाद हो रही है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में सीरीज का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। पेश है आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के संबंध में भारतीय होटल प्रबंध संस्थान के वरिष्ठ व्याख्याता श्री अंकुर किशोर और सुश्री तरु सक्सेना से चर्चा। मध्य प्रदेश की पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हस्तियों पर बनाई फिल्मों के बारे में मशहूर फिल्म मेकर श्री राजेंद्र जांगले से एक मुलाकात होगी। साथ ही आप सुनेंगे खेल एवं युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश के खेल फिजियोथेरेपिस्ट श्री हरि ओम परमार से खेल दुर्घटनाओं और उनसे बचाव के तरीकों पर बातचीत। सुबह 8:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग सुनवाया जाएगा। 9:02 पर फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकेंगे। 9:15 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राधा कुलकर्णी की गाई चंद गजलें। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे कमर जमाली का लिखा नाटक खुशबू का नगमा, प्रस्तुति चितेंद्र स्वरूप राजन की होगी। रोजाना की तरह जिले की चिट्ठी सुनिएगा सुबह 10:00। 10:05 पर फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर सुनवाया जाएगा। दिन में 11:00 आकाशवाणी भोपाल से आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। श्रोताओं, आपको याद दिला दें कि फोन इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग हम रोजाना सुबह 10:30 से 11:00 के मध्य करते हैं। दिन में 12:00 और 2:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। दिन में 12:30

नेट पर संग्रहालय से कार्यक्रम होगा, जिसमें इन दिनों आप सुन रहे हैं पंचतंत्र। आज सुनिएगा इसकी 8वीं कड़ी। दिन में 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम होगा युववाणी। इन चारों कार्यक्रमों में प्रस्तुति आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की होगी। दिन में 2 बजे, शाम 5:33 पर, रात्रि 8:15 और रात्रि 9:30 पर चित्रपट संगीत का आनंद श्रोता ले सकेंगे। शाम 6 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनवाया जाएगा।

शाम 7:21 पर ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम होगा ग्राम लक्ष्मी। आज सुनिएगा पोषण का खजाना मिलेट्स विषय पर अरुणा सोमकुंवर से ली गई भेंट वार्ता। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे सुर्खियों में, रात्रि 10 बजे आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुनवाया जाएगा। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा राग रजनी। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित उल्लास कासलकर का ख्याल गायन, राग होगा यमन। ये थे आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत और इटली के बीच कृषि, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने कई समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली में प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। राज्य सरकार ने नई तबादला नीति को दी मंजूरी, 1 जून से होंगे तबादले। और प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी अब 28 मई तक होगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों के आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली दौरा पूरा कर नई दिल्ली लौट आए हैं। भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, समुद्री परिवहन और बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया, जिससे कुशल स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए नए अवसर खुलेंगे। भारत और इटली ने टैक्स से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस बयान में कहा कि भारत इटली संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना 2025 से 2029 दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एक व्यवहारिक और भविष्य उन्मुखी रोडमैप देखी। श्री मोदी ने यह भी बताया कि भारत इटली रक्षा औद्योगिक रोडमैप ने रक्षा क्षेत्र में मिलकर विकास करने और मिलकर उत्पादन करने के नए रास्ते खोल दिए हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।

0: हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी समझौते, भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जा सके और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि देशों के रिश्ते केवल राजनीतिक और अर्थव्यवस्था से नहीं बल्कि लोगों और समाजों की आपसी जुड़ाव से भी मजबूत होते हैं। सुश्री मेलोनी कल रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और इटली, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली के रोम में स्थित खाद्य और कृषि संगठन एफएओ के मुख्यालय में प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने पुरस्कार ग्रहण करते हुए इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। श्री मोदी को ये मेडल एफएओ के महानिदेशक क्यू डोंग्क्यू ने प्रदान किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पुरस्कार खाद्य सुरक्षा, सतत विकास और मानव कल्याण के प्रति भारत की अट्यूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
0: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: इंदौर में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की दो दिवसीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिक्स देशों की जनसांख्यिकीय ताकत उन्हें कामकाज के भविष्य को आकार देने का अवसर देती है। हमारे ब्रिक्स देश मिलकर दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कौशल विकास, डिजिटल समावेशन और उद्यम आधारित विकास पर केंद्रित प्रयासों के माध्यम से सम्मानजनक रोजगार के अवसरों का विस्तार करने और दुनिया के सबसे जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक का निर्माण करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य सरकार ने नई तबादला नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत 1 जून से 15 जून के बीच तबादले किए जा सकेंगे। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री की मंजूरी से होंगे, जबकि प्रथम श्रेणी अधिकारियों के लिए मुख्यमंत्री की स्वीकृति जरूरी रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 30,055 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृतियां दी गईं। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन के लिए 15,184 करोड़, किसानों की फसल बीमा योजना के लिए 11,608 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक अगले वर्ष उज्जैन में होगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 19 मई को बस्तर में परिषद की 26वीं बैठक में इस आशय की सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक लेने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारी को लेकर हो रही व्यापक नागरिक व्यवस्थाओं, मानव प्रबंधन और आपदा प्रबंधन का भी मुआयना करेंगे। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए जिन किसानों के स्लॉट 23 मई तक बुक हो चुके हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। अब सरकार उनका गेहूं 28 मई तक खरीदेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

0: ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मध्यप्रदेश सरकार के प्रयास से इस साल 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन होगा, इससे किसानों को बड़ा फायदा पहुंचेगा।
1: 23 तारीख का समय पूर्व निर्धारित था, मुझे किसानों की ओर से बताया गया कि स्लॉट जिनने बुक कर लिए लेकिन लाइन लंबी लग रही है, तो किसानों के लिए और गुंजाइश देते हुए हमने कहा जिनके भी स्लॉट बुक हुए ऐसे सभी किसानों से हम माल खरीदेंगे, इसलिए उसकी तारीख 23 तारीख से बढ़ाकर 28 मई तक करने की मैं घोषणा कर रहा हूँ। हमारे अपने कमिटमेंट है किसानों के साथ, हमारी अपनी किसानों हितैषी सरकार है, किसानों के लिए किसान, गरीब, महिला, युवा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम चारों वर्गों की चिंता करते हैं।
0: आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल अपने घरेलू मैदान ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। आज के मैच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अभान सिंह पवैया ने कल ग्वालियर में आदर्श गौशाला लाल टिपारा के बायोगैस प्लांट का जायजा लिया। खंडवा के खालवा विकासखंड की ग्राम रोशनी में कल जनजातीय कार्य विभाग मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने 1,36,00,000 रुपए लागत के इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर का लोकार्पण किया। आगरमालवा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राही किसानों के लिए 30 जून तक बायोमेट्रिक ई केवाईसी अभियान संचालित किया जा रहा है। झाबुआ कलेक्टर ने उद्यानिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं, आगामी प्रस्तावों और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की समीक्षा बैठक ली। मंडला में जिला पंचायत द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। निवाड़ी कलेक्टर जमुना भिड़े ने अधिकारियों से कहा है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का विभाग द्वारा पंचायतों में प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। खरगोन जिले के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 26 मई को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश और प्रधान जिला न्यायाधीश आनंद कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में दत्तक शिशुगृह शाजापुर में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। पेश है दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
1: नमस्कार भोपाल के सभी सुनने वालों को संजय श्रीवास्तव का नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इन दिनों एक ही जुमला सबकी जुबान पर है और वो है उफ गर्मी, हाय गर्मी। और हो भी क्यों ना, आखिर तापमान 40, 42, 44, 47 डिग्री तक जो पहुंच रहे हैं। और दिन भर पंखे, कूलर, एसी, ठंडा, लस्सी, आम का पना, गन्ने का रस, कोल्ड ड्रिंक, बस यही सब चल रहा है ना। और मौसम विभाग के मुताबिक अभी आने वाले कई दिन तपिश भरे होंगे, तो गर्मी के इस मौसम में अपनी सेहत का पूरा पूरा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और कोशिश ये भी कीजिएगा कि इन दिनों चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के उद्देश्यों को भी सार्थक बनाने के लिए अपना हाथ बढ़ाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चंद्रोज के बाद मानसून की आमद हो जाएगी, और उससे पहले यदि हम अपने जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी इत्यादि की साफ सफाई कर लें तो ये जल संचयन के लिए एक बड़ी पहल होगी। इन दिनों जल स्रोतों की स्वच्छता को लेकर एक मुहिम भी चल पड़ी है और बड़े स्तर पर लोग एक साथ मिलकर अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि यदि हमने बारिश के पानी का ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह कर लिया और कैच द रेन के फॉर्मूले को अपना लिया तो बारिश के बाद आने वाले कई महीनों तक हम जल संकट से मुक्ति पा सकते हैं और खुशियों को डगर पर बढ़ सकते हैं, गीत गाते, गुनगुनाते।

तो नमस्कार, भोपाल की महफिल का आगाज हो चुका है। सुनते हैं ये पहला तराना हरिहरन और लता मंगेशकर की आवाज में। डर फिल्म का गीत है, संगीत शिव हरी का।

0: हमें उम्मीद है कि आप होंगे अपने रेडियो सेट के नजदीक या फिर न्यूज ऑन एआर एप्लीकेशन मीडियम वेव के साथ साथ डीटीएच पर भी सुन रहे होंगे, साथ ही ओटीटी वेब से भी हमारा जो ऐप है उस पर भी सुन रहे होंगे। नमस्कार भोपाल, तो सुनते रहिए और बने रहिए हमारे साथ 8 बजे तक। आज आपके लिए आ गए हैं नमस्कार भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस आज मनाया जा रहा है, उससे जुड़ी कुछ खास बातें आप तक पहुंचाएंगे। पद्मश्री सम्मान प्राप्त मध्य प्रदेश की विभूतियों पर फिल्म निर्माण किया है राजन जांगले जी ने, उनसे करेंगे छोटी सी मुलाकात। और खेल फिजियोथेरेपिस्ट हमारे साथ होंगे हरिओम परमार। बस बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए अपना मनपसंद कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
1: सभी सुनने वालों को स्वानंद किरकिरे का प्यार भरा नमस्कार, और इस वक्त आप सुन रहे हैं नमस्कार भोपाल।

इस अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का ज्ञान और मनोरंजन से परिपूर्ण विविध रंगी कार्यक्रम में, जिसका नाम है नमस्कार भोपाल। सुबह के 7:26 हुए हैं। देखते हैं समाचार पत्रों की ताजा तरीन खबरें। पहली खबर है, भारत इटली में स्पेशल पार्टनरशिप, मोदी को मेलोनी ने हिंदी में कहा परिश्रम से सफल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और इटली के बीच स्पेशल रणनीतिक पार्टनरशिप का दौर शुरू हो गया है, ये और मजबूत होगा। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा के दौरान बुधवार को संयुक्त बयान जारी करने के दौरान इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने इटालवी भाषा में दिए अपने संबोधन में अचानक हिंदी बोलकर सभी को चौंका दिया। मेलोनी ने कहा कि मैं जानती हूं कि परिश्रम शब्द का भारत में बहुत चलन है। उन्होंने हिंदी में कहा परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। नई तबादला नीति 2026 पर कैबिनेट ने लगाई मुहर, 1 से 15 जून तक हो सकेंगे तबादले। मध्य प्रदेश में राज्य शासन के अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण अगले महीने होंगे। इसके लिए बुधवार को कैबिनेट ने नई तबादला नीति 2026 पर मुहर लगा दी है। नई तबादला नीति के अनुसार अब 1 से 15 जून की अवधि में विभागीय स्तर पर कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जा सकेंगे। हालांकि ये नीति मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा के अलावा मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और मंत्रालय में लागू नहीं होगी। और भारत से उपलब्धि भरा समाचार है, 300 किलोमीटर दूर दुश्मन के लक्ष्यों का नामोनिशान मिटा देगा भारत का सूर्यास्त्र। भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाली एक बड़ी कामयाबी सामने आई है। उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में निजी क्षेत्र की प्रमुख

0: सुरक्षा कंपनी नीवे लिमिटेड ने लंबी दूरी के सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण भारतीय सेना की ओर से कंपनी को दिए गए खरीद ऑर्डर के तहत किया गया है। 18 और 19 मई के हुए इन परीक्षणों में 150 और 300 किलोमीटर मारक क्षमता वाले रॉकेटों ने लक्ष्य पर सटीक प्रहार कर अपनी क्षमता को साबित किया। और खेल जगत की बात करते हैं तो आईपीएल में सुस्त बैटिंग से पस्त हुई मुंबई। आईपीएल 19 के 65वें मुकाबले में 4 विकेट की जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स ने प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा है। कोलकाता ने घरेलू मैदान ईडन गार्डन्स पर मुंबई को 4 विकेट से हराया। मैच में कोलकाता को 148 रन का मामूली लक्ष्य मिला था, जो उसने 6 विकेट के नुकसान पर 19वें ओवर में हासिल कर लिया। और मौसम के मिजाज कह रहा है कि मध्य प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट, खजुराहो में 47 और नौगांव में पारा 46 डिग्री। भोपाल में बुधवार को अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, न्यूनतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक दतिया, भिंड, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी के लिए गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम की इस गर्म मिजाज को देखते हुए अपना ख्याल जरूर रखिएगा। ये थी समाचार पत्रों की ताजा तरीन खबरें। यदि आप किसी भी साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन से जुड़े हैं, जनहित में आपका कोई कार्यक्रम है, तो उसकी सूचना हम तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि आपको पता ही है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पहुंचते हैं दूर दूर तक। तो जारी है नमस्कार भोपाल की महफिल, इसमें उपयोगी जानकारियां तो होती हैं, होता है आपका स्वस्थ मनोरंजन भी। तो चलिए आपकी रुचि का ख्याल रखते हुए पेश है ये गीत।
1: हम बात करें

0: जारी है नमस्कार भोपाल की महफिल। कुछ ही पलों में हम बात करेंगे आज के खास दिन इंटरनेशनल टी डे की।
1: सभी सुनने वालों को स्वानंद किरकिरे का प्यार भरा नमस्कार और इस वक्त आप सुन रहे हैं नमस्कार भोपाल।
0: नीटिंग किया है आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी भोपाल का लोकप्रिय कार्यक्रम समझ जारी है नमस्कार भोपाल और सुबह के 7:33 और 27 सेकंड हुए हैं। नमस्कार भोपाल में क्यों ना अब गर्मा गर्म चाय हो जाए। आप कहेंगे कि इस गर्मी के मौसम में कुछ ठंडे की बात कीजिए ना, भाई आपका कहना वाजिब है, लेकिन आज 21 मई का दिन समर्पित है चाय को, क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। चाय जो हमारी जिंदगी में इतनी करीब से जुड़ चुकी है कि उससे जुदा होना मुश्किल है। सुबह को तरोताजा करने से लेकर दिन भर ऑफिस में, गली के नुक्कड़ पर, कभी रेस्तरां में तो कभी दूसरे मौकों पर, सफर में चाय हमेशा हमारे साथ होती है। आज इंटरनेशनल टी डे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं होटल प्रबंध संस्थान के सीनियर लेक्चरर अंकुर किशोर और तरु सक्सेना।
2: इस साल अगर हम बात करें टी डे मनाने की, इस बार का थीम है वो है सस्टेनिंग टी सपोर्टिंग कम्युनिटीज, जिसका मतलब है हम टी के माध्यम से जो छोटे हमारे वेंडर्स हैं, खेती कर रहे हैं, हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं और उनको बढ़ावा देना चाहते हैं। तो सिर्फ अपने लिए नहीं, सुबह हम उठे और हमें रिचार्ज होना है इसलिए हमने टी उठाई, लेकिन हाँ इसलिए भी टी को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना है ताकि छोटे लोकल कम्युनिटीज़ को भी बढ़ावा दिया जा सके।
0: तो ये तो थीम वाली बात होगी। अंकुर जी से मैं जानना चाहता हूँ कि जब से चाय की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर हमने देखा है कि चाय को विस्तार ही मिला है, कभी उसकी कमी हमें महसूस नहीं हुई है। हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर हम देख सकते हैं कि एक चाय की दुकान तो होती है। आप चाय को किस रूप में परिभाषित करना चाहते हैं?
3: जी देखिए, चाय की जो हिस्ट्री है वो बहुत ओल्ड है। अगर आप इसकी ओवरऑल हिस्ट्री देखते हैं तो इट वाज स्टार्टेड इन चाइना। इसका 5000 ईयर ओल्ड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। चाइना की डोमिनेंस को खत्म करने के लिए ब्रिटिशर्स ने इसको इंडिया में स्टार्ट किया, बिकॉज जो पहली चाय जो बनी थी वो चाइनीज एक किंग थे, कहीं से एक चाय का पत्ता उड़ के पानी उबाला हुआ था, उस पानी में आ गया था। तो जब उन्होंने उसको टेस्ट किया तो उनको ऐसा लगा कि इसके बहुत सूदिंग बेनिफिट्स हैं और बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। फिर उन्होंने बोला कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए और उसको लोगों को पिलाया, तो लोगों ने बहुत पसंद किया और अप्रिशिएट किया। और उसके बेनिफिट्स जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, जैसे कि मेंटल स्ट्रेस कम करती है और आपकी स्ट्रेस खत्म होती है, Type 2 diabetes में भी अगर आप देखते हैं तो अगर आप एक लिमिट तक लेते हैं तो उसके बेनिफिट्स हैं। और इंडिया में असम, दार्जिलिंग, इन एरियाज़ में बहुत वाइडली चाय को ग्रो किया गया और उस पर ब्रिटिश मोहर लगा के जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसको सेल किया गया वर्ल्ड वाइड ताकि चाइना की डोमिनेंस खत्म हो। टी प्रोडक्शन में इंडिया भी एक आगे बढ़ रहा है और बहुत बड़ी कंट्री के रूप में आगे आया है।
0: जरूरी से मैं जानना चाहता हूँ कि जब चाय की बात होती है तो चाय की बहुत सारी वैरायटी हमारे सामने आती हैं, इन वैरायटी को आप किस रूप में बताना चाहती हैं?
2: सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ चाय की वैरायटी जिसको हम एक ही रूप में मानते हैं वो होती है जिसमें हम चाय को डाल के और खौलाते हैं दूध के साथ और हम वो पीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया सेकेंड प्रोड्यूसर बन चुका है चाय के क्षेत्र में और हमारे पास वैरायटी ऑफ चाय है, अलग अलग तरीके से सर्व की जाती हैं, पी जाती हैं और उसके अलग अलग बेनिफिट होते हैं। कैमोमाइल टी जिसको हम रिलैक्सेशन के लिए आफ्टर डिनर, जो कि हमारे डाइजेशन में भी आराम देता है और हमें नींद सोने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, तो हम उसको खाने के बाद पीते हैं, हम मिल्क नहीं डालते हैं उसमें, उसको हम हनी के साथ लेते हैं। आज हमारे पास दार्जिलिंग टी है जो कि बहुत ही माइल्ड टीज होती हैं, ग्रीन टी जो सभी कोई जानते हैं और स्पेशली आजकल जो यंग जनरेशन है अपने वेट को रिड्यूस करने के लिए ग्रीन टी पीती है मॉर्निंग। ब्लैक टी मॉर्निंग में अपने स्ट्रेस मतलब नींद को हटाने के लिए लोग ब्लैक टी का यूज करते हैं, डायरेक्ट पीते हैं। आयुर्वेदा में देखें तो उस समय भी हम चाय को किसी ना किसी वे में, जो हमारे पास घरेलू पदार्थ थे उन्हीं से, खाद्य पदार्थ से ही हमने चाय बनाई। जैसे हमें खांसी हुई तो हमने तुलसी की चाय बनाई। इट इज नॉट ऑलवेज द टी इज विच इज फ्रॉम द लीफ, इट इज फ्रॉम एनी ऑफ द मटेरियल विच वी आर ईटिंग इट।
0: तरु जी ने एक चाय का खुलासा नहीं किया जो कि भोपाल की काफी लोकप्रिय चाय है, जिसे नमक वाली चाय कहा जाता है और पुराने भोपाल में इसे खासतौर से इसका स्वाद ले सकते हैं। बताएं कि इसकी खासियत क्या है?
3: जी देखिए, नमक वाली चाय जो है उसको नून चाय भी बोला जाता है। इसके अलावा और हिमाचल की साइड और लद्दाख की साइड भी काफ़ी फेमस है। नमक वाली

0: चाय आप देख सकते हैं, एक पुरानी दुकान है विच इज़ ओनली सेलिंग टी। अगर आप रात को 12 बजे भी जाएंगे, 1 बजे भी जाएंगे, तो आई थिंक वो पूरी रात ही ऑपरेट होती है और पूरा 24 घंटे उनका ऑपरेशन है। तो चाय की बहुत ज़्यादा अहमियत है यहाँ पर, और ये हमारा इमोशन है, मैं तो ये कहूँगा भोपाल और मध्य प्रदेश के लोगों का एक इमोशन है चाय।
1: चाय तो हमारे बीच अब इतनी घुल मिल गई है कि उससे दूर होना नामुमकिन है। लेकिन एक व्यक्ति किस तरीके से चाय को ले ताकि वो स्वस्थ भी रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाय पीने से नुकसान बहुत है और चाय कम पीना चाहिए, कितनी मात्रा में चाय फायदेमंद है?
2: हम चाय की अगर बात करें तो एक व्यक्ति जो दिन भर में चाय लेता है, जो उसके लिए बेनिफिट होगा वो 2 से 3 कप है। इससे ज्यादा अगर कोई ले रहा है तो वो उसके लिए नहीं होगा, क्योंकि

0: एडिक्शन। शुगर वाली चाय ले रहे हैं तो एक्स्ट्रा आप शुगर ले रहे हैं, चाय ज्यादा ले रहे हैं तो आप कैफीन की मात्रा ज्यादा ले रहे हैं। चाय का मेन कंसेप्ट है पीना प्लस लोगों के साथ बैठ के पीना, वो पूरा करें लेकिन एक लिमिटेशन में करें।
1: मतलब घर में हम चाय पी रहे हैं, पार्टी में चाय पी रहे हैं, दोस्तों यारों के साथ चाय पी रहे हैं, लेकिन उसकी मात्रा सीमित होना चाहिए। अंकुर जी, आप इस पर कुछ जोड़ना चाहते हैं?
2: मैं ये कहना चाहूँगा उसका तापमान भी बहुत मैटर करता है। अगर आप ओवर 55 डिग्री सेल्सियस पे चाय पीते हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, तो एक एसोफेगियल कैंसर काइंड ऑफ कैंसर होता है, वो भी हो सकता है। हर चाय को पीने का भी एक सलीका है और एक तरीका है, उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और उसको उसी तरीके से कंज्यूम करें। अपनी बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से, BMI के हिसाब से बैलेंस करके उसको उतनी मात्रा में ले तो चाय के बहुत बेनिफिट्स हैं। और मुझे लगता है कि हमें चाय एक नेचुरल गॉड गिफ्ट है हम सभी के लिए।
1: तरु जी, लगातार चाय को लेकर बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, जैसे कि हमने चाय की वैरायटी की बात करी। आपको क्या लगता है कि आने वाले भविष्य में हम चाय को कहां पाएंगे?
0: हमारे एक्सपेरिमेंट तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना है वो हमारे एक्सपेरिमेंट इन फ्यूचर फेवरेबल हों। ऑफ कोर्स ये नई जनरेशन के लिए अच्छे हैं, लेकिन अदर साइड हमें उसके जितने भी डिसकंफर्ट उन पे भी ध्यान रख के ही हमें चीज़ों को अवेल करना चाहिए। तो इंटरनेशनल डे पे हमें ये भी अवेयरनेस फैलानी है कि हम जो भी तरीके की चाय पी रहे हैं तो उसके बारे में एटलीस्ट हमें पता हो कि हम आज ऊलोंग टी पी रहे हैं, आज हम दार्जिलिंग टी पी रहे हैं, आज हम ग्रीन टी पी रहे हैं, आज कैमोमाइल पी रहे हैं, लेकिन हम वो कैसे पी रहे हैं ताकि वो हमें बेनिफिट करे, हेल्थ बेनिफिट करे, ना कि वो हमें नुकसान दे।
1: इससे पहले कि हम बातचीत को समाप्त करें, अंकुर जी, आप अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर क्या अनुरोध करना चाहते हैं हमारे सुनने वालों से जो चाय के शौकीन हैं?
2: मैं यही कहना चाहूंगा, चाय तो हम पी ही रहे हैं और हम सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर्स हैं ऑफ टी इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। मैं उसकी रिसाइकलिंग पे भी लोगों को ये कहना चाहूंगा, अगर आप जानते होंगे तो जब हम चाय की पत्ती को स्ट्रेन करके हम क्या करते हैं, गार्बेज में डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। यूजुअली अगर हम उसको वहां से ना डाल के हम उसको अपने पेड़ों में पौधों में डाल दें तो वो एक खाद का काम करता है, जो कि एक बहुत बड़ी एक अपने आप में एक सीख है हम लोगों के लिए।
1: दरु जी, आपका मैसेज क्या रहेगा इंटरनेशनल टी डे पर?
0: स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, चाय एंजॉय करें लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में करें, और जो हमारा इस बार का थीम है कंज्यूमर को हेल्प करें, आगे की फ्यूचर जनरेशन के लिए हम अपने नेचुरल रिसोर्स को एक साथ रख सके और उनको भी बता सके यस इनके बेनिफिट्स क्या हैं।
1: इतना समय देने के लिए आप दोनों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
2: धन्यवाद जी।
0: धन्यवाद सर।
1: अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर बात करने के लिए इस समय हमारे साथ थे भारतीय होटल प्रबंध संस्थान के व्याख्याता अंकुर किशोर और तरु सक्सेना जी। वाह, क्या बात है, चाय पर इतनी बातें। वैसे चाय पर से जितनी बात की जाए उतनी कम होगी, क्योंकि कितने किस्से, कितनी चर्चाएं हमने घंटों की हैं चाय के साथ, कितने रिश्ते बनाए हैं, और ये सिलसिला कभी ख़त्म होने वाला नहीं। तो चाय का लुत्फ लेते रहिए, बस ध्यान रहे कि इसकी मात्रा सीमित हो। तो हैप्पी इंटरनेशनल टी डे।

0: आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का स्वर बद्ध किया हुआ, लता मंगेशकर का गाया। ये गीत था फिल्म बनफूल का। तो जरूरी जानकारी हो या शहर का हाल, सब कुछ लेकर आता नमस्कार भोपाल।
1: आकाशवाणी के सुनने वाले सभी भाइयों को आनंद जी का नमस्कार, और आप सुन रहे हैं नमस्कार भोपाल।
0: आप घर में हो, सफर में हो, मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, योग कर रहे हो, चाय पी रहे हो, आप हमेशा नमस्कार भोपाल को बेहद करीब से सुनना चाहते हैं, तो आप वो मोबाइल भी एक जरिया है, सुनते रहिए न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सुबह के 7:44 और 48 सेकंड हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की कला संस्कृति विविध लोक परंपराओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने में अनेक हस्तियों ने अपना अमूल्य योगदान दिया है और उन्हें पद्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जाता रहा है। ऐसी ही कुछ पद्मश्री सम्मानित हस्तियों की जिंदगी के संघर्ष और सफलता की कहानी को मशहूर निर्देशक श्री राजेंद्र जांगले जी ने लघु फिल्मों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया है। राज नर्तक राम साहेब पांडे, लोक अध्येता डॉक्टर कपिल तिवारी, गोंड चित्रकार भज्जू श्याम और दुर्गाबाई व्याम, बैगा नर्तक अर्जुन ध्रुवे, कबीर गायक कालूराम बामनिया, भील चित्रकार भूरीबाई, म्यूजियम डिजाइनर हरचरण सिंह भाटी जैसे पद्मश्री से सम्मानित कलाकारों को लेकर राजेंद्र जांगले जी ने कुछ फिल्मों का निर्देशन किया है। हमने बात की है राजेंद्र जी से और जाना है उनकी इस कार्यक्रम के बारे में।
2: एक्चुअली ट्राइबल म्यूजियम के लिए मैं काफ़ी समय से काम करता रहा हूँ, फिर जो अपनी जनजातियाँ हैं एमपी की प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं उनके ऊपर भी काम किया। बैगा जनजाति के ऊपर जो फिल्म थी मांदल के बोल, उसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। कुछ समय बाद कहा गया कि आप जो ट्राइबल आर्टिस्ट हैं जिनको पद्मश्री मिला है बना के दी। अच्छा अनुभव रहा, मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं मध्य प्रदेश में जिन लोगों को पद्मश्री मिला है उनके ऊपर ये फिल्म बनाई है।
0: नहीं, वाकई बहुत ही काबिल तारीफ काम आपने किया है जांगले जी। और निश्चित रूप से जब पद्मश्री की बात होती है तो हम देख रहे हैं कि लगातार जब पद्मश्री का जिक्र होता है तो मध्य प्रदेश का ग्राफ भी काफ़ी ऊँचा जाता जा रहा है और लगातार बहुत सारे कलाकारों को या फिर अलग अलग विधा के लोगों को पद्मश्री से नवाजा जा रहा है। तो भी ऐसे कलाकार हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, तो आपने कौन कौन से पहलू दिखाने का प्रयास किया है इन कलाकारों के संबंध में ताकि नई पीढ़ी उनसे वाकिफ हो?
2: ये जो सभी कलाकार हैं, कपिल तिवारी जी और भट्टी जी को छोड़ दें, ये जो लोग हैं दूसरे जिनके ऊपर मैंने फिल्म बनाई, चाहे वो कालूराम बामनिया हो या दुर्गा व्याम हो, भूरीबाई हो, भज्जू सिंह श्याम हो और राम साहेब पांडे जी हो, बिल्कुल ही जमीनी स्तर से अपने आप को इतनी ऊंचाई पर ले गए जो कि हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है, हम मध्य प्रदेश वासियों के लिए और सभी के लिए, कि और उन्होंने वो पद्मश्री प्राप्त की। कैसे उन्होंने ये वो ऊंचाई प्राप्त की वो ये फिल्में दिखाती हैं।
0: तो इन कलाकारों की किस तरीके से आपने मूल स्थान को भी इसमें शूट किया होगा या फिर उनके परिचितों से भी आपने बात की होगी, उसके बारे में क्या क्या समावेश किया आपने?
2: कोशिश की कि उन पैदा हुए हैं जहाँ से वो सीखे हैं, जहाँ बड़े हुए हैं, पढ़ाई भी जितनी भी की है, परिवार वालों से बातचीत, दूसरे लोगों से बातचीत, चाहे वो चित्रकार हों या गायक हों या राई डांसर हों, कैसे वो बचपन से उस लेवल ऊंचाई तक ले गए, ये मैंने फिल्मों में दिखाया है।
0: जांगले साहब, जब भी आप फिल्म का निर्माण करते हैं, आपने तो पहले भी बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, तो हर फिल्म को आपका देखने का नजरिया अलग होता है, उसको शूट करने का एंगल भी अलग अलग होता है, तो इसमें आपने किस तरीके से कुछ इफेक्ट्स डालने की कोशिश की है या फिर कुछ ऐसी बातों का समावेश करने की कोशिश की है जो आम फिल्मों से कहीं हटकर होंगे?
2: तो ये मेरा कोशिश तो यही रहती है कि मैं बेसिकली एक कंसेप्ट हमारा होता है कि हम इनके ऊपर ऐसी फिल्म बनाएंगे, ये कंसेप्ट होगा, ये ट्रीटमेंट होगा, उसकी कोई हम कमेंट्री लिख के पहले से नहीं रखते हैं। हम वहीं जाते हैं, वहीं उनका जी देखते हैं उनको, और उसी को जो कैंडिडेट शूट ही करता हूं मैं बेसिकली शुरुआत से ही, अब तो 40 साल हो गए मुझे ये काम करते करते, जो वास्तविक जो दिखता है उसी को दिखाना, उसमें कोई नाटकीयता वो नहीं, जो वो बोल रहा है उसको अपने एडिटिंग

0: टेबल पे ले आके फिर उसको उस ढांचे में ढालना, मतलब मैं उस तरह से ही काम करना पसंद करता हूँ।
1: हमारे पद्मश्री की विभूतियों पर आपने जो फिल्म बनाई, उस समय आपको कैसी अनुभूति हुई कि हमारे देश को लेकर इन कलाकारों ने कितनी मेहनत की है और हमारा प्रदेश आज राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित कर रहा है?
0: गर्व की बात है, और मैंने उन लोगों के जीवन को देखा है, जहाँ पैदा हुए, जहाँ उनकी शादी हुई, जहाँ उनके बच्चे हुए, जहाँ मतलब हर चीज मैंने उन फिल्मों में दिखाई है। गरीबी से इस ऊंचाई तक पहुँचना, जिनके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं, जिनके पास बहुत कुछ आर्थिक तंगी से वो लोग इस स्थान पे पहुंचा, ये बड़ी गर्व की बात है हम सभी के लिए।
1: जंगल साहब, इन दोनों आपकी इन योजनाओं पर काम चल रहा है क्योंकि आप उन व्यक्तित्व में शामिल हैं जो सक्रियता के साथ काम करना चाहते हैं।
0: एक तो सर मैं तीजन भाई, उनके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसके ऊपर कुछ काम करूँ, अभी तो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। दूसरा एक हम मैंने जो मध्यप्रदेश की 7 प्रिमिटिव जनजातियाँ जो हैं उनके पे जो काम किया, तो मैंने उसमें ये मैंने नोटिस किया, चाहे वो भील हों, गोंड हों, कोरकू हों, बैगा हों, सहरिया हों, कोल हों, जो महुआ है, द्रव्य है, या कि वो उनके हर उसमें इस्तेमाल होती है। कई ट्राइब्स में तो बच्चे को जन्म होता है तो उनको 10वें दिन उसके एक बूंद उनके मुंह में डाली जाती है। शादियां होती हैं, ये होता है, कोई नहीं रहता है उस समय भी वो लोग उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। तो महुआ ना सिर्फ मादक द्रव्य है बल्कि उसका साइंटिफिक यूज भी बहुत ज्यादा है, उसको लेके मैं कुछ करने की सोच रहा हूँ।
1: चलिए, आपके दोनों प्रोजेक्ट में आपको कामयाबी मिले और आप बेहतर रूप में उसको सब तक पहुंचा सकें, ऐसी हम शुभकामनाएं आपको देते हैं। इतना समय आपने हमें दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच।
0: जी धन्यवाद, नमस्कार।
1: हमारे साथ थे मशहूर फिल्म मेकर और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त निर्देशक राजेंद्र जांगले जी। हमें विश्वास है कि उनके द्वारा निर्देशित ये फिल्में जनजातीय संग्रहालय के लिए तो एक धरोहर है ही, आने वाले दर्शक भी पद्मश्री प्राप्त कलाकारों की गाथा को करीब से जान पाएंगे और करेंगे गर्व की अनुभूति। सुबह के 7:50 और 31 सेकंड हुए हैं। अपना पसंदीदा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं बहुत करीब से, जिसका नाम है नमस्कार भोपाल। ये वो कार्यक्रम है जो रोजाना आप तक पहुंचता है 7:20 से 8 बजे तक। कई ऐसी बातें जिनका आपकी जिंदगी से बहुत ही गहरा सरोकार होता है और ऐसे मीठे गीत जो आपको तरोताजा कर दें। ऐसा ही गीत सुनिए सागर फिल्म से। जावेद अख्तर के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर।

0: आकाशवाणी भोपाल के सारे सुनने वालों को तलत अजीज का नमस्कार और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
1: सात बजकर 53 मिनट और 38 सेकंड हुए हैं। इन दिनों ग्रीष्म अवकाश चल रहे हैं और इस दौरान कई खेल शिविरों का आयोजन भी किया जा रहा है। बच्चे विशेष रूप से इन शिविरों में भाग ले रहे हैं। खेलते समय कई बार वे चोटिल भी हो जाते हैं और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश खेल फिजियोथेरेपिस्ट के माध्यम से परामर्श भी दिला रहा है। हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हरिओम परमार। आइए करते हैं उनसे कुछ चर्चा।
2: स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट की जो डिमांड है खिलाड़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कंपटीशन का दौर है, इस कंपटीशन के दौर में खिलाड़ी परफॉर्म करना चाहता है। जब वो परफॉर्म करना चाहता है अच्छे से, तब उसको इंजरी होना ही होना है, तो उस इंजरी को मैनेज करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट लोग अपनी सेवाएं देते हैं।
1: किस तरह की इंजरीज आपने देखी हैं, क्योंकि आप स्टेडियम में भी खिलाड़ियों से रूबरू होते हैं और बहुत सारे इवेंट के दौरान भी आपका खिलाड़ियों से वास्ता होता है।
2: स्ट्रेन और स्प्रेन, ये दो कंडीशंस होती है। स्ट्रेन जो है मसल्स में खिंचाव आ गया, मसल्स के फाइबर रप्चर हो गए। स्प्रेन की कंडीशन जिसमें लिगामेंट इंजरी होती है, तो स्प्रेन ज्यादा होता है, इसमें टखना में मोच आ गया, शोल्डर लिगामेंट की इंजरी हो गई। नी इंजरी बहुत ज्यादा कॉमन है। कोई भी जंपिंग एक्टिविटी है, रनर्स जो हैं एथलीट में, उनको रनर्स नी, जंपर्स को जंपर्स नी। एसीएल इंजरी नी में बहुत ज्यादा कॉमन होती है। नी ज्वाइंट और शोल्डर ज्वाइंट, ये दो ज्वाइंट ऐसे हैं जिनमें इंजरी के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जहाँ ज्यादा डायरेक्शन रहेगा वहाँ पे स्टेबिलिटी ज्वाइंट में कम हो जाती है। अगर अपन हिप ज्वाइंट की बात करें तो वहाँ पे इंजरी इतनी नहीं होती है, क्योंकि जो फ्री रेंज है ज्वाइंट की वो कम है।
1: तो जाहिर है कि जब चलता हुआ मैच हो उसमें भी खिलाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, बहुत सारी इवेंट में उसे दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। तो रोजाना आने वाले खिलाड़ियों को आपकी कोई क्लास भी होती है जिसके माध्यम से आप पहले से ही सचेत करते हैं कि आप इस तरह से खेलें ताकि आपको दुर्घटनाएं कम से कम हो, इंजुरी कम से कम हो?
2: हाँ, उनको समय समय पर बताया जाता है कुछ चीजों का ध्यान रखना है, विशेषकर जैसे वार्म अप हुआ, वार्म अप के बाद स्ट्रेचिंग हुई, स्ट्रेचिंग के बाद फिर आपका इवेंट, इवेंट के बाद फिर वापस स्ट्रेचिंग, ताकि मसल्स की लेंथ मेंटेन रहे, उसके फाइबर्स सुलझे हुए रहें, जो पेन कॉज करने वाले कारक रहते हैं उनका डिपोजिशन ना हो, इसलिए उनको समय समय पर बताया जाता है। जब भी कोई इंजरी होती है तो पूरा डिस्क्राइब किया जाता है कि आपको इस तरह से प्रॉपर वार्म अप करना है, प्रॉपर स्ट्रेचिंग करनी है, ताकि ये इंजरी अपनी उससे बचा जा सके।
1: विभिन्न खेलों की स्पर्धाओं के दौरान भी क्या वहाँ पर सचेत होते हैं और खिलाड़ियों को आगाह करते हैं? इसी के साथ दुर्भाग्यवश कोई इंजरी हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट भी आप तुरंत करते हैं?
2: इवेंट होते हैं जैसे आपका हॉकी का टूर्नामेंट हुआ, या फिर कहीं पे टीम बाहर जा रही है, आउट ऑफ स्टेट जा रही है, नेशनल इवेंट में जा रहे हैं, तो वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट हमेशा साथ में जाते हैं, ताकि मेक श्योर करें कि कोई इंजरी अगर हुई तो उसका तत्काल ट्रीटमेंट करें, ताकि वो प्लेयर उस इंजरी में भी खेल पाए।
1: तो हमारे साथ थे खेल फिजियोथेरेपिस्ट हरिओम परमार जी। वैसे खेलेंगे तो गिरना भी स्वाभाविक है, ऐसे में ये चर्चा आपके लिए उपयोगी साबित होगी ऐसी हम आशा करते हैं और आपके खेलने के हौसले को भी और भी बुलंदी तक पहुंचाएगी। अब हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंतिम चरण में जहां पर एक गीत की गुंजाइश है। तो आपको सुनवा रहे हैं ओपी नैयर का सुरबद्ध किया हुआ एक बार मुस्कुरा दो फिल्म का वो गीत जो टिपिकल ओपी नैयर की जो स्टाइल थी उससे कुछ अलग हटकर है। किशोर कुमार की आवाज़ है, बोल लिखे हैं इंदीवर ने, सुनिए।

0: आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार, भोपाल द्वारा निदेशक आकाशवाणी श्याम हिल्स भोपाल, पिन 4620002 इस पते पर अपनी प्रतिक्रिया भेजकर अब अनुमति दीजिए संजय श्रीवास्तव को। नमस्कार।
1: आकाशवाणी भोपाल से अभी आप सुन रहे थे दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सुबह के 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
2: अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
6: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
5: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली

0: वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख किए। पश्चिम बंगाल लगभग 2,200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4,000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताज़ा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
5: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताज़ा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने TMC का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेस्ट में नहीं रहेगा। तो अभी BJP का कैंडिडेट देवांशु पांडा तृणमूल सीआईएम का कैंडिडेट

0: कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में भी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और सीएम का कैंडिडेट है समुनाथ कुर्मी।
1: जी जी धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
2: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
1: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नैनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का 4था और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश पंजाब उत्तर प्रदेश और विदर्भ बिहार छत्तीसगढ़ तटीय आंध्र प्रदेश हिमाचल प्रदेश उड़ीसा राजस्थान तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद प्रियंका। AI से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात नीदरलैंड स्वीडन नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण।

0: क्षण 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, CBSE की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने CBSE के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, UGC नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट UG पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his 5-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Centre ropes in major social media platforms to crack down on rumours and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Re-polling begins in Falta Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his 5-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome, Prime Minister Narendra Modi said, "Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation." The Prime Minister said that India and Italy will move forward on the principle of design and develop in India and Italy and deliver for the world. He said the India-Italy Defence Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production.
3: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
2: More from our correspondent.
4: Prime Minister Narendra Modi's successful visit has been a part of his ongoing efforts to strengthen India's international relations and cultural cooperation. This is Prime Minister Modi's first bilateral visit to Italy and third overall. His visit was marked by a series of significant events and engagements. He called on Italian President Sergio Mattarella, held delegation-level talks with Prime Minister Giorgia Meloni, focusing on enhancing cooperation between India and Italy.

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि वीके कृष्ण मेनन का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 3 मई। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, शिवाजी नगर भोपाल से जयप्रकाश दुबे और उज्जैन से संजीव जैन। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

चंपारण भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास से जुड़ी वो भूमि जहां सत्य ने पहली बार अन्यायी सत्ता की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारा था, जहां से नील की खेती करने पर मजबूर शोषित किसानों की मुक्ति का महामंत्र गूंजा और पूरे देश में छा गया। चंपारण यदि

गांधी जी को महात्मा बनाने वाली प्रयोगशाला थी, तो उस प्रयोगशाला में प्रज्वलित सबसे प्रकाशवान दीपक थे राजकुमार शुक्ल। उन्हें चंपारण आंदोलन का वास्तविक शिल्पकार माना जाता है। राजकुमार शुक्ल का जन्म 23 अगस्त 1875 को चंपारण जिले के सतवरिया गांव में हुआ था। ये एक ब्राह्मण परिवार था जिसकी अपने क्षेत्र में बड़ी प्रतिष्ठा थी। उनके पिता का नाम कोलाहल शुक्ल था, जो मूलतः सीवान जिले के निवासी थे, लेकिन बाद में वो सतवरिया आकर बस गए थे, जहां उन्होंने काफी भूमि अर्जित की। इसी समृद्ध परिवार में राजकुमार शुक्ल का पालन पोषण हुआ। इस तरह वो एक समृद्ध और प्रभावशाली किसान थे, जिनकी आर्थिक स्थिति उस समय के औसत किसान से बहुत बेहतर थी। उनका विवाह केवला देवी से हुआ था। उनके पारिवारिक जीवन में उनकी पत्नी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि पंडित राजकुमार शुक्ल को एक सत्याग्रही के रूप में विकसित करने और संघर्षों में साथ देने में केवला देवी का महत्वपूर्ण योगदान था। उनके परिवार में दो पुत्रियां थीं, जिन्होंने उनके संघर्षपूर्ण जीवन को बहुत करीब से देखा था। राजकुमार शुक्ल ने अपनी युवावस्था में बेतिया राज में एक मुहर्रिर यानी मुंशी के रूप में भी कार्य किया था, जहां उन्हें प्रशासनिक और विधिक प्रक्रियाओं का आरंभिक ज्ञान प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह कृषि तथा सामाजिक कार्यों में संलग्न हो गए। ये वो समय था जब अंग्रेजों ने किसानों पर अत्याचार की एक अलग ही कहानी लिखी। अपनी ही कृषि भूमि पर किसानों के लिए अलग नियम, कानून और प्रतिबंध लागू हुए, जिसने किसानों की दुर्दशा कर रखी थी।

19वीं शताब्दी के मध्य से ही यूरोपीय बागान मालिकों ने चंपारण में अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी थीं और ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में उन्होंने किसानों पर अत्याचार का एक संगठित ढांचा तैयार कर लिया था। उन्होंने तिनकठिया खेती की प्रणाली लागू की थी। ये एक दमनकारी भू राजस्व व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी भूमि के प्रत्येक बीघा यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा भूमि पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी। ये प्रणाली बेहद शोषणकारी थी क्योंकि किसानों को नील की फसल के लिए जो मूल्य दिया जाता था वो उनकी लागत से भी कम होता था। बागान मालिक स्वयं ही मूल्य निर्धारित करते थे। नील की खेती से भूमि की उर्वरता का भी ह्रास होता था क्योंकि नील की जड़ें गहरी होती थीं जो भूमि की उर्वरता को नष्ट कर देती थीं, जिससे उस भूमि पर बाद में अनाज उगाना कठिन हो जाता।

उन्होंने किसानों पर अत्याचार का एक संगठित ढांचा तैयार कर लिया था। उन्होंने तिनकठिया खेती की प्रणाली लागू की थी। ये एक दमनकारी भू राजस्व व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी भूमि के प्रत्येक बीघा यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा भूमि पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी। ये प्रणाली बेहद शोषणकारी थी क्योंकि किसानों को नील की फसल के लिए जो मूल्य दिया जाता था वो उनकी लागत से भी कम होता था। बागान मालिक स्वयं ही मूल्य निर्धारित करते थे। नील की खेती से भूमि की उर्वरता का भी ह्रास होता था क्योंकि नील की जड़ें गहरी होती थीं जो भूमि की उर्वरता को नष्ट कर देती थीं, जिससे उस भूमि पर बाद में अनाज उगाना कठिन हो जाता था। इसके साथ ही 40 प्रकार के अवैध कर भी किसानों पर लगाए गए थे। राजकुमार शुक्ल स्वयं बेलवा कोठी के अंतर्गत एक रैयत थे, इसलिए इन प्रताड़नाओं का उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव था। अंग्रेजों के इस शोषण और अत्याचार ने उन्हें भीतर तक आंदोलित कर रखा था। उनकी संघर्ष यात्रा इन्हीं अत्याचारों के प्रतिरोध से आरंभ हुई। उनका प्रतिरोध सन 1907-8 के आसपास स्पष्ट रूप से उभरने लगा था। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था और भारत की धरती पर ये उनका पहला आंदोलन था, लेकिन चंपारण में गांधी जी के आगमन से लगभग एक दशक पहले भी किसानों ने सामूहिक विद्रोह किए थे, जिसमें शेख गुलाब और शीतल राय जैसे नेताओं की अगुवाई में बागान मालिकों के गुंडों और कारिंदों को कड़ी चुनौती दी गई थी। राजकुमार शुक्ल ने इस दौरान स्थानीय पंचायतों को संगठित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। वो चाहते थे कि किसान अपने विवादों को निलहे साहबों की अदालत के बजाय अपनी पंचायतों में सुलझाएं। राजकुमार शुक्ल की ये पहल ब्रिटिश सत्ता और बागान मालिकों के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इससे उनके न्यायिक और प्रशासनिक एकाधिकार को खतरा पैदा हो गया था। वो बागान मालिकों के लिए एक बड़ा अवरोध बन गए थे। परिणाम स्वरूप उन्हें व्यक्तिगत क्षति पहुंचाई गई, उनकी फसलों को नष्ट कर दिया गया, उनके घर को आग लगा दी गई, उनका पशुधन भी छीन लिया गया, उन पर दर्जनों झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। बेलवा कोठी के बागान मालिकों ने उन पर चोरी, मारपीट और दंगे के आरोप लगाए। सन 1914 में एक बागान मालिक के साथ हुए विवाद के कारण उन्हें कुछ हफ्तों के लिए जेल में भी डाला गया, लेकिन राजकुमार शुक्ल का प्रतिरोध लगातार जारी रहा। ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, उनका संकल्प अडिग रहा। अपमानजनक स्थिति और आर्थिक नुकसान के बावजूद वो अंग्रेजों को चुनौती देते रहे, लेकिन अब उन्हें लगने लगा था कि चंपारण की जो समस्या है वो केवल स्थानीय स्तर पर प्रतिरोध करके सुलझाई नहीं जा सकती है, इसके लिए एक राष्ट्रीय नेतृत्व की आवश्यकता है, और उनकी दृष्टि में इस समस्या को केवल गांधी जी ही सुलझा सकते थे।

राजकुमार शुक्ल के इस संघर्ष में उनके साथ जुड़े पीर मोहम्मद मुनीश। वो एक पत्रकार थे और कानपुर से निकलने वाले समाचार पत्र प्रताप में वो चंपारण के किसानों पर होने वाले अत्याचारों की खबरें लिखते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में निकलने वाला ये पत्र किसानों की पीड़ा का दर्पण बन गया। पीर मोहम्मद मुनीश के साथ मिलकर राजकुमार शुक्ल ने इस संदर्भ में गांधी जी और कई राष्ट्रीय नेताओं को पत्र भी भेजे थे। दोनों की जोड़ी ने ही मिलकर वो वैचारिक धरातल तैयार किया जिस पर बाद में चंपारण सत्याग्रह खड़ा हुआ। दिसंबर सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, अंबिका चरण मजुमदार जैसे अनेक नेताओं से राजकुमार शुक्ल खुद मिले, लेकिन सभी ने उनसे कहा कि वो स्थानीय स्तर पर इस समस्या को सुलझाएं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब गांधी जी से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने गांधी जी से प्रार्थना की कि आपको चंपारण चलना होगा, वहां किसान मर रहे हैं। हालांकि अधिवेशन में उनके प्रयासों से चंपारण में किसानों की दुर्दशा पर एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया था, लेकिन राजकुमार शुक्ल इससे संतुष्ट नहीं थे। वो चंपारण में गांधी जी की उपस्थिति चाह रहे थे, जैसे नियति भविष्य लिख रही थी। अधिवेशन के बाद गांधी जी ने चंपारण जाने में अपनी असमर्थता जताई और राजकुमार शुक्ल साये की तरह उनके पीछे हो लिए। गांधी जी कानपुर गए, शुक्ल जी वहां भी पहुंच गए। गांधी जी साबरमती आश्रम लौट आए तो वो आश्रम में डेरा डालकर बैठ गए। गांधी जी कलकत्ता पहुंचे तो वो पहले से ही वहां मौजूद थे। गांधी जी ने बाद में लिखा भी कि इस अनपढ़ किंतु संकल्पवान किसान ने मुझे जीत लिया। अंततः 9 अप्रैल सन 1917 को वो राजकुमार शुक्ल के साथ चंपारण के लिए रवाना हुए और 10 अप्रैल को दोनों पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचे। दोनों की साधारण वेशभूषा देखकर नौकरों ने उन्हें अछूत समझ लिया तथा कुएं से पानी तक लेने से रोक दिया। यही वो बिंदु था जब गांधी जी ने महसूस किया कि भारत की लड़ाई केवल अंग्रेजों से नहीं, सामाजिक कुरीतियों से भी है। इसके बाद गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां जेवी कृपलानी और छात्रों ने उनका स्वागत किया। 15 अप्रैल सन 1917 को वो मोतिहारी पहुंचे, जो पूर्वी चंपारण का मुख्यालय था। यहीं से आरंभ हुआ चंपारण सत्याग्रह, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह जिसने ब्रिटिश राज को हिला कर रखा।

दिया। कमिश्नर ने गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने इस सरकारी आदेश की विनम्रता पूर्वक अवहेलना की। 18 अप्रैल को मोतिहारी की अदालत में गांधी जी की पेशी हुई। राजकुमार शुक्ल ने आसपास के गांवों में सूचना फैला दी, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों की संख्या में किसान अदालत परिसर में जमा हो गए। ये जन सैलाब ब्रिटिश सत्ता के लिए अप्रत्याशित था। और फिर गांधी जी ने अदालत में अपना ऐतिहासिक बयान दिया। उन्होंने कहा, मैंने कानून तोड़ने के लिए नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज और मानवीय सेवा के उच्चतर कानून का पालन करने के लिए जिला छोड़ने से इनकार किया है। उनका बयान बिजली की तरह पूरे देश में फैल गया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा, मुकदमा वापस ले लिया गया और गांधी जी को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति मिल गई। ये भारत में सविनय अवज्ञा की पहली बड़ी नैतिक जीत थी। राजकुमार शुक्ल गांधी जी के साथ गांव गांव घूमते रहे। गांधी जी ने उन क्षेत्रों को देखा जहां अत्याचार चरम पर था। इस जांच के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद और जेबी कृपलानी आदि के साथ एक टीम तैयार हुई। राजकुमार शुक्ल ने किसानों को निर्भीक होकर बयान देने हेतु प्रेरित किया और लगभग 10,000 किसानों के बयान दर्ज हुए। इस आधार पर चंपारण कृषि अधिनियम पारित हुआ, तिनकठिया प्रथा समाप्त हुई, किसानों से वसूले गए अवैध धन का एक हिस्सा लौटाने का आदेश हुआ और अन्यायपूर्ण कर से भी मुक्ति हुई। राजकुमार शुक्ल ने इस आंदोलन के बाद भी शिक्षा, स्वच्छता और जन जागरण के कार्य में स्वयं को समर्पित रखा। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। वो विदेशी कपड़ों के बहिष्कार और खादी के प्रचार में जुट गए तथा किसान सभा आंदोलन के प्रारंभिक स्तंभ बने। वर्षों की कानूनी लड़ाई में ब्रिटिश दमन ने उनकी संपत्ति छीन ली थी, पशुधन नष्ट हो गया था, उनकी आर्थिक स्थिति भी टूट चली थी, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। इसी विपन्न अवस्था में उन्होंने 20 मई सन 1929 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि राजकुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन लें, राजकुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है wataNkaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में होगा।
1: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। समय है इस घंटे की खास खबरों का।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली दौरा पूरा कर नई दिल्ली लौट आए हैं। इस दौरान भारत और इटली ने कृषि, विज्ञान, तकनीकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इससे दोनों देशों के बीच व्यवहारिक कार्ययोजना तैयार होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली के प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पुरस्कार खाद्य सुरक्षा, सतत विकास और मानव कल्याण के प्रति भारत के अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इंदौर में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक को केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे ब्रिक्स देश मिलकर दुनिया के लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स देशों की जनसांख्यिकीय ताकत उन्हें कामकाज के भविष्य को आकार देने का अवसर देती है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी अब 28 मई तक की जा सकेगी। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन किसानों के स्लॉट 23 मई तक बुक हो चुके हैं उन किसानों से खरीदी की जाएगी। प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी है। राज्य के 16 शहरों में बुधवार को पारा 44 डिग्री से अधिक रहा। खजुराहो में सबसे अधिक 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज पूरे प्रदेश में लू का अलर्ट जारी किया है। और आईपीएल क्रिकेट में कल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में हुए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है मोहम्मद फैज ने। शब्द हैं जानी और समीर अनजान के, संगीत आदेश श्रीवास्तव और जानी का है।

अब आपको सुनवा रहे हैं धूम 3 फिल्म का वो गीत जिसे गाया है सुनिधि चौहान ने। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं, संगीत है जूलियस का।

और अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बार बार देखो का वो नगमा, जिसे आवाज़ दी है जसलीन रॉयल, हर्षदीप कौर, सिद्धार्थ माधवन और साथियों ने। गीत लिखा है आदित्य शर्मा ने, संगीत है जसलीन रॉयल का।

0: इस गीत के साथ फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरें, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं राधा कुलकर्णी की गायी चंद गजलें।

सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं राधा कुलकर्णी की गाई गजलें।

0: राधा कुलकर्णी की गाई इसी गजल के साथ सुगम संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: प्रस्तुत है नाटक खुशबू का नगमा, लेखक कमर जमाली, प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।

0: Good morning, sir.
1: Hello. Good morning.
0: It's your breakfast, sir.
1: All right. मैडम कहाँ है?
0: बेबी के रूम में है सर.
1: क्या कर रही है बेबी?
0: Oh, how sweet she is in her doctor's uniform, sir.
1: अच्छा. अच्छा, तुम जाओ.
0: But sir, madam has told me.
1: Shuko, understand?
0: Okay, sir. Okay, sir.
1: All right. Baby, तूने मेरी लाश देख ली बेटे. खुदा तेरी उम्र दराज करे. तुझ में वो सारी खूबियां समा जाएं जो.
2: अरे, आपने नाश्ता नहीं किया अब तक? मैं कह रही हूँ, नाश्ते की ट्रॉली कब से खड़ी है आपके सामने?
1: पता नहीं.
2: क्या बात है? क्या सोच रहे हैं आप?
1: कुछ नहीं.
2: कुछ तो
1: सोच रहा था. अज़रा और सलीम ने तो मुझे मायूस कर दिया था. लेकिन बेबी के रूप में जैसे मुझे मेरी खोई हुई दुनिया मिल गई. आज मैं किस कदर खुश हूं तुम इसका अंदाजा नहीं कर सकती रतिया. मैं महसूस कर रहा हूं मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा हो गया. मैं देख रहा हूं मेरी दीदी मेरे सामने खड़ी है. मेरी दीदी. उनसे पहली मुलाकात का वाकया मुझे आज भी याद है. तब 10वीं में पढ़ता था मैं.

0: ए मिस्टर, देख के नहीं चलते
1: जी?
0: सुनते भी कम हो क्या?
1: सुनता तो हूँ जी।
0: तो फिर सड़क पर चलना नहीं आता क्या?
1: वो भी आता है, लेकिन शायद आप कुछ नहीं जानती।
0: क्या मतलब?
1: मतलब ये कि गाड़ी चलाना औरतों का काम नहीं, क्या समझी?
0: काफी गुस्ताख हो तुम।
1: आपसे कम हूँ जी।
0: बात करना सीखो
1: और आप भी गाड़ी चलाना सीखिए, क्या समझी?
0: ओ तो ये बात है।
1: हाँ जी, बिल्कुल यही बात है। बड़ा रौब जमाती हैं आप तो।
0: कहाँ रहते हो?
1: ये दुनिया बहुत बड़ी है मिस साहिबा।
0: क्या नाम है तुम्हारा?
1: क्यों बताऊं?
0: अच्छा, अगर प्यार से पूछूं तो?
1: प्यार से? काफी चालाक हैं आप तो।
0: चलो यूं ही सही।
1: जब कोई प्यार से पूछे तो बताना ही पड़ेगा।
0: तो बताओ ना।

0: सुल्तान अहमद।
1: नाम तो अच्छा है।
0: फिर क्या इरादा है आपका?
1: मेरा नाम नहीं पूछोगे?
0: जी
1: मुझे पुष्पा कहते हैं। कहाँ जाओगे?
0: जी
1: फिर वही जी। अरे मैं पूछ रही हूँ, आप कहाँ जाओगे?
0: आखिर आप चाहती क्या है?
1: घबराओ नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी।
0: ओह शुक्रिया शुक्रिया, अभी अभी मेरे पांव सलामत हैं जी।
1: वो तो मैं भी देख रही हूँ, मगर मेरा ख्याल है अच्छे लड़के जिद नहीं करते।
0: आप कैसे कह सकती हैं कि मैं अच्छा लड़का हूँ?
1: देखते नहीं मैं तुमसे कितनी बड़ी हूँ।
0: हाँ तो क्या हुआ?
1: हुआ ये कि मैं बहुत सोच समझ कर बात कर रही हूँ, देख कर ही पहचान लेती हूँ कि तुम वाकई अच्छे लड़के हो।
0: अच्छा
1: चलो बस अब बैठ जाओ।
0: अगर ये बात है तो चलिए आप भी क्या याद करेंगी, बैठे जाते हैं।

0: हाँ, अब फरमाइए
1: जी। क्या फरमाऊं?
0: मेरा मतलब है, कहाँ जाएंगे आप?
1: ओ, आजाद नगर।
0: वहीं रहते हैं?
1: जी हाँ, टॉकीज के सामने रहता हूँ मैं।
0: टॉकीज के सामने? कब से रहते हो वहाँ?
1: क्यों?
0: इसलिए कि मैं भी वहीं रहती हूँ।
1: अरे, कहाँ पर?
0: वो नीली कोठी में।
1: ओ, मैं पीली बिल्डिंग में रहता हूँ।
0: अच्छा।
1: हाँ, अभी एक साल हुआ है हम लोगों को, इंदौर से आए हम लोग।
0: अच्छा अच्छा।
1: और मेरे वालिद इंस्पेक्टर हैं सेंट्रल एक्साइज में।
0: और तुम शायद पढ़ते हो?
1: जी हाँ, 10th में।
0: मैं भी पढ़ती हूँ।
1: अच्छा, कहाँ पे?
0: गवर्नमेंट कॉलेज में, बीए का फाइनल ईयर है मेरा।
1: फाइनल करने के बाद क्या करेंगी आप?
0: क्यों?
1: यूं ही पूछ रहा था।
0: पता नहीं क्या करूंगी, वैसे तो मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ।
1: ओ, डॉक्टर? पर आप तो आर्ट की स्टूडेंट है ना?
0: वही तो, यही तो खराबी है इस दुनिया में, आदमी जो कुछ करना चाहता है वो कर नहीं पाता, और जो होता है वो चाहता नहीं।
1: ये बड़ी अजीब बात है, वाले साहब भी मुझे वकील बनाना चाहते हैं।
0: और तुम क्या चाहते हो?
1: भाई, मैं तो इंजीनियर बनना चाहता हूँ।
0: डॉक्टर क्यों नहीं?
1: मेरा ख्याल है मैं डॉक्टर से अच्छा इंजीनियर बन सकता हूँ।
0: हाँ चलो, ये भी ठीक है। वैसे भी आज देश को वकीलों से ज्यादा तो डॉक्टर्स और इंजीनियर की ही जरूरत है।
1: मगर हमारे वारिस साहब का ख्याल है कि इंजीनियर जिंदगी भर दूसरों के घर बनाता फिरता है, मगर खुद उसका कोई घर नहीं होता। खाना बदोशों की तरह इधर उधर घूमता फिरता है।
0: अपनी जात के लिए सोचने वाले ये नहीं जानते कि खिदमत खल्क से अच्छा इस दुनिया में कोई और काम ही नहीं।
1: जी।
0: अच्छा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरा मतलब है कि तुम्हारी बहन भी है?
1: नहीं, मैं अकेला हूँ।
0: ओ,
1: क्यों?
0: कुछ नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह बहुत अकेली हूँ, मेरा भी कोई नहीं है।
1: ऐसा क्यों है? जिन लोगों के सीने मोहब्बत के नूर से मामूर है, वो भाई बहन के नाम को तरसते हैं, और जिनके भाई बहन हैं वो अपने सिवा कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं देखते।
0: अभी तुम बहुत छोटे हो, तुमको ऐसी बातें नहीं सोचना चाहिए।
1: मुझे मेरे अकेलेपन ने वक्त से पहले बूढ़ा बना दिया है। आप हैरान रह जाएंगी, कभी कभी मुझ पर दीवानगी का दौरा पड़ता है।
0: क्या?
1: मेरा जी चाहता है कि रास्ते चलते किसी भी लड़की को पकड़कर उसका मुंह चूम लूं। हाँ, उसके बाल बिगाड़ दूं, और पूछूं कि भाई बहन का रिश्ता इतना महदूद क्यों है। मैं एकदम पागल हो जाता हूँ।
0: अच्छा सुनो, इधर देखो। अगर तुम चाहो तो मेरे बाल बिगाड़ सकते हो, मेरा मुंह चूम सकते हो।
1: दीदी।
0: हाँ।
1: क्या कह रही है?
0: भैया।
1: दीदी।
0: मेरे अच्छे भैया।
1: ये लीजिए, ये आ गया मेरा घर।
0: और वो देखो, वो सामने रही मेरी कोठी।
1: अच्छा, वो है आपकी कोठी?
0: नहीं तो, मैं तो उसमें रहती हूँ। अच्छा, कल आओगे ना?
1: जरूर।

0: ओ, अब उठिए ना, कब तक सोते रहेंगे? मैंने कहा सुनते हैं आप? क्या 10 बज गया?
1: तो क्या हुआ भाई, आज तो इतवार है ना।
0: कम से कम नाश्ता तो कर लीजिए, कब से पड़ा ठंडा हो रहा है।
2: आपने कर लिया?
0: फिर वही।
2: बेगम आपसे भी हद है, मैंने कितनी बार कहा है कि कम से कम इतवार के दिन तो नाश्ता कर लिया कीजिए, बेकार में मेरी वजह से भूखी रहती हैं आप।
0: अच्छा अच्छा, आप जल्दी से उठ के शेव कर लीजिए, मैं जब तक चाय तैयार करती हूँ।
2: ठीक है। हाँ, सुल्तान कहाँ है?
0: पुष्पा के यहाँ गया है।
2: पुष्पा के यहाँ? आखिर तुम उसे रोकती क्यों नहीं, जब देखो वहीं घुसा रहता है।
0: क्यों,

0: कम एतवार के दिन तो नाश्ता कर लिया कीजिए, बेकार में मेरी वजह से भूखी रहती हैं आप।
1: अच्छा अच्छा, आप जल्दी से उठ के शेव कर लीजिए, मैं जब तक चाय तैयार करती हूँ।
0: ठीक है। हाँ, सुल्तान कहाँ है?
1: पुष्पा के यहाँ गया है।
0: पुष्पा के यहाँ? आखिर तुम उसे रोकती क्यों नहीं, जब देखो वहीं घुसा रहता है।
1: क्यों, क्या हुआ?
0: हुआ ये कि वो बच्चा नहीं रहा, पूरी तरह जवान हो चुका है।
1: अरे वो तो मैं भी जानती हूँ, मगर कोई बात तो मालूम हो।
0: बेगम आपसे भी हद है, ये भी नहीं समझती कि जमाना कितना खराब है। खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो सारे शहर में आग लग जाएगी।
1: हाय अल्लाह, क्या कहते हैं आप?
0: बेगम मैं सच कह रहा हूँ, बहुत बुरा जमाना है, पता नहीं कब क्या हो जाए।
1: मगर सुल्तान और पुष्पा के बीच तो सगे भाई बहनों जैसा रिश्ता है।
0: लोग तो इस तरह नहीं सोचते ना।
1: लोगों का क्या है, वो तो किसी को भी माफ नहीं करते।
0: वही तो मैं भी कह रहा हूँ बेगम।
1: तो अजी इसका ये मतलब भी नहीं कि लोगों की बातों में आकर हम अपने बच्चों की नियत पे शक करें।
2: मैं पूछता हूँ, बिला वजह मुसीबत मोल लेने से फायदा? पुष्पा एमए कर चुकी है और तुम्हारा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, फिर दोनों के दरमियान वो कौन सी कदरें मुश्तरक है जो एक दूसरे से मिलते हैं?
1: तो क्या भाई बहन का प्यार कोई चीज नहीं?
0: ओहो, अब मैं तुमको कैसे समझाऊं? पुष्पा के घर वाले समझते हैं वो महज सुल्तान की खातिर शादी से इनकार कर रही है।
1: हाय अल्लाह, ये आपसे किसने कहा?
0: उसके चचा ने।
1: अच्छा,
0: कल वो मेरे पास आए थे, कह रहे थे उनकी बीवी के रिश्तेदारों में एक अच्छा सा लड़का है, काफी दौलतमंद और पढ़ा लिखा भी है, मगर पुष्पा है कि किसी तरह तैयारी नहीं।
1: आए है तो इसमें सुल्तान का क्या कसूर?
0: कसूर ये है कि उनको यकीन है कि अगर सुल्तान पुष्पा पर जोर डाले तो जरूर तैयार हो जाएगी। इसका मतलब समझती हैं आप?
3: देखो सुल्तान, मैं सब कुछ समझती हूँ, तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं कि दूसरों की बातों में आकर मुझे सबक पढ़ा रहे हो तुम।
4: मगर मैं पूछता हूँ दीदी, हरी बाबू में ऐसी क्या बुराई है जो?
3: क्या चाहते हो तुम, मैं उस शख्स से शादी कर लूं जो बीवी और जागीर में कोई फर्क ही ना कर सके? क्या तुम इस बात को पसंद करोगे कि तुम्हारी बीवी ड्राइंग रूम की जीनत बनाकर बिठा दी जाए? क्या तुम यार दोस्तों की महफिल में अपनी बीवी की नुमाइश करके बड़े फख्र के साथ कह सकोगे कि ये है वो खूबसूरत याकार जिसे मैंने दौलत के बलबूते पर हासिल किया है?
4: हरगिज़ नहीं।
3: तो फिर सोचो, मेरी जिंदगी, मेरी हस्ती और मेरी खूबसूरती को शोकेस में सजाकर जगह जगह नुमाइश की जाएगी, तो क्या मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाऊंगी? बोलो।
4: अगर अंकल तो कह रहे थे कि वो
3: उनकी बात छोड़ो, वो तो ये चाहते हैं कि मैं जिंदगी भर ऐश करूं, मगर मैं जानती हूं ऐश इशरत के बोझ तले दबकर मेरा वजूद मिट जाएगा, कुछ भी नहीं रहूंगी मैं।
4: अच्छी बात है, लोग तो चाहते हैं कि आराम की जिंदगी गुजारे, और आप हैं कि आराम को हराम समझकर पता नहीं क्या चाहते हैं आप।
3: मैं जो कुछ चाहती हूँ वो तुम अच्छी तरह जानते हो सुल्तान।
4: दीदी
3: मैं फैसला कर चुकी हूँ, अगर मुझ पर ज्यादा दबाव डाला गया तो मैं
4: तो क्या करेंगे आप?
3: तो मैं सब कुछ छोड़कर चली जाऊंगी।
4: कहाँ?
3: हे दुनिया बहुत बड़ी है सुल्तान, और इसमें बहुत से काम अधूरे पड़े हैं।
4: क्या करेंगे आप?
3: जो चाहती हूँ वो तो नहीं कर पाऊंगी, मगर हाँ कोशिश जरूर करूंगी कि लोगों की खिदमत कर सकूं, उनके किसी काम आ जाऊं। आज मेरा अपना कोई नहीं, कोई भी तो नहीं कि जिसके सामने अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं।
4: दीदी, दीदी खुदा के लिए चुप हो जाइए, दीदी चुप हो जाइए प्लीज, नहीं तो मैं भी रो दूंगा दीदी, मैं भी रो दूंगा।
3: सुल्तान एक बात कहूं मानोगे?
4: बोलो कहो।
3: मैं जब यहां से जाने लगूं तो मुझे छोड़ने मत आना तुम।
4: छोड़ने मत आना? क्यों?
3: नहीं तो मैं जा नहीं सकूंगी। देखो सुल्तान, मेरे जाने के बाद तुम मुझे भूल जाना।
4: दीदी खुदा के लिए मत कहिए दीदी।

0: अरे आप गए नहीं अब तक? मैं तो समझी थी कि
1: जाऊं कैसे, तुम्हारे बेटे साहब छोड़े तब ना।
0: है किसका बेटा?
1: क्या मतलब?
0: मतलब ये कि 10:30 बज रहा है।
1: 10:30 बज गया?
0: जी ये देखिए।
1: ओ अच्छा,
0: अब मगर सुनिए तो
1: क्या है,
0: वापसी में अजरा के लिए किताबें जरूर लेते आइएगा और आपके बेटे के लिए दूध का डिब्बा।
1: हाँ जरूर, लेकिन 4:30 बजे के करीब मुझे फोन कर देना याद से। अच्छा जा रहा हूँ मैं।
0: तौबा है मेरी, ये क्या करते हैं आप हर रोज?
1: क्या करता हूँ?
0: आपको पता नहीं बच्चों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। अजरा तो मुझसे कई बार पूछ चुकी है।
1: क्या?
0: यही कि हर रोज आप इस तस्वीर के सामने खड़े होकर ये पुजारियों की तरह क्या पढ़ते हैं?
1: पढ़ता नहीं, उनको याद करता हूँ।
0: याद करने का ये तरीका हमारे मजहबी उसूलों के खिलाफ है, ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम है ना?
1: तुम भी अच्छी तरह जानती हो रसिया कि दीदी मेरा आइडियल है, मैं उनको एक लम्हा के लिए भी अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकता।
0: मैं ये कब कहती हूँ कि आप उन्हें भूल जाइए, मगर ये तरीका ठीक नहीं है।
1: देखो रसिया, पूरे 8 साल हो चुके हमारी शादी को, इस बीच तुमने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। ये सोचकर मैं बहुत खुश था कि तुमने मेरे अंदर की सच्चाइयों को देख लिया है, तुम वाकई मेरी शरीक हयात हो। मगर आज तुमने सारा भरम तोड़ दिया। मैं तुम्हारी सूरत में उस गंदी जहनियत का अक्स देख रहा हूं जो
0: सुल्तान, खुदा के लिए मुझे गलत मत समझो, मैं कसम खाकर कहती हूँ मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है।
1: तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा?
0: गलती हो गई सुल्तान, माफ कर दीजिए। हेलो, कहाँ से? जी एक मिनट, आपका ट्रंक कॉल है।
1: ट्रंक कॉल कहाँ से?
0: हेड ऑफिस से।
1: हेलो, जी हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। जी जी हाँ, हो थैंक यू सर। सर ये सब आपकी मेहरबानी है सर। जी नहीं सर, मैं एकदम तैयार हूँ सर। जी जैसा फरमाया सर। जी बहुत अच्छा सर, थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन सर। जी खुदा हाफिज।
0: क्या हुआ?
1: कुछ नहीं, चलने की तैयारी करो।
0: कहाँ?
1: जबलपुर।
0: क्यों?
1: अरे भाई मेरा तबादला हो गया है।
0: तबादला? ये कैसे हो सकता है, 1 साल में 2-2 बार?
1: अरे भाई ये सब उसकी मेहरबानी है, मुझे प्रमोट करके ऐसी बना दिया गया है।
0: अच्छा सच? सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है।
1: और सबसे बड़ी बात ये है कि अब पुष्पा दीदी के पास पहुंच जाऊंगा।
0: अरे हाँ वो भी तो वही है ना।
1: हाँ रतिया,
0: ये बहुत अच्छा हुआ।
1: और तुमको ये शिकायत भी नहीं रहेगी कि मैं उनकी तस्वीर के सामने खड़े होकर अपने मजहबी उसूलों के खिलाफ वर्जी करता हूँ।
0: देखिए इसका ये मतलब हुआ कि आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया।
1: मुझे यकीन है रतिया कि वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी।
0: मेरी बात का जवाब तो दीजिए ना।
1: क्या?
0: आपको मेरी कसम, कहिए ना कि आपने माफ किया।
1: अरे बेगम, तुमने मेरा नहीं दीदी का कसूर किया है, और वो इतने फराक दिल हैं कि तुम्हें जरूर माफ कर देंगे।
0: मगर आप नहीं करेंगे।
1: अरे भाई मैं तो पहले ही माफ कर चुका हूँ। अच्छा अब जल्दी तैयारी करो, मैं तब तक ऑफिस होकर आता हूँ।
0: जल्दी आइएगा।
1: अच्छा
2: कौन? अरे भाई कौन है?
1: दीदी।
2: अरे तुम?
1: हाँ दीदी।
2: सुल्तान।
1: हाँ दीदी मैं हूँ।
2: अरे तुम इतने बड़े हो गए?
1: और आप भी तो कितनी बदल गई हैं। अरे बीमार हैं क्या आप?
2: नहीं तो।

0: आ अंदर आओ। मगर जरा ठहरो।
1: क्यों?
0: एक मिनट, मैं तुम्हारी आरती तो उतार लूं।
1: आरती? अरे मैं कोई भगवान का अवतार हूं क्या दीदी?
0: मेरा भैया भगवान के अवतार से कम है क्या? वो आज मेरे घर आया है, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है?
1: मैं भी कितना खुश नसीब हूं कि
0: कब आए?
1: आज ही, बल्कि बस अभी चला ही तो आ रहा हूं मैं।
0: सामान कहाँ है?
1: बंगले पर, और वहां आपकी बहू भी है।
0: बहू? तो क्या वो भी आई है?
1: हाँ दीदी, और आपकी दुआ से दो बच्चे भी हैं, अदरा और सलीम।
0: अच्छा, तो उन्हें क्यों नहीं लेकर आए?
1: मैं आपको साथ लेने आया हूँ।
0: मुझे?
1: हाँ आपको, जानती हैं आप, मैं अब मुस्तकिल तौर पर यहीं आ गया हूँ।
0: सच? अरे फिर तो मैं
1: दीदी, ऐसा कब से आपको?
0: कुछ नहीं, वो तो बस यूं ही कभी कभी ठसका सा लग जाता है।
1: ठसका? नहीं दीदी, ये तो दीदी
0: तुम बताओ।
1: उस दौरान मैंने आपको बहुत से खत लिखे, अगर आपने किसी एक का भी जवाब नहीं दिया।
0: नहीं तो, अरे मैंने तो तुझको हर रोज खत लिखा।
1: अरे
0: खत लिखती थी और खुद ही उसका जवाब देकर फाड़ डालती थी।
1: मगर क्यों?
0: इसलिए कि मैं भी तेरी तरह थोड़ी थोड़ी पागल हूं ना।
1: तो फिर तैयार हो जाइए दीदी, आज से आप मेरे साथ रहेंगी।
0: पागल हो तुम तो, अपनी मोहब्बत के जोश में भूल रहे हो कि मैं सिर्फ तुम्हारी दीदी ही नहीं, बहुत से बच्चों की माँ भी हूँ।
1: बहुत से बच्चों की माँ?
0: हाँ सुल्तान, इस स्कूल में पढ़ने वाले ज्यादा बच्चे तो अनाथ और बेसहारा हैं, जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं। अगर मैं उन्हें छोड़कर चली गई तो चाय पियोगे?
1: हाँ वो जरूर पीऊंगा, मगर अभी नहीं।
0: क्यों?
1: इसलिए कि रजिया से मैं आपके मुतालिक इतनी बातें कर चुका हूँ कि वो आपसे मिलने के लिए बेताब है।
0: अगर ये बात है तो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ।
1: चलो,
0: मगर एक शर्त है।
1: शर्त? क्या?
0: ठीक 7 बजे मुझे यहाँ छोड़ जाना।
1: क्यों?
0: अरे बच्चों के खाने का वक्त हो जाएगा, वो मेरे बगैर भूखे रहेंगे नहीं तो। अरे अरे अरे अल्लाह,
1: क्या हुआ? रजिया, क्या हुआ तुम्हें? रजिया?
2: कुछ नहीं, सुबह से ये वक्त हो गया।
1: अच्छा,
2: बार बार दर्द उठ रहा है।
1: मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ।
2: वो तो ठीक है, मगर दीदी वो हमारा इंतजार कर रही होगी ना।
1: फिर क्या रहता है, ऐसी हालत में चलोगी तुम?
2: आप बुरा तो नहीं मानेंगे?
1: तुमसे भी हद है रसिया, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। वो तो खुद कई बार मुझसे कह चुकी हैं कि ऐसी हालत में बड़ी एहतियात की जरूरत है।
2: तो फिर आप चले जाइए प्लीज।
1: तुम्हें छोड़कर इस हालत में?
2: हाँ, मेरी तरफ से बहुत बहुत माफी मांग लीजिएगा उनसे।
1: नहीं रजिया, मैं फोन करके उन्हें यहीं पर बुला लेता हूँ।
2: नहीं नहीं, वो नहीं आ सकेंगे।
1: क्यों, क्यों नहीं आ सकेंगी?
2: वो बीमार हैं।
1: बीमार हैं?
2: हाँ, अभी कुछ देर पहले टेलीफोन पर उन्होंने बताया था, कल से उनकी तबीयत ठीक नहीं है।
1: फिर तो मुझे जाना ही पड़ेगा।
2: हाँ आप हो आइए और सुनिए।
1: हाँ बोलो।
2: वो रास्ते में डॉक्टर जौहरी को कहते जाइएगा।
1: हाँ,
2: वो आ जाएंगे।
1: ठीक है।
0: तुम जानते हो मैं डॉक्टर बनना चाहती थी।
1: हाँ।
0: मगर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी।
1: हाँ, तो
0: जानते हो मेरे अंदर की ये ख्वाहिश क्यों पैदा हुई?
1: जी नहीं।
0: तो सुनो, मैंने अपनी आंखों के सामने

0: अपनी माँ को तड़पते हुए देखा है, चीखते हुए सुना है, डॉक्टर डॉक्टर, मगर डॉक्टर नहीं आया और मेरी माँ तड़प तड़प कर मर गई। उनको भी यही बीमारी थी
1: क्या
0: पता नहीं, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी आजरा है ना,
1: हाँ दीदी,
0: वो जब बड़ी हो जाए तो
1: जी
0: उसको डॉक्टर बनाना
1: जी,
0: बनाओगे ना?
1: हाँ दीदी।
0: सुल्तान
1: जी दीदी,
0: देखो
1: जी
0: ये मेरी आखिरी ख्वाहिश, तुम
1: आपकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। दीदी दीदी दीदी दीदी हेलो जी, हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। क्या लड़की हुई है? या खुदा, ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है?
0: ओह, आपने ये बात अब तक मुझसे क्यों छुपाई?
1: इसलिए कि मैं नहीं चाहता था हसरा और सलीम जो कुछ बनना चाहते हैं मैं उनके रास्ते में रुकावट बनूं।
0: तो फिर उनसे शिकायत भी तो गलत है ना?
1: मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, बल्कि खुश हूं मैं कि जब से बेबी ने इस घर में कदम रखा है दीदी की खुशबू मेरे चारों तरफ महकती रहती है। मुझे एक लम्हा के लिए भी महसूस नहीं हुआ कि मेरी दीदी मुझे छोड़कर चली गई।
2: पापा।
1: बेटे।
2: Blaise, पापा, please. It is my first case. May I be successful?
1: Wish you all the success. All the success. Go. May God help you. खुदा तुम्हें कामयाबी अता करे मेरे बेटे।
2: Thank you, पापा. Thank you.
1: लेकिन सुनो बेटे।
2: Yes, पापा.
1: देखो बेटे, तुमने जिस रास्ते पर कदम रखा है वो इंसानियत, मोहब्बत, खुलूस और खिदमत का रास्ता है। कहीं ऐसा ना हो मेरे बेटे कि तुम्हारे कदम डगमगा जाए और मुझे किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े।
2: पापा,
1: तुम्हें मालूम है ना बेटे, तुम किसी की अमानत हो।
2: हाँ मैं जानती हूँ पापा, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है?
1: लोगों की खिदमत करना, याद है ना?
2: हाँ पापा।
0: खुश रहो बेटे, खुश रहो।
1: जाओ बेटा, खुदा तुम्हें कामयाब कर।

0: अभी आप सुन रहे थे कमर जमाली का लिखा नाटक खुशबू का नगमा। भाग लेने वाले कलाकार थे अशोक बुलानी, बद्रुन निसा, आशा मिश्रा, विकार हुसैन, अनीस फातिमा, मकबूल हसन और दीप्ति तंतुवाय। प्रस्तुति सहयोग श्रीमती वर्षा शर्मा और आनंद सिंह उद्देका, और इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे चित्रेंद्र स्वरूप राजन।
1: ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा।
2: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
3: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
3: आकाशवाणी है ना,
5: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
3: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन।

0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में।
5: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है छतरपुर जिले की चिट्ठी, आलेख सुनील पांडे, वाचन स्वर दीपा सिंह। छतरपुर जिले में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। जिले के खजुराहो और नौगांव का तापमान 40 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने जिलेवासियों को धूप और लू से बचाव करने के निर्देश दिए हैं। लोगों से शीतल पेयजल का उपयोग करने, धूप में नहीं निकलने, धूप से बचाव के लिए चश्मे और छाते का उपयोग करने को कहा है। जिले में इन दिनों कलेक्टर के निर्देश पर जलगंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्राचीन तालाबों बावड़ियों की साफ सफाई, पुराने तालाबों का गहरीकरण, सार्वजनिक कुओं की साफ सफाई की जा रही है, ताकि आने वाली बारिश के पहले बेहतर जल प्रबंधन हो सके। निजी समाजसेवी संस्थाएं भी जल प्रबंधन के कार्य में सहभागी बनी हुई है। छतरपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नमा शिवाय अर्जरिया बताया है कि जिले की सभी ग्राम पंचायत में एक एक काम जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत सुनिश्चित किया गया है। जिले में जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान गणना का कार्य जारी है। इसी क्रम में गौरिहार तहसील में सबसे पहले HLB का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा हरपालपुर, लवकुशनगर, चांदला निकायों में भी 100% कार्य पूरा कर लिया गया है। कलेक्टर और प्रमुख जनगणना अधिकारी पार जायसवाल ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रगण को, सुपरवाइजर्स, ग्रामीण अधिकारी, SDM सहित संपूर्ण टीम को बधाई दी है। कलेक्टर ने कहा कि इस प्रकार की जिम्मेदारी और समर्पण से ही जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य को समय से पहले सफलतापूर्वक सम्पन्न किया जा सकता है। SDM बलबीर रवन ने प्रगणकों को प्रशस्ति पत्र सौंपकर सम्मानित किया। वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाए जाने के उपलक्ष्य में खरीफ फसल की तैयारियों को लेकर छतरपुर जिले में जागरूकता अभियान प्रारंभ हो गया है। इसी क्रम में 16 मई से 10 दिन तक संचालित होने वाले कृषि रथ को छतरपुर विधायक ललिता यादव ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला पंचायत CEO नमा शिवाय, अर्जरिया उप संचालक कृषि अनिल मिश्रा सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। छतरपुर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का काम युद्ध स्तर पर जारी है। अभी तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक 1,37,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है। जिला नागरिक और खाद्य आपूर्ति अधिकारी सीताराम कुठारी ने बताया कि जिले में 80 उपार्जन केंद्र बनाए गए थे, जिसमें किसानों के लिए छाया पानी की पर्याप्त व्यवस्थाएं भी की गई थी। शासन के निर्देशानुसार गेहूं खरीदी 23 मई से बढ़ाकर 28 मई कर दी गई है। किसानों को 2,625 रूपए प्रति क्विंटल की दर से उनके बैंक खातों में सीधे भुगतान किया जा रहा है। किसानों के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी और कोताही ना हो, इसके लिए जिला कलेक्टर द्वारा निरीक्षण टीम में गठित की गई है। छतरपुर जिला कलेक्टर पार जायसवाल ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और फार्मर रजिस्ट्री सहित विभिन्न राजस्व कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण और फार्मर रजिस्ट्री में प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे छतरपुर जिले की चिट्ठी। आलेख था सुनील पांडे का, वाचन स्वर दीपा सिंह का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था।
1: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जा

0: जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर।

गीत सागर कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को रानू शर्मा का स्नेह भरा नमस्कार। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और इस भीषण गर्मी में अपना ख्याल ज़रूर रख रहे होंगे और सुन रहे होंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम गीत सागर। भाई, गीत सागर आया है तो कुछ ना कुछ खास लेकर ही आया होगा। आप ऐसा सोच रहे होंगे, भाई तो हम आपको बता देते हैं कि आज हम लोग करने वाले हैं ढेर सारी बातें। दोस्तों, कितना अच्छा लगता है ना कि जब कोई अच्छी बात हो रही है, हमारे मन का गाना बज रहा है और हम अपने घर में सुकून से बैठे हैं, मौसम चाहे कोई भी क्यों ना हो, अगर हाथ में चाय का एक प्याला होता है तो वो बात ही निराली होती है। आप सोच रहे होंगे इस भीषण गर्मी में हम चाय की बात क्यों कर रहे हैं। भाई, चाय की बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज है 21 मई और आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल टी डे मनाया जा रहा है। तो भाई, हम क्यों चाय की चर्चा के बिना रहें? भाई, चाय पर हम चर्चा करेंगे और बताएंगे आपसे चाय की बहुत सारी विशेषताएँ।

दोस्तों आज का दिन चाय को समर्पित है। चाय, जी हाँ, इसका हम सब पर इतना असर है कि इसके बिना तो हम भारतीयों की सुबह ही नहीं होती। हमारे लिए चाय कोई ड्रिंक नहीं, ये तो एक इमोशन है दोस्तों। अदरक वाली कड़क चाय, इलायची वाली रिफ्रेशिंग चाय, ग्रीन टी, वाइट टी, कैमोमाइल टी, मोरिंगा टी और ना जाने कितनी तरह की चाय हमारे आसपास है। भोपाल की शान जो है नमक वाली चाय, इसे हम कैसे भूल सकते हैं दोस्तों। चाय तो बस चाय है, इसका कोई जोड़ नहीं, इसका कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं होता। सुबह में जब हम उठते हैं, खिड़की से उजाला आते ही हमें ऐसा लगता है उठें और फटाफट चाय की चुस्की ले लें। अलार्म बाद में बजता है, चाय का ख्याल पहले आता है। कई बार ऐसा होता है कि आप सो रहे हैं, रसोई में कोई चाय बना रहा है, उसकी खुशबू ही आपकी नींद उड़ा देती है और आप फौरन पहुंच जाते हैं चाय की चुस्की लेने। होता है ना आपके साथ भी ऐसा?

श्रोताओं, यूं तो कई तरह की चाय होती है जो हमें हमेशा पसंद आती है, लेकिन अब बात कुछ ऐसी चाय की जो आपकी लाइफ की बहुत ही प्यारी मेमोरीज बन चुकी हैं। जी हाँ, किसी का रास्ता तकते हुए आपने चाय की चुस्कियाँ ली हो तो वो इंतज़ार वाली चाय आपको ज़रूर याद आती होगी। जब मन थोड़ा भारी हो, बालकनी के किसी कोने पर आप परेशान मन को सुकून देने के लिए अपनी पसंदीदा चाय की चुस्की ले रहे हों, तो सुकून देने वाली चाय को भी कोई भुला नहीं सकता। दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए, ठहाके लगाते हुए जश्न वाली चाय हो, या फिर चंदा करके टपरे में खड़े होकर के पी गई टपरी वाली चाय, जी हाँ, ये जो चाय है उसका तो मज़ा ही निराला होता है। कॉलेज के दिन हो और टपरी वाली चाय अगर आपने नहीं पी है तो फिर समझिए कि आपने कॉलेज का जो एक तरह से कहना चाहिए कि इन्जॉयमेंट जो है, जो आपने उस जीवन का आनंद नहीं लिया। भाई, दोस्तों के साथ चाय पीना एक तरह से यादगार पल होता है। जब आप अपने दोस्तों के साथ बातें भी कर रहे होते हैं, मस्ती भी कर रहे होते हैं, साथ ही अपने कई बार दोस्तों की खिंचाई होती है, कई बार पढ़ाई की बात भी होती है, यानी जो चाय पे चर्चा होती है वो हमेशा दोस्तों निराली ही होती है।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: गीत सागर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से, और आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल टी डे की। दोस्तों, चाय की चुस्कियां तो आप जरूर लीजिएगा। आज स्पेशल

श्रोताओं, कई बार चाय के बहाने बहुत से बिगड़े काम बन जाते हैं, और अगर आपने चाय अच्छी नहीं बनाई तो बनते हुए काम बिगड़ भी सकते हैं। भाई, चाय होती ही ऐसी है, तो कैसे चाय के बहाने काम बनते हैं उसका नज़ारा इस गीत के माध्यम से हम आपको बताते हैं।

0: कसम, खाओगे ना?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: हाँ।
1: तेरी कसम, आऊंगा।
2: श्रोताओं, कहने को चाय सिर्फ एक पेय है, लेकिन ये दुनिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूम की जाने वाली चीज़ है, सबसे ज़्यादा इसे पिया जाता है। भारतीयों के लिए चाय एक भावना है, एक एहसास। ज़िंदगी के हर मौसम में आप इसे पीना चाहते हैं। गर्मी लग रही होती है तो हमारे पास तर्क होता है कि भाई चाय पीने से गर्मी कम होगी, और ये कहकर हम चाय की चुस्कियाँ ले लेते हैं। बारिश होती है तो चाय का साथ पकौड़े देते हैं। अगर सर्दी का मौसम है तो अदरक वाली, तुलसी वाली, काली मिर्च वाली चाय हम लोग पसंद करते हैं। और जब ये प्यारी चाय हमारे जहन में उतरती है, हमें जब हम इसे पीते हैं तो उसका आनंद ही अलग होता है। रूठों को मना देती है ये चाय, और कई बार तो ऐसे ऐसे काम चाय पीते हुए आप कर लेते हैं जो आप प्लान भी नहीं करते दिन में। जैसे चाय पीते पीते आप अपना मनपसंद संगीत सुनते हैं, चाय पीते पीते आप अखबार पढ़ लेते हैं, चाय पीते पीते आप अपनी अलमारी जमा लेते हैं। भाई अगर आप चाहें तो चाय पीते पीते क्या नहीं कर सकते। भाई बस एक तैयारी तो कीजिए, फिर देखिए चाय की चुस्कियाँ कैसे आपका दिन बना देती हैं।

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम। आकाशवाणी।

హలో 9821026212 BPL. అరే 9820026235 మ్యాక్స్ టచ్.

श्रोताओं, गीत सागर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से। अभी हम बात कर रहे थे चाय की। जी हाँ, चाय जिस तरह से इसमें बहुत सारी खूबियां हैं, कई बार ज़्यादा चाय पीना एक एडिक्शन की तरह हो जाता है जो हमारी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। वैसे ही बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे हाथ में छोटा सा गैजेट मोबाइल। जी हाँ, ये है तो बड़े काम का, लेकिन अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या आपको इसकी इतनी आदत पड़ जाती है कि वो लत की तरह हो जाती है, तो इसका हमारे दिमाग पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। मोबाइल से हमें दूरी बनानी चाहिए। जी हाँ, जब आप मोबाइल पर काम नहीं कर रहे हैं तो कम से कम घंटे दो घंटे के लिए मोबाइल को

श्रोताओं, का आपको याद है कि पिछली बार कब आपने उगते हुए सूरज को चैन से निहारा था, कब आप सुबह की ठंडी हवा में टहलने निकले थे और उस दौरान भी आपके हाथ में वो मोबाइल ना रहा हो और आप इन सब के बीच भी मोबाइल के नोटिफिकेशंस चेक ना कर रहे हो। याद है क्या आपको कोई ऐसा मौका? भाई, अक्सर होता ये है कि हम फ़ोन के नोटिफिकेशन में इतना खो जाते हैं कि हमें आसपास की सुंदरता नज़र ही नहीं आती। घर में हम फ़ोन चेक कर रहे होते हैं, ऑफिस में घंटों लैपटॉप पर हम काम कर रहे होते हैं, घर आते ही या फिर किसी से मिलने जाने पर भी हाथ में मोबाइल रहता है, हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं, देखते रहते हैं और जब भोजन का समय होता है या फिर सोने का समय होता है तब भी हम वेब सीरीज़ या दूसरी गतिविधियां, समाचार हम मोबाइल पर देखते रहते हैं। कुल मिलाकर कहना ये चाहते हैं हम कि हमारी ज़िंदगी जो है वो स्क्रीन्स के बीच सिमट कर रह गई है। अगर हम एक एवरेज निकालें तो हर दिन रोज़ाना लोग कम से कम सात से आठ घंटे इस स्क्रीन पर बिता रहे हैं और जानते हैं कि ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। ये डिजिटल एडिक्शन हमारी नींदें उड़ा रहा है, हमें ना चाहते हुए भी तनाव की तरफ ढकेल रहा है। लेकिन दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका समाधान भी हमारे ही हाथ में है और वो है डिजिटल फास्टिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये डिजिटल फास्टिंग क्या चीज़ होती है? तो जैसे दोस्तों हम अपने पाचन तंत्र को आराम देने के लिए व्रत या उपवास रखते हैं, वैसे ही हम अपने दिमाग को शांत रखने के लिए गैजेट से दूरी बना सकते हैं। यही है डिजिटल फास्टिंग। आपको करना क्या होगा, आप कम से कम दिन में एक एक घंटा या दो दो घंटा जो ब्रेक आप आसानी से ले सकें उस बीच प्रण कीजिए कि आप मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे। आप लैपटॉप पर भी चाहें तो दूरी बना सकते हैं अगर आपका काम बाधित नहीं होता है, और अगर दिन में आप इससे दूरी नहीं बना सकते हैं तो आप इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि सोने के कम दो घंटा पहले मोबाइल और लैपटॉप बंद कर दें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं, अच्छा संगीत सुनें, लेकिन उसके लिए भी मोबाइल का इस्तेमाल ना करके रेडियो का इस्तेमाल करें या फिर पहले जो आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते थे संगीत सुनने के लिए उसका इस्तेमाल करें। तो इस तरह से धीरे धीरे आप मोबाइल से होने वाले दुष्प्रभावों से बच भी सकेंगे, परिवार को समय भी दे सकेंगे, अपने लिए भी समय निकाल सकेंगे। अगर आप टहलने जा रहे हैं तो मोबाइल लेकर मत जाइए, आप बिना मोबाइल के जाइए और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता को देखिए, पेड़ पौधों को देखिए, मौसम का आनंद लीजिए।

0: आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर। अब समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली के प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पुरस्कार खाद्य सुरक्षा, सतत विकास और मानव कल्याण के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी को इटली में प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने बधाई दी है। देश भर में आज आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को आतंकवाद और हिंसा के विरुद्ध एकजुट करना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मंत्रालय में स्कूल शिक्षा, परिवहन, सहकारिता, जनजातीय कार्य, पशुपालन और लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी अब 28 मई तक की जा सकेगी। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन किसानों के स्लॉट 23 मई तक बुक हो चुके हैं उन किसानों से खरीदी की जाएगी। प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी है। राज्य के 16 शहरों में बुधवार को पारा 44 डिग्री से अधिक रहा। खजुराहो में सबसे अधिक 47.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज पूरे प्रदेश में लू का अलर्ट जारी किया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज के मैच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। पेश है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी। गीत हमारे

0: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीतिका वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे फरिश्तों की।
1: हाँ जी नमस्कार मैम। नमस्कार,
0: किससे बातें हो रही है हमारी
1: आज? बाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी रंगीन लेटर वाला बोल रहा हूँ मैम।
0: नियाज मोहम्मद जी, बहुत स्वागत है आपका।
1: आपका कार्यक्रम सुनता हूँ मैडम, बहुत अच्छा लगता है। पहली बार मेरे को फोन लगा है मेरा आपके कार्यक्रम में
0: जी।
1: वैसे मैं लेटर लिखता रहता हूँ आप।
0: जी जी जी, बहुत स्वागत है आपका नियाज जी। नियाज मोहम्मद जी, आपसे जानना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में फरिश्ते के तौर पर आप किसे मानते हैं? हम जिंदगी में फरिश्तों की बात करना चाह रहे हैं। हाँ,
1: जो आज हमारा जो यकीन इस चीजों से होना चाहिए, तब जो मनोभाव हमारा, जो मानवता है, जो समाज है, उस परिवर्तित के रूप में जो हमारा है उसको मानने पर ही फरिश्ते माने जा सकते।
0: कुछ बता सकते हैं आप इसके बारे में?
1: यही बताता रहा हूं मैं बिल्कुल, कि आदमी जो चीज अपने अच्छे कर्मों का फल अगर हम सही आत्मविश्वास के साथ अगर करते हैं, या वो किसी भी धर्म का हो, या किसी भी समाज का हो, या किसी भी व्यक्तित्व के भाव को अच्छी तरह से अगर उसको व्यवस्थित करते हैं तो वो फरिश्ते के रूप में कहलाएगा। यदि अच्छा काम नहीं कर रहा है और जो मान लो कि हम उसे मुझे फरिश्ते कहो तो ही नहीं हो सकता
0: जी। फरिश्ते जो हैं वो नेक दिल होते हैं, नेक काम करते हैं और इंसानियत के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं,
1: वो कटु शब्दों से बिल्कुल दूर रहते हैं।
0: जी जी, चलिए आपने बहुत अच्छी परिभाषा दी है फरिश्ते की, और उम्मीद करते हैं कि ये फरिश्ते की बातें जो आज इस कार्यक्रम में हम कर रहे हैं वो आगे चढ़कर कुछ और भी रूप ले और बहुत अच्छी अच्छी हमें जानकारियाँ भी मिलें और लोगों के सुझाव भी मिलें।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी। बहुत अच्छा मैम साहब, बहुत अच्छे आपने पूछा, मुझे भी अच्छा लगा
0: जी।
1: और इस तरह से आत्मविश्वास बढ़ता है मैडम इससे
0: जी।
1: आदमी की नकारात्मक जो टिप्पणियाँ जो होती है ना,
0: हाँ,
1: उसके भाव वो घर कर जाती है
0: जी।
1: ये कार्यक्रम जो होता है वो प्रशंसक जो आप और जो होते हैं,
0: हाँ,
1: आपके शब्दों में जो भाव आते हैं
0: जी,
1: वो हमें बिल्कुल प्रभावित करते हैं और हम इसी से आपसे सुन के,
0: हाँ,
1: हम भी इसे अच्छे लिखते हैं और सुनते हैं और कार्यक्रम में फोन लगता है तो हमें भी शब्दों में भाव पैदा होता है।
0: चलिए, अच्छा लगा
1: आपसे मैडम
0: जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नियाज मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया
1: जी। जी
0: नमस्ते।
1: दोस्ताना गाना का गाना है मैम
0: सर, यहाँ
1: रहे ये दोस्त हमारा
0: जी, यहाँ पर क्या गाने हम अपनी पसंद का सुनाते हैं, कोशिश करते हैं अगर हम डाल सके।
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी पसंद का ही गाना सुना दीजिए मैम।
0: बिल्कुल,
1: बहुत अच्छा लगा
0: जी
1: आपको कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। परिवार को मेरी तरफ से ईद की मुबारकबाद अग्रिम
0: जी,
1: और
0: जी।
1: आप
0: आपको भी
1: हम सब मिलकर रहे
0: जी। नमस्कार तो,

0: हेलो
1: जी मैडम।
0: जी, नमस्कार। बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम है आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
1: जी मैडम जी।
0: आपको कभी समझ में आया कि ये दोस्त नहीं होते तो आज मेरा ये काम रुक जाता या ये काम नहीं हो पाता?
1: जी
0: ऐसा कभी हुआ तो
1: ऐसा हुआ है सर मैडम जी।
0: बताइए वो वाकया क्या था।
1: जी मैडम जी, ऐसा मेरे साथ हुआ है। जी कल के लिए थे, गया जी गए थे हम
0: हाँ
1: तो अपने पिताजी की वो कराने के लिए पिंडदान। तो
0: हाँ
1: हमें बहुत समस्या आ गई थी, हमारा पर्स सब चला गया था, बैग भी चला गया था। तो
0: हाँ
1: हमारे साथ में एक मित्र गया था, हमारे साथ
0: हाँ
1: में, तो
0: हाँ
1: उसने हमारे खाने पीने से लेकर और पूरी व्यवस्था, जब तक हम घर नहीं लौटे आए
0: हाँ
1: और हमारे साथ में खड़ो ही रहो, भाई तुम्हें चाय तो नहीं पीने क्या है।
0: हाँ
1: लेकिन ऐसा दोस्त होना चाहिए मैडम जी।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात। ऐसे ही दोस्त हमेशा मिले, सभी को मिले। एक बार आपका परिचय फिर दे दें।
1: जी मैडम, हम अपने जिला दमोह से बोल रहे हैं,
0: हाँ
1: गिरधारी सेन नाम है हमारा। जी मैडम
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा गिरधारी सेन जी आपसे बात करके। बहुत
1: जी
0: शुक्रिया।

0: आकाशवाणी भोपाल।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश का ये प्रसारण है
0: जी
1: जी, आपका परिचय दीजिए।
0: मैं आपका बहुत पुराना श्रोता हूँ, सिंगापुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ।
1: जी जी जी कैसे हैं राजेश नेमा जी?
0: बढ़िया है, ठीक ठाक है
1: जी जी चलिए।
0: और आपके लगभग प्रसारण बहुत पुराना श्रोता हूँ, इसलिए बहुत पुराने कार्यक्रमों से भी जुड़ाव रहा है
1: जी जी
0: और
1: जी
0: वर्तमान में जो शानदार कार्यक्रम आ रहे हैं उनसे भी जुड़ाव है और
1: जी
0: हमेशा रहेगा।
1: जी जी जी आज बात आपके गीत हमारे में, हम फरिश्तों के बारे में बातें कर रहे हैं। जिंदगी में कभी कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ, ऐसी कोई घटना जिसमें कभी आपको कोई व्यक्ति जो है वो फरिश्ते के रूप में मिला हो?
0: अच्छा, जब मैं पढ़ाई करता था उस समय की बात है, किसी कारणवश एक पेपर मेरा मिस हो गया था।
1: जी
0: तो एक चूंकि सामान्य क्लास थी तो हमारी क्लास के कक्षा शिक्षक थे,
1: जी
0: तो उन्होंने जब जांच की तो हमारा पेपर नहीं मिला, तो वो फिर घर पर आए और उन्होंने

0: कहा कोई बात नहीं, परेशान मत होना, आप पेपर बाद में भी दे सकते हो। तो मेरी बहुत सी बड़ी परेशानी एक बच गई उस समय। तो मैंने कहा ये इस तरह के लोग जो हैं वो निश्चित रूप से दूसरों के काम आते हैं और परेशानियां दूर करते हैं।
1: यानी आपके जीवन में शिक्षक जो हैं वो एक फरिश्ते के रूप में आए थे।
0: जी, मैं चूंकि स्वयं शिक्षक हूँ
1: जी
0: और एक छोटा सा कार्टूनिस्ट भी हूँ
1: जी,
0: तो शिक्षकों का एक अलग मेरे मन में आदर सम्मान हमेशा है और रहेगा।
1: जी, शिक्षक हमेशा आदरणीय होते हैं क्योंकि वो जीवन
0: जी,
1: के लिए वो आधारशिला बनाते हैं। माता पिता तो पहली पाठशाला होते हैं, प्रथम पाठशाला तो माँ ही होती है, लेकिन
0: बिल्कुल जीवन उन्हीं से शुरू होता है।
1: जी बिल्कुल,
0: जो मायने में जीवन है
1: जी
0: वही जिंदगी की सही राह दिखाते हैं और हम आगे चल के प्रगति कर सकते हैं उन्हीं के मार्गदर्शन में।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, जीवन का साक्षात्कार जो है वो हमारे शिक्षक ही हमें करवाते हैं।
0: जी,
1: बहुत अच्छा लगा राजेश नेमा जी आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं आप हमारे कार्यक्रम के साथ यूं ही जुड़ा करेंगे और भविष्य में भी आप हमसे बातें करेंगे।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो नमस्ते मैम,
1: नमस्ते, किससे बातें कर रहे हैं हम, परिचय दीजिए।
0: इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन।
1: जीनत परवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। कैसी
0: जी अच्छी
1: हैं?
0: हूँ मैम।
1: अच्छा जीनत परवीन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिंदगी में आपके
0: जी
1: लिए कोई फरिश्ता बन के आया है कभी? कोई ऐसा वाकया हुआ है जिसमें आपको वो इंसान जो है वो फरिश्ते के रूप में नजर आया हो?
0: हाँ, वैसे तो हुआ है ऐसा,
1: जी बताएं।
0: जैसे कुछ भी जरूरत पड़ती तो कोई इंसान है जो फरिश्ता बन के आ जाता है।
1: तो आपके जीवन में वो
0: जब
1: फरिश्ता कौन है?
0: फरिश्ता मेरे हस्बैंड ही है।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा। जीवन साथी जो है वो सही मायने में आपके सारथी होते हैं। और
0: जी
1: तो बताइए, आप किस तरीके से मानती हैं कि जीवन साथी जो है आपके, वो आपके लिए फरिश्ता है?
0: बस कुछ भी काम होता है तो कर देते हैं।
1: और
0: जैसे कहीं जाना होता है तो मना नहीं है, कहीं पे भी घूमो फिरो, घर के कामों में हेल्प कराते हैं।
1: हाँ, इसमें बतौर फरिश्ता आपको क्या समझ में आया? जीनत जी, जैसे कि हम कहते हैं कि जिंदगी में किसी ने यदि पढ़ाई के लिए आपको प्रेरित किया है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको किसी ने प्रेरित किया है, चाहे वो आपके पड़ोसी हों, आपके भाई हों, दोस्त हों, जीवन में किसी भी प्रकार से कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आया जिसने आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाया हो, इस प्रकार की कोई बात हो तो वो बताएं आप।
0: हाँ, जैसे कहीं अर्जेंट कहीं जाना रहता है तो एकदम वो ड्यूटी भी छोड़ के मतलब आ जाते हैं, छोड़ने मेरे को कहीं
1: हाँ,
0: जाना पड़ता है अर्जेंट तो।
1: अच्छा, तो चलिए हम मानते हैं कि आपके जीवन साथी जो हैं वही आपके लिए फरिश्ते हैं।
0: जी
1: जी चलिए, आगे बढ़ने के लिए।
0: सपोर्ट करते हैं ना, सबके लिए करते हैं।
1: चलिए जीनत परवीन जी, आपसे बात करके अच्छा लगा।
0: जी शुक्रिया मैम,
1: जी नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: हेलो
1: जी नमस्कार
0: नमस्कार दीदी,
1: जी, आपका परिचय दे दीजिए।
0: मैं ग्राम गुरुजी कला से राजकुमार लखेरा बोल रहा हूँ।
1: जी लखेरा जी, आपका बहुत स्वागत है।
0: जी, और कैसी हैं मैडम जी?
1: जी हम तो अच्छे हैं। लखेरा जी, आपसे जानना चाहते हैं
0: जी
1: कि जीवन में आपके लिए फरिश्ता क्या है, या जीवन में आपके लिए कोई ऐसा व्यक्ति कभी आया हो जो आपके लिए फरिश्ते के तौर पर साबित हुआ हो,
0: जी वैसे मैडम जी, वैसे तो
1: कभी किसी ने बहुत आगे बढ़ के मदद की हो, कभी परेशानी में घिरे हुए हो आप और आपकी किसी ने बहुत अच्छे से मदद करी हो, भगवान के रूप में खड़ा हो गया हो आपके लिए।
0: ऐसा वाक्य अब तो नहीं आया मैडम जी। बाकी ये रहता कि माता पिता यदि अपने बच्चों को अच्छे तरीके से संस्कार दे के और उनको संपन्न बना रहे हैं।
1: माता पिता आपके लिए किस प्रकार से फरिश्ते साबित हुए हैं ये बताइए।
0: यही कि हर समय पे मतलब मदद करते रहते हैं, कभी कोई समस्या नहीं आ पाती, यदि कोई आती है तो वो मतलब है उसका निराकरण करते हैं।
1: हाँ
0: कभी कोई नहीं आ पाती समस्या, वैसे उनके उसमें रह
1: हाँ
0: मदद करते रहते हैं,
1: माता पिता,
0: और माता पिता। और कभी ऐसे मौका आया तो दोस्त भाई, अगर यदि अच्छे हैं तो दोस्त भाई भी मदद करते हैं।
1: हाँ तो दोस्त भाई भी तो वो संस्कार लेते हैं जब माँ बाप से, तभी तो आगे बढ़ पाते हैं वो आपके लिए,
0: जी
1: मदद के लिए।
0: जी मैडम,
1: चलिए, तो अच्छा लगा आपसे बात करके कि माता पिता के संस्कार के साथ में भी इंसान जो है वो फरिश्ते सा काम करता है।
0: जी थैंक
1: जी लखीरा साहब, आपने फ़ोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: यू मैडम।

0: चलिए आपसे भागचंद साहू जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जिंदगी में आपके लिए सैनिक क्या मायने रखते हैं और सैनिक को आप फरिश्ते के तौर पर कैसे देखते हैं?
1: सैनिक तो दीदी ऐसा है, देखो देश की सुरक्षा के लिए सैनिक बिना कुछ नहीं हो सकता, देश की सुरक्षा नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल यही कहना है।
0: हाँ, और सैनिकों के लिए और भी क्या कुछ कहना चाहेंगे?
1: और दीदी हम तो देखो पानीपुरी सेंटर का ठेला लगाते हैं हम,
0: हाँ
1: हाँ उसी में लगे रहते हैं और कार्यक्रम आपके सुनते रहते हैं।
0: जी जी जी चलिए, सैनिक आज सीमा पर हैं इसलिए हम सुरक्षित हैं और निश्चिंत
1: बिल्कुल
0: हैं
1: बिल्कुल,
0: कि
1: उनमें अगर थोड़ी अपन सुरक्षित हो सका।
0: जी निश्चिंत है कि हमारा देश सुरक्षित है।
1: बिल्कुल बिल्कुल दीदी बिल्कुल
0: चलिए भाग्यचंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत धन्यवाद।
1: बिल्कुल ठीक है दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: जी मैम जी
1: जी, आपका परिचय दीजिए।
0: आपका नहीं, मैं सोता कमलेश कार बात कर रहा हूँ, जिला नरसिंहपुर के ग्राम करकबेल से। सकुशल है मैम जी? बिल्कुल सुन रहे हैं आपको। जी
1: जी कमलेश कहार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिंदगी में आपके लिए फरिश्ता कौन है, कोई वाकया बताइए। आज
0: सबसे पहले फरिश्ते की बात करें तो सबका फरिश्ता तो मैं कह सकता हूँ, हम जैसे मानते हैं भगवान।
1: जी जी जी,
0: उससे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। जो सांस ले रहे हैं, जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी,
1: हाँ हाँ,
0: इन सभी के अस्तित्व के कारण ही हमारा अस्तित्व है।
1: जी जी जी,
0: रही दूसरी बात फरिश्ते की, जो जीता जागता रहता है, जो सामने दिखता है बिल्कुल,
1: हाँ,
0: मेरे घर में मेरा परिवार है।
1: जी जी जी,
0: और रही दूसरी बात तो मेरे ग्राहक बंधु, चाय नाश्ते की दुकान है मैम जी, तो ग्राहक बंधु जो होते हैं वो मेरे लिए फरिश्ते का काम करते, मेरे लिए कह सकते हैं जीवन यापन के लिए जो माध्यम होता है उसके तहत वो उपस्थित होते हैं, और मेरा सहयोग के माध्यम से मेरी दुकान चलती है।
1: हाँ।
0: तो इस प्रकार से दो प्रकार के मेरे फरिश्ते हैं। और तो तीसरी मैम जी एक बात और कहेंगे कि
1: जी,
0: दोस्त हैं मेरे कुछ एक ऐसे दोस्त हैं जो सामने तो देखते हैं लेकिन मदद मैम जी वो अप्रत्यक्ष रूप से मेरी हमेशा करते ही रहते हैं।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात कही आज आपसे, बातें करके बहुत अच्छा लगा कमलेश कहार जी। आपने पंचतत्व की बात कही है, परिवार की बात कही है, और ग्राहक की बात कही है। वाकई में आपके जीवन के लिए ये बहुत मायने रखते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: जी जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: आपको और आपकी टीम को।
1: जी जी।

0: हेलो
1: जी नमस्कार।
0: जी मैम, नमस्कार। अमर सिंह राठौर बोलो मैम, कटनी मध्य प्रदेश से, ग्राम डिठवारा। जी मैम, आज कौन सा विषय रखा हुआ मैम?
1: जी आज हम बात कर रहे हैं फरिश्ते की। जो कोई भी आपके जिंदगी में आपके लिए कभी फरिश्ते के रूप में उपस्थित हुआ हो या आप मानते हैं कि वो फरिश्ते हैं तो वो
0: जी
1: बताएं
0: मैम,
1: कुछ।
0: सबसे पहले तो मेरे माता पिता फरिश्ते हैं मैम, जिन्होंने मेरे को धरती पे लाया, उन्होंने इतना सब कुछ शिक्षा दी, बचपन में मेरे को शिक्षा दी।
1: जी
0: और दूसरे फरिश्ते हैं मैम मेरे गुरु जी,
1: जी
0: जिन्होंने मेरे को पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया, उन्होंने इतना सहयोग किया,
1: जी जी
0: आज आदमी इस जगह पे है।
1: जी
0: जी मैम। और तीसरी मैम, जीवन संगिनी है मैम, पत्नी
1: जी
0: जो हमेशा साथ साथ निभाती है,
1: जी जी
0: उससे बड़े फरिश्ता और कौन हो सकता है।
1: चलिए कोई और वाक्या बताना भी चाहते हैं कुछ तो बताइए कि किस प्रकार से कभी माता पिता और गुरु और जीवन संगनी की आपने बात करी है।
0: जी, मैम मैं जब भी क्या कुछ थोड़ा परेशान होता हूँ, कुछ भी रहता हूँ, तो माता पिता से अपनी बात मैं शेयर करता हूँ और वो मुझे बहुत ढंग से गाइडलाइन देते हैं और
1: हाँ
0: मुझे सफलता प्राप्त होती है। तो मेरे लिए माता पिता सर्वोपरि है मैम।
1: जी
0: जी, और उन्हीं की मैं वंदना करता हूँ, रोज सुबह उठ के दोनों के चरण स्पर्श करता हूँ।
1: जी

0: यही मेरी दिनचर्या है
1: चलिए, बहुत
0: जी।
1: अच्छा
0: मैं
1: लगा अमर सिंह जी। माता
0: जी
1: पिता आपके लिए और जो फरिश्ते हैं, ये फरिश्ते आपके जीवन में हमेशा बने रहें, उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे, यही कामना करते हैं
0: जी मैम,
1: जी।
0: थैंक यू।
1: धन्यवाद।

ये फरिश्ते हमारी ज़िंदगी में कई बार कई रूप में सामने आते हैं। ज़रूरत है ऐसे एहसास को समझने की, ऐसे जज्बातों को समझने की और साथ ही ऐसी ऊर्जा को समझने की जिससे बिगड़ता काम सवर जाए।

0: जो अनहोनी को टाल जाए और जो आपको कृतज्ञ कर जाए। जीवन में फरिश्ते ये मुख प्रकृति भी है, ये वसुधा है जिसे हमने संसाधनों से सराबोर किया है। हम इस पृथ्वी पर जी रहे हैं। आज कार्यक्रम में हमने बात की अपने जीवन के फरिश्तों की। आप सभी श्रोताओं के विचार जानकर हमें खुशी हुई और उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। और अब कार्यक्रम से अनुमति दीजिए नीतिका वर्मा को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत। हमारे ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा था।
2: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली में प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने बधाई दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। एक अन्य बैठक में शिक्षा मंत्री ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने पर बल दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा कर रहे हैं। डॉ. यादव परिवहन, सहकारिता, जनजातीय कार्य, पशुपालन और लोक निर्माण विभाग के कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि गेहूं उपार्जन के लिए जिन किसानों के स्लॉट 23 मई तक बुक होंगे, उन किसानों से गेहूं खरीदी 28 मई तक की जाएगी। प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी है। राज्य के 16 शहरों में बुधवार को पारा 44 डिग्री से अधिक रहा। खजुराहो में सबसे अधिक 47.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज पूरे प्रदेश में लू का अलर्ट जारी किया है और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम का कल भोपाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। वहीं इससे पहले भारतीय अंडर 18 महिला हॉकी टीम ने सीरीज के चौथे और अंतिम मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम को 4-1 से हरा कर शानदार प्रदर्शन किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला नगमा हमने आपके लिए चुना है। किशोर कुमार की आवाज़ है, अलका याग्निक ने साथ दिया है, माया गोविंद ने गीत लिखा है, संगीत है कल्याण जी आनंद जी और फिल्म का नाम है पिघलता आसमान। पसंद आप सब श्रोताओं की। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये इस गीत को सुनना चाह रहे हैं। इसी गीत को पसंद किया है अमित रैकवार, निहारिका, शिवपाल, अनामिका, अवंतिका, शिवपालिका, पारस और संदीप ने। ये पत्र हमें मिला है बैतूल से। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर फिल्म पिघलता आसमान से ये नगमा।

0: और अब आपको सुनवा रहे हैं मर्यादा फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है किशोर कुमार ने। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है, पसंद आप सब श्रोताओं की। मन्नू, मंजू, पिंकी, ऋषिका, रवि, स्वीटी, मनोज, कामिनी, इन्होंने पत्र लिखा है भोपाल से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल और प्रियांश वर्मा के साथ ऋषि वर्मा। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर मर्यादा फिल्म का ये नगमा।
1: गुस्सा

और अब आपको सुनवा रहे हैं खंडवा के श्रोताओं की पसंद पर गीत। पसंद है संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और समस्त पंचोलिया परिवार की। फिल्म का नाम है काजल, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, गीत लिखा है साहिर ने और संगीत है रवि का। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

एक थी लड़की, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाज़ लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, जीएम दुरानी और साथियों की है। विनोद का लिखा ये गीत है, संगीत अज़ीज़ कश्मीरी का, पसंद आप सब श्रोताओं की। झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु और तासु इस गीत को सुनना चाहते हैं। भोपाल से मयंक और राशि, पंकज और साधना इस गीत को पसंद कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं एक थी लड़की फिल्म का ये गीत।

अब आपको सुनवा रहे हैं तीसरी मंजिल फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। मजरूह के शब्द हैं, संगीत आरडी बर्मन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति और बाबू रियांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और जावेंद्र कुमार वर्मा इस गीत को सुनना चाहते हैं। हांसी शहर से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष, बब्बू और डब्बू ने ये गीत सुनना चाहा है। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर तीसरी मंजिल फिल्म का ये गीत।

0: इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90

0: गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं धारावाहिक पंचतंत्र। आज सुनिए इसकी 8वीं कड़ी।

सभी श्रोतागण, दादा दादी एवं नाना नानियों को विशेष प्रणाम। आप सबको पंचतंत्र की छोटी छोटी कहानियां जरूर भाती होंगी। अभी तो ढेर सारी कहानियां और भी हैं। पिछली कथा में हमने सुना, लघु पतनक नामक कौवे ने देखा कि किस प्रकार चित्रग्रीव अपने साथियों को जाल में फंसा देखकर घबराया नहीं, बल्कि उन्हें हौसला दिया। सबने मिलकर जाल को उड़ा लिया। बहेलिया हार कर लौट गया। लघु पतनक भी उनके साथ उड़ चला। फिर उसने देखा कि हिरण्यक नामक चूहे ने उन सबको जाल से मुक्त कर दिया। लघु पतनक ने हिरण्यक से मित्रता कर ली। पहले तो हिरण्यक तैयार ही नहीं हो रहा था, फिर लघु पतनक के तर्क के सामने उसने हार मान ली। वे दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। एक दिन लघु पतनक ने उस जगह को छोड़ने का निश्चय किया। हिरण्यक को लेकर वो दक्षिण की ओर अपने मित्र मंथरक कछुए के पास पहुंच गया। मंथरक ने उनका बहुत स्वागत किया, परंतु मंथरक ने हिरण्यक से अपनी पुरानी जगह को छोड़ने का कारण पूछा। हिरण्यक ने बताया, अपने भाग्य में जो लिखा है वो तो होकर ही रहता है। इस संदर्भ में उसने छोटी छोटी कहानियां भी सुनाई। एक वणिक पुत्र की कथा भी सुनाई, जो हमेशा अपने भाग्य पर ही विश्वास करता था। उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। संयोगवश उसका मिलन राजकन्या से हो गया, लेकिन सच्चाई ज्ञात होने पर राजकन्या ने उसे निकाल दिया तो प्राप्त व्यर्थ नगर की ओर चल पड़ा। वहीं से एक बारात निकल रही थी, वो उसमें शामिल हो गया। अब आगे।

0: क्या शानदार बारात है। लगता है जैसे किसी बड़े आदमी के घर जा रही है। अच्छा, ये तो नगर सेठ की बेटी की शादी है। अरे ये कोलाहल कैसा, लोग इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? अरे ये तो एक मदमत हाथी महावत से छूट गया है, सबको रौंदता हुआ जा रहा है। हे प्रभु, हे प्रभु, इनकी रक्षा करो। ये दुल्हन बेचारी अकेली खड़ी है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। सुनिए, आप डरे नहीं,
1: अब मैं आपका रक्षक हूं।

0: मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं? आप नहीं जानते मैं कितनी डरी हुई थी, अब मुझे थोड़ी राहत मिली।
1: मेरा हाथ थाम लो कन्या, तुम्हारा डर समाप्त हो जाएगा।
0: आपने आज मुझे मृत्यु से बचाया है, इसलिए अब आपको छोड़कर मेरी जीवित दशा में कोई भी दूसरा व्यक्ति मेरा पाणी ग्रहण नहीं कर सकता।
1: भाग्य में लिखी वस्तु मिल ही जाती है। हाँ, मनुष्य के भाग्य में लिखी वस्तु उसे मिल ही जाती है।
2: अगली सुबह राजा ने पूरा वृतांत सुना। अपनी कन्या को संपूर्ण अलंकारों एवं दास दासियों से युक्त करके 1000 गांवों के साथ अत्यंत आनंद के साथ प्राप्त वैद्य को सौंप दिया। राजा ने उसे युवराज का सम्मान दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ, मनुष्य को भाग्य का लिखा मिल ही जाता है, और इसी कारण मैं लघुपतनक के साथ यहाँ आ गया हूँ।
3: आप सबका इस तालाब के किनारे स्वागत है। आपका जो धन नष्ट हुआ उसके लिए चिंतित ना हो। भाग्य में यदि उपभोग का सुख नहीं है तो वह संभव नहीं होता। जैसे सौमिलक धन खो देता था।
2: सौमिलक धन खो देता था, वो कैसे मंत्रक?
3: तो सुनो, एक नगर में सौमिलक नाम का एक जुलाहा रहता था। वो अनेक प्रकार के रंगों और चित्रकारियों से युक्त रेशमी तथा राजाओं के पहनने योग्य बहुमूल्य वस्त्रों का निर्माण करता था, परंतु
4: प्रिये, मैं अनेक प्रकार के चित्रकारियों से युक्त रेशमी वस्त्रों के निर्माण में निपुण होने पर भी उतना धन नहीं कमा पाता, क्यों?
5: सही कहते हैं आप। दूसरे जुलाहे जो केवल मोटे वस्त्रों के निर्माण में ही कुशल थे, वे हमसे अधिक समृद्ध हैं।
4: मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि ये जगह मुझे रास नहीं आ रही। मुझे दूसरे शहर में जाकर व्यापार करना चाहिए।
5: हे स्वामी, ये सारी सुनी सुनाई बातें हैं। विदेश जाने पर धन लाभ भी हो, ये सारी मिथ्या बातें हैं। मनुष्य चाहे आकाश में उड़ जाए, चाहे पाताल में चला जाए, अथवा पृथ्वी के ही छोर तक चला जाए, किंतु जो वस्तु पहले नहीं मिली वो कभी मिलेगी भी नहीं। इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम यहीं पर कोई उद्योग।
4: प्रिय, तुमने ठीक नहीं कहा। कार्य की सिद्धि उद्योग से होती है, केवल मनोरथ मात्र से कुछ नहीं होता। इसलिए कर्म करते रहना चाहिए। मैं विदेश अवश्य जाऊंगा।
6: ऐसा निश्चय करके सौमिलक ने वर्धमान नामक नगर में जाकर 3 वर्ष तक कड़ी मेहनत की और 300 स्वर्ण मुद्राएं कमा कर लौटा। रास्ते में एक जंगल आया, वहां विश्राम के लिए रुका, परंतु उसका धन चोरी हो गया। वो पुनः शहर गया, धन कमाया, पर अत्यधिक सावधानी के बावजूद उसका धन फिर चोरी हो गया। चौथी बार उसने देखा, उसकी ओर देखकर 2 विचित्र आकृति के पुरुष कुछ वार्तालाप कर रहे थे। उसने ध्यान से सुना।

0: हे कर्ता, क्या तुम भली भांति नहीं जानते हो कि सोमिलक के भाग्य में भोजन और वस्त्र के अतिरिक्त धन नहीं है? फिर भी आपने इसको 30 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दे दी?
1: हे कर्मन, उद्यमी पुरुषों को उनका अंश

0: देह होता ही है, पर इसके प्रारब्ध का अंतिम निर्णय तुम्हें ही करना है। तुम मुझे व्यर्थ ही उपालंभ दे रहे हो।
1: नहीं, मेरे श्रम के फल को कोई नहीं छीन सकता। मैं कटरी को संभाल कर रख लेता हूं। अरे ये क्या, अरे ये गठरी तो फिर खाली है।

0: मेरे निर्धन रहकर जीवित रहने से मुझे क्या लाभ है? हाय हाय हाय हाय, मैं इस वट वृक्ष की शाखा में खुद को मानकर आत्महत्या कर लूंगा। मैं जीवित नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा।
1: अरे नहीं, सोमिलक, इस प्रकार का साहस न करो। तुम्हारे धन को चुराने वाला मैं हूं। भोजन और वस्त्र से अधिक धन तुम्हारे भाग्य में नहीं है। तुम घर लौट जाओ, पर मैं तुमसे प्रसन्न हूं। हां, चाहो तो कोई और वर मांग लो।
0: सच? यदि ऐसा है तो मुझे बहुत सा धन दे दो।
1: पर तुम उसे भोग नहीं पाओगे।
0: यद्यपि धन मेरे भाग्य में नहीं है, फिर भी मेरे पास धन होना चाहिए। धनी व्यक्ति की लोग सेवा करते हैं।
1: कैसे?
0: किसी नगर में तीक्ष्ण विषाण नामक एक सांड रहता था। मद के गर्व से उसने अपने समूह का साथ छोड़ दिया था और एकाकी नदियों के किनारे उगी हुई मरकत मणि के समान हरी हरी कोमल घास को चरते हुए नदियों के तट को अपने सींग से गिराया करता था। इस प्रकार स्वच्छंद विचरण करते हुए वो धीरे धीरे जंगली हो गया और वन में निवास करने लगा। उसी वन में प्रलोभक नाम का एक श्रृगाल भी रहता था। एक दिन वो श्रृगाल अपनी पत्नी के साथ नदी तट पर सुखपूर्वक बैठा हुआ था। इसी बीच तीक्ष्ण विषाण नाम का वो सांड जल पीने के लिए नदी तट पर आ गया। उसके लटकते हुए वृहत मांसल अंशों को देखकर श्रृगाली ने कहा,
2: स्वामी देखो, इस वृषभ पर मांस के टुकड़े जिस प्रकार से लटके हुए हैं, उससे यही ज्ञात होता है कि कुछ ही पलों में ये गिर जाएंगे। आपको इस वृषभ का अनुगमन करना चाहिए।
3: प्रिय, कौन जानता है ये मांसपिंड गिरेंगे या नहीं? तुम मुझसे व्यर्थ ही परिश्रम करवा रही हो। यहां तुम्हारे साथ रहकर मैं जल पीने के लिए आने वाले चूहों को पकड़कर खाया करूंगा। मेरे विचार से सांड के पीछे भागना उचित नहीं।
2: तुम उद्यमी नहीं हो, थोड़ा बहुत जो पा जाते हो उसी से संतोष कर लेते हो। कायर और आलसी पुरुष ऐसा करते हैं। और दूसरी बात, मैं चूहों का मांस खाते खाते ऊब चुकी हूँ। अरे देखो देखो, मांस के ये टुकड़े गिरने ही वाले हैं। तुम्हें मेरी बात टालना नहीं चाहिए।

0: पत्नी की बात को श्रीगाल टाल नहीं पाया। वृषभ के पीछे घूमते हुए बहुत समय व्यतीत कर दिया, किंतु मांसपिंड नहीं गिरे। 15 वर्षों तक प्रतीक्षा करके वो श्रीगाल लौट आया। उसे लगा वो मांसपिंड कभी नहीं गिरेंगे।
1: देखो सोमिलक, यदि तुम्हें धन प्राप्ति की इतनी ही इच्छा है तो तुम मेरी बात मानो। तुम वर्धमानपुर जाओ, वहां 2 वणिक पुत्र निवास करते हैं। हाँ, एक का नाम गुप्त धन है और दूसरे का नाम उपभुक्त धन। दोनों के स्वभाव को देखो, फिर एक की प्रकृति का वर मुझसे मांग लेना।
2: ये कहकर वो पुरुष अंतर्धान हो गया। सोमिलक उस नगर में जाकर गुप्त धन के घर पहुंचा। उसे देखकर गुप्त धन स्त्री तथा बच्चों को फटकारने लगा। उनकी उपेक्षा की चिंता किए बिना सोमिलक उनके घर में प्रवेश कर बैठ गया। भोजन का समय हो जाने पर अनिच्छा से गुप्त धन ने थोड़ा सा भोजन सोमिलक को भी दे दिया। सोमिलक वहीं सो गया। रात में उसने देखा वही दोनों पुरुष वहां बातें कर रहे थे।
1: हे कर्ता, क्या आपने इस गुप्त धन के भाग्य में कोई अतिरिक्त व्यय नियत किया था जो इसने सोमिलक को भोजन के लिए दिया? ये तो अनुचित है।
3: हे कर्मन, इसमें मेरा कोई योग नहीं। पुरुष को उसके लाभ तथा हानि को प्रदान कर देना मेरा कर्तव्य है। मेरे दिए हुए फल का परिणाम आपके अधीन है।

0: अगले दिन उठकर सौमिलक ने देखा गुप्तधन आंत्रशोथ से पीड़ित है। इस कारण उस दिन गुप्तधन ने भोजन नहीं किया। फिर उस घर से निकलकर सौमिलक उपभुक्त धन के घर गया, जहां उसका विशेष स्वागत और सम्मान हुआ। उपभुक्त धन द्वारा प्रदत्त वस्त्र और भोजन से सम्मानित होकर सौमिलक एक भव्य शैया पर सो गया। रात्रि के समय उसने पुनः उन दोनों पुरुषों को देखा।
1: हे कर्ता, इसने सौमिलक के आतिथ्य में बहुत अधिक धन खर्च कर दिया। आप बतलाइए इसके ऋण का भुगतान कैसे होगा।
2: हे कर्मन, जो मैंने किया है वह मेरा कर्तव्य था, इसका परिणाम अब आपके हाथ में है।
0: प्रातः होते ही एक राज कर्मचारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया और उपभुक्त धन के हाथ में दे दिया। ये घटना देखकर सौमिलक ने मन में सोचा कि संचय रहित उपभुक्त धन ही श्रेष्ठ है।
3: धनोपार्जन की सार्थकता तो तभी होती है जब व्यक्ति उसका उपभोग करे तथा दान आदि से दूसरों को उपकृत करे। हे विधाता पुरुष, मुझे उपभुक्त धन की प्रकृति चाहिए।
0: इस कथा को सुनाकर मंथरक ने कहा,
4: मित्र हिरण्य, भोग को प्रधान मानकर तुम्हें धनहानि के विषय में दुखी नहीं होना चाहिए। कभी कभी धन के विद्यमान रहने पर भी उसे अविद्यमान ही मानना पड़ता है। धन को पाकर दान देना चाहिए अथवा उपभोग में लाना चाहिए, कभी भी संचय नहीं करना चाहिए। दान के समान कोई दूसरी निधि नहीं होती। भगवान शिव के पास धन के नाम पर केवल वृषभ नंदी हैं, फिर भी वो परमेश्वर कहलाते हैं। तुम उस खोए हुए धन की चिंता छोड़ दो मित्र।
5: हाँ मित्र हिरण्यक, मंथरक की पुरुषवाणी पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए। उसने जो कुछ भी कहा है तुम्हारे हित के लिए कहा है। प्रिय बोलने वाले तो सुलभ होते हैं, परंतु अप्रिय और उचित बोलने वाले मित्र बहुत कम मिलते हैं।
6: मित्र मंथरक, मुझे लगता है आपका कथन सत्य है। अप्रिय होते हुए भी जो हितकारी बातों को कहते हैं वे ही तो वास्तविक मित्र होते हैं।
5: मित्रों देखो, एक हिरण इधर दौड़ता हुआ आ रहा है। आप सब छुप जाएं, हो सकता है इसके पीछे कोई ब्याद आ रहा हो।
7: हाँ मित्र लघुवत्तक, ये मृग बड़ा ही कातर लग रहा है।
5: हाँ।
7: चलो चलो उसके पास चलते हैं।
5: हाँ चलो।
7: मृगराज, आप भयभीत प्रतीत होते हैं।
8: जी जी, मेरा नाम चित्रांग है। आप लोगों ने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है। सचमुच मैं भय संत्रस्त हूँ और बड़ी कठिनाइयों से बचकर आया हूँ। आप लोग मुझे अपनी शरण में लेकर कोई ऐसा स्थान बताएंगे जहाँ वो व्याध ना पहुँच सके।
5: मित्र, वो बहेलिया पर्याप्त मांस पिंडों को लेकर अपने घर चला गया है।
8: अच्छा,
5: अब कोई भय नहीं है, आप निश्चिंत हो सकते हैं।
0: उस दिन से चारों कौवा, कछुआ, चूहा और मृग तालाब के किनारे मनोविनोद करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन गोष्ठी में चित्रांग नहीं आया, सभी चिंतित हो गए।
6: मित्रों क्या बात है, आज मित्र चित्रांग नहीं आया? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया?
5: शेर चीते के हाथ तो नहीं लग गया, या फिर किसी शिकारी के जाल में?
7: मित्र लघुपतनक, हिरण्यक और मैं उसे ढूंढने में असमर्थ हैं। हम तेज नहीं चल सकते, इसलिए तुम जाकर उसे खोजने का प्रयास करो।

लघु पतनक चित्रांग की खोज में चल दिया। कुछ दूरी पर उसने चित्रांग को बहेलिए के कूटपाश में बंधा हुआ देखा।

0: भद्र, ये तुम्हारी क्या दशा है? ये कैसे हो गया?
1: मित्र, अब तो मेरा मृत्युकाल आ गया है। अच्छा हुआ मित्र आप आ गए। प्राणांत काल में मित्र का दर्शन सुखकारक होता है। अगर मैंने कभी भी कोई अप्रिय वचन कहा हो तो मुझे क्षमा कर देना मित्र।
0: भद्र, हम लोगों के रहते आपको इस प्रकार भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी हिरण्यक को लेकर आता हूं, आप आशान्वित रहें।
1: अच्छा।
0: अरे मित्र, ये अच्छा नहीं हुआ।
2: क्यों, क्या हुआ? क्या वहां बहेलिया आ गया?
0: नहीं, परंतु ये मंत्रक भी यहाँ चला आ रहा है। अरे ये उचित नहीं है। अगर अभी वो व्याध आ गया मैं तो आकाश में उड़ जाऊंगा। तुम विवर्ण में घुसकर आत्मरक्षा कर लोगे, चित्रांग भी तेजी से भाग जाएगा, परंतु ये मंत्रक धीरे धीरे चलकर अपने आप को कैसे बचा पाएगा?
3: क्या करूं, मैं अपने को रोक नहीं पाया। मित्र के विपत्ति की सूचना के बाद मैं कैसे रहता?
4: अभी वो चारों बातें कर ही रहे थे कि अचानक वही हुआ जिसका डर था, व्याध आ गया। सभी बच गए पर मंत्रक कछुआ व्याध की पकड़ में आ गया। उसे धनुष की नोक पर टांग कर घर की ओर चल पड़ा। तीनों मित्रों की आंखों में आंसू बहने लगे। तभी तीनों ने एक उपाय किया। वो चित्रांग बहेलिए के मार्ग में जाकर तालाब के किनारे निर्जीव भूमि पर लेट गया। लघुपतनक उसके सिर पर बैठ गया। उसे देख व्याध मंत्रक को वहीं छोड़कर हिरण लेने दौड़ पड़ा। इसी बीच हिरण्यक ने मंत्रक के पाश को काट दिया। मंत्रक वहां से भाग निकला। बहेलिया जब चित्रांग हिरण के पास पहुंचा तो वो भी तेजी से भाग गया। बेचारा व्याध सिर पीटता हुआ घर की ओर चल पड़ा। उस दिन से वो चारों मित्र सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इन प्रसंगों से हमें शिक्षा मिलती है कि विचारवानों को परस्पर मित्रता रखना चाहिए और मित्र के लिए सदैव प्रेम भाव रखना चाहिए। श्रोतागण, यहीं पर हमारा द्वितीय प्रकरण मित्र संप्राप्ति समाप्त होता है। अगली कड़ी में हम आपको काकोलुकियम की कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

0: संग्रहालय से। इसके अंतर्गत अभी आपने पंचतंत्र की 8वीं कड़ी का प्रसारण सुना। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि दोपहर 2:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और दोपहर 1:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम, और 1:45 पर सुना जा सकेगा सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र का योगदान होंगे। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 12:58 हुए हैं। अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली में प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने बधाई दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। एक अन्य बैठक में शिक्षा मंत्री ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने इंदौर में आयोजित ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमता कार्यसमूह की बैठक को कल वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे ब्रिक्स देश मिलकर दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन देशों की जनसांख्यिकीय ताकत उन्हें कामकाज के भविष्य को आकार देने का अवसर देती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग, परिवहन, सहकारिता, जनजातीय कार्य, पशुपालन और लोक निर्माण विभाग के कार्यों की आज समीक्षा कर रहे हैं। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि गेहूं उपार्जन के लिए जिन किसानों के स्लॉट 23 मई तक बुक होंगे, उन किसानों से गेहूं खरीदी 28 मई तक की जाएगी। वहीं मौसम में प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी है। खजुराहो में कल सबसे अधिक 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज पूरे प्रदेश में लू का अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट की खबर में आईपीएल में आज अहमदाबाद में शाम 7:30 से गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 1:00। अब सुनिए महिला सभा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र का योगदान है।

आकाशवाणी जबलपुर द्वारा प्रसारित आज के महिला सभा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं आपकी सखी पूर्णिमा। आप सभी को हमारा नमस्कार। सखियों, आज हम आपसे हमारे समाज, संस्कृति और राष्ट्र से जुड़े विषयों पर चर्चा करेंगे। सखियों, हमारा भारत देश अनेकता में एकता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ भाषा बदलती है, पहनावा बदलता है, खान पान बदलता है, लेकिन हमारे दिलों को जोड़ने वाली संस्कृति कभी नहीं बदलती है। इसी सांस्कृतिक विविधता को सम्मान देने और संवाद के माध्यम से विकास का संदेश सभी तक पहुँचे, इसी उद्देश्य को

कर प्रतिवर्ष 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया जाता है। सखियों, यह दिन हमें सिखाता है कि अलग अलग संस्कृतियाँ, परंपराएं और विचारधारा किसी भी समाज की शक्ति होती है, कमजोरी नहीं। जब संवाद होता है तब दूरियां मिटती हैं, जब संस्कृतियां मिलती हैं तब विकास के नए मार्ग प्रशस्त होते हैं। सखियों, संवाद के द्वारा जब हम एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं तब एक शक्तिशाली समाज का निर्माण होता है, और जब हम एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं, सम्मान देते हैं और आपस में बातचीत करके एक दूसरे के विचार साझा करते हैं तब एक दूसरे के प्रति स्नेह बढ़ता है। आज के समय में जब लोग अधिक व्यस्त जीवन जीते हैं तो एक दूसरे से मिलना संभव नहीं हो पाता है, ऐसे में गलतफहमी होना संभव है। सखियो, तब संवाद ही एक ऐसा माध्यम होता है जो गलतफहमी को दूर करके दिलों को जोड़ता है। और सखियो, यही संवाद हमारी संस्कृति की पहचान है। हमारे भारत में तो ऐसा कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। सखियो, जब अलग अलग संस्कृति के लोग एक दूसरे से संवाद करते हैं तब समाज में नई संभावनाएं, नए विचारों का जन्म होता है। सखियों, संवाद और संस्कृति में हम बहनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक महिला ही परिवार को संस्कार देती है, घरों में मनाए जाने वाले तीज त्यौहार परंपराओं को जीवित रखती है। घर में बोली जाने वाली भाषा से लेकर रीति रिवाजों तक हर संस्कृति की पाठशाला एक माँ की गोद ही तो होती है। सखियों, हम बहनें ही परिवारों को जोड़ने और उन्हें आगे बढ़ाने का काम बखूबी करती हैं, समाज को संवेदनशील बनाती हैं, भावनात्मक रिश्तों को बढ़ाती हैं और समाज में विकास की दिशा तय करती हैं। सखियों, अलग अलग संस्कृति में बसी एकता की भावना को आगे बढ़ाएं, ठीक वैसे ही जैसे अलग अलग सुर मिलकर एक मधुर संगीत तैयार हो जाता है, और संगीत की इसी मधुरता का एहसास करते हैं इस गीत को सुनकर, जिसे हमने लिया है फिल्म कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। इस गीत को सुरों की माला में पिरोया है के हरिहरन ने।

0: करते हैं तो संवाद का एक माध्यम वार्ता भी है, जिसे आज के कार्यक्रम में घरेलू हिंसा अधिनियम विषय के साथ शामिल किया है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर मयूर शिखा। तो सखियों, सुनते हैं ये वार्ता, विषय है घरेलू हिंसा अधिनियम।
1: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए मौलिक अधिकार में राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार सम्मिलित है। इस लाइफ में लाइफ विद डिग्निटी है। महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा उनके गरिमा के साथ जीने के संवैधानिक अधिकार को समाप्त करने वाली है। अतः भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 15(3) में महिलाओं और बच्चों के संबंध में विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति का उपयोग करते हुए सन 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम अस्तित्व में आया। 31 अक्टूबर 2019 से पूरे भारत में लागू हो गया। कानून का प्रभाव उसकी जानकारी जन जन तक पहुंचे इस पर निर्भर करता है। इसी उद्देश्य से आज हम अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। घरेलू हिंसा क्या है? पीड़ित या व्यथित व्यक्ति एग्रीव्ड पर्सन कौन होता है? प्रत्यर्थी या रिस्पोंडेंट, जिसे पीड़ा पहुंचाने वाला कहते हैं, वह कौन है? पीड़िता की सहायता करने वाली एजेंसी सेवा प्रदाता कौन है और उसके क्या कार्य हैं? प्रोटेक्शन अधिकारी या संरक्षण अधिकारी क्या हैं? इनकी क्या भूमिका है? ये पीड़ित को राहत दिलवाने में क्या भूमिका निभाते हैं? साथ ही न्यायालय की क्या भूमिका है? पहले बिंदु पर हम ध्यान देते हैं कि घरेलू हिंसा के अंतर्गत कौन कौन से कृत्य आते हैं, जो कि अधिनियम की धारा 3 एवं नियम के अनुसार बतलाए गए हैं। शारीरिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, मौखिक या भावनात्मक हिंसा, आर्थिक हिंसा। शारीरिक हिंसा के अंतर्गत मारपीट, थप्पड़, ठोकर, दांत से काटना, लात मारना, मुक्का मारना, धक्का देना, धकेलना, किसी अन्य रीति से शारीरिक पीड़ा या क्षति पहुँचाना आता है। इसी प्रकार लैंगिक हिंसा में प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने वाला अस्वीकार्य लैंगिक प्रकृति का कार्य, फोर्स्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स, अश्लील साहित्य, तस्वीर, सामग्री देखने के लिए विवश करना, बालकों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार। मौखिक एवं भावनात्मक हिंसा में अपमान, गालियां, चरित्र हनन, पुरुष संतान न होने के लिए अपमान करना, दहेज इत्यादि न लाने पर अपमानना, कस्टडी में बालकों को जो शिक्षा व्यवस्था है उसे देने से रोकना, महिला को नौकरी में जाने से रोकना, किसी व्यक्ति से मिलने जुलने के लिए रोकना आदि, ये मौखिक और भावनात्मक हिंसा के अंतर्गत आने वाली घरेलू हिंसा है। इसी प्रकार आर्थिक हिंसा के अंतर्गत जो बच्चे अनुरक्षण में हैं महिला के, उसके मेंटेनेंस के लिए धन उपलब्ध न कराना, महिला को रोजगार चलाने से रोकना, विघ्न डालना, अनुमति न देना, जो वेतन उसे मिलता है वह उससे ले लेना, घर से बाहर निकलने को मजबूर करना, ये सभी चीज़ें आर्थिक हिंसा के अंतर्गत आती हैं। कानूनी पीड़िता की सहायता के लिए एक संरक्षण अधिकारी की व्यवस्था अधिनियम धारा 8 और 9 में देता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस अधिकारी की नियुक्ति प्रत्येक जिले में राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा करती है, जो कि हिंसा की शिकार महिला को संरक्षण और सहायता देती हैं। अब हम देखते हैं कि महिला को सहायता देने वाली संरक्षण अधिकारी के कार्य क्या हैं। हिंसा के पूरे विस्तार को हम डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट कहते हैं, जिसे शॉर्ट में DIR कहा जाता है। महिला से पूछकर या घटना स्थल पर जाकर या किसी को भेजकर घटना की स्थानीय सीमा में आने वाले थाने में इस रिपोर्ट को प्रेषित करने का कार्य संरक्षण अधिकारी करती है। व्यथित व्यक्ति को संरक्षण आदेश की अगर आवश्यकता है तो जो रूल्स बनाए गए हैं उनमें दिए गए अनुसार स्थानीय सीमा के अंतर्गत प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को आगे की कार्यवाही के लिए प्रेषण करती है। न्यायालय प्रकरण में प्रथित व्यक्ति की सहायता के लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने में विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कराती है। सेवा प्रदाताओं की सूची तैयार करके रखती है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर में ये सहायताएं उपलब्ध होती हैं, जिसमें विधिक सहायता, परामर्श सहायता, आश्रय प्रदाता, चिकित्सा सुविधा। ये जो सेवा प्रदाता हैं, ये अधिनियम की धारा 10 और नियम 11(1) के पालन में अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदन करते हैं। एवं सेवा प्रदाता कौन हो सकता है? वह कोई भी शैक्षिक संगठन हो सकता है, कंपनी, सोसाइटी हो सकती है, जो रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है। व्यथित व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार सेवा प्रदाता संरक्षण अधिकारी के निर्देश अनुसार सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि आश्रय उपलब्ध कराना एवं जिस आश्रय में महिला को रखा गया है उसकी सूचना थाने को एवं मजिस्ट्रेट को देना। अगर ऐसी हिंसा है जिसमें महिला के चिकित्सीय परीक्षण की आवश्यकता है तो चिकित्सा रिपोर्ट संरक्षण अधिकारी को सौंपना और इस रिपोर्ट को जो DIR है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट है,

उसके साथ स्थानीय पुलिस थाने को सौंपा जाता है। विधिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होने पर मजिस्ट्रेट को एक प्रति संरक्षण अधिकारी को दी जाएगी और व्यथित व्यक्ति को विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने में सहायता की जाएगी। जो सेवा प्रदाता और संरक्षण अधिकारी महिलाओं की सहयोग में कार्य करते हैं उन्हें विधिक संरक्षण प्राप्त है। उनके सद्भावपूर्वक किए गए कार्य के लिए उनके खिलाफ कोई भी वाद अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं होगी। इस घरेलू हिंसा के मामलों में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य एवं अधिकारिता के बारे में भी इस अधिनियम में बतलाया गया है। घरेलू हिंसा की घटना घटित होने पर किस क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कार्यवाही होगी इसके बारे में अधिनियम कहता है कि व्यथित व्यक्ति स्थायी या अस्थायी रूप से जहां निवास करता है, कारोबार करता है या नियोजित है, या जहां मोटिव उत्पन्न हुआ है, उस क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट क्लास 1 के यहाँ कार्यवाही होगी। और मजिस्ट्रेट के यहाँ की कार्यवाही की एक समय सीमा भी होगी। जिस दिन आवेदन प्राप्त होता है उसके 3 दिन के अंदर पहली सुनवाई की जाएगी। प्रथम सुनवाई से जो निपटारा है वह 60 दिन के अंदर होना है। आवेदन प्राप्ति की सूचना प्रत्यर्थी रिस्पोंडेंट या जो व्यक्ति पीड़ा पहुंचा रहा है उसको 2 दिन या युक्तियुक्त समय पर पहुंचाना होता है। अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है व्यथित को दिया जाने वाला अनुतोष। इन अनुतोष के रूप में परामर्श सेवा प्रदाता के माध्यम से प्रदान किए जाने हेतु आदेश देगा, कल्याण विशेषज्ञ की सहायता हेतु निर्देश देगा। कोई ऐसी महिला हो सकती है या उस महिला की रिश्तेदार हो सकती है जो घटनास्थल पर पहुंचकर वस्तु स्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्र कर मजिस्ट्रेट को अपने आदेश के लिए सहयोग प्रदान करे। जो संरक्षण अधिकारी होता है धारा 18 इस अधिनियम द्वारा व्यथित को प्रदान किए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रिलीफ है। संरक्षण आदेश धारा 18 में दिया गया है। यह इस अधिनियम द्वारा व्यथित को प्रदान किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रिलीफ है। व्यथित के आवेदन पर सूचना पर मजिस्ट्रेट को लगता है कि प्रथम दृष्टया समाधान हो जाता है, घरेलू हिंसा हुई है या होने वाली है, तो व्यथित व्यक्ति के पक्ष में संरक्षण आदेश पारित करेगा और रिस्पोंडेंट को इस तरह के कार्य करने से रोकेगा, जैसे कि घरेलू हिंसा के कोई कार्य को करने से रोकना, घरेलू हिंसा में सहायता पहुंचाने या दुष्प्रेषण करने से किसी को रोकना, व्यथित के कार्यस्थल या अन्य स्थान पर जहां वह आती जाती है वहां प्रत्यर्थी को प्रवेश करने से रोकने का आदेश, व्यथित व्यक्ति से किसी भी माध्यम से संपर्क करने से रोकना, जैसे मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक, दूरभाष आदि के द्वारा भी। इसी प्रकार धन संबंधी व्यवस्था को प्रभावित करने से रोकना, अगर संयुक्त लॉकर है या बैंक लॉकर है, स्त्री धन है, उसकी संपत्ति को प्रभावित करने से रोकना, या फिर ऐसा कोई आवश्यकता होने पर मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बिना नहीं किया जा सकेगा। इसी प्रकार आवश्यकता अनुसार किसी अन्य प्रकार के निर्देश देने का भी मजिस्ट्रेट को अधिकार है। अब इसके अलावा एक और आदेश मजिस्ट्रेट दे सकता है, निवास आदेश। व्यथित को निवास स्थान से बेकब्जा करने से रोकने का आदेश, संयुक्त निवास से प्रत्यर्थी को हट जाने का आदेश, व्यथित के निवास स्थान में प्रत्यर्थी या उसके रिश्तेदारों को प्रवेश करने से रोकने का आदेश, व्यथित के निवास स्थान को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने से रोकने का आदेश, व्यथित घटना के पूर्व जहां रह रहा था वैसी ही व्यवस्था रिस्पोंडेंट द्वारा अन्यत्र करने का आदेश, व्यथित का स्त्री धन या अन्य मूल्यवान प्रतिभूति को जिसकी कि वो हकदार है उसे वापस लौटाने का आदेश, व्यथित की संतान की सुरक्षा के लिए आवश्यकता अनुसार शर्त लगाने वाला आदेश, जैसे कि संतान अगर विद्यालय जाता है तो वहाँ पर प्रत्यर्थी को मिलने से रोकना, या फिर प्रत्यर्थी मिलेगा तो व्यथित की उपस्थिति में ही मिल सकेगा। अब मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रियान्वयन के लिए प्रक्रिया क्या होगी इसके बारे में अधिनियम कहता है कि मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र अंतर्गत आने वाले थाने के प्रभारी अधिकारी ऑफिसर इंचार्ज को व्यथित को संरक्षण देने वाले आदेश के क्रियान्वयन में सहायता का निर्देश देते हुए आदेश पारित करेगा। देखिए, कोई भी जो कानून है उसका महत्व तभी है जब अगर उसको भंग किया जाए तो उसके लिए कुछ पेनाल्टी हो, तो इसलिए संरक्षण आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा जो दिए जाते हैं अगर उसको रिस्पोंडेंट या प्रत्यर्थी भंग करता है तो उसको 1 वर्ष का साधारण या सश्रम कारावास तथा 20,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से भी दंडित किया जा सकेगा। अगर संरक्षण अधिकारी अपने कर्तव्य करने में विफल रहता है तो उसे भी इसी तरह 1 वर्ष का कारावास या 20,000 का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किए जाने वाले कुछ अन्य महत्वपूर्ण आदेश भी हैं, जैसे प्रतिकर आदेश जो धारा 22 में वर्णित है। अगर व्यथित व्यक्ति द्वारा आवेदन किया जाता है किसी मानसिक यातना या भावनात्मक कष्ट के लिए तो प्रतिकर या नुकसानी का संदाय करने के लिए प्रत्यर्थी को निर्देश देने का आदेश भी मजिस्ट्रेट क्लास 1 पारित कर सकेगा। इसी प्रकार अभिरक्षा का आदेश है। व्यथित की संतान की कस्टडी व्यथित को

0: दिए जाने हेतु आदेश। इसी प्रकार जो सबसे एक महत्वपूर्ण आदेश है वह है अंतरिम या एक पक्षीय आदेश। सामान्यतः दोनों पक्षकारों को सुनने के उपरांत आदेश पारित होता है, परंतु यदि मजिस्ट्रेट को घटना की परिस्थितियां देखकर ऐसा लगता है कि व्यक्तित्व की सुरक्षा के लिए बिना रिस्पोंडेंट को सुने आदेश देना आवश्यक है, तो इस तरह का एक पक्षीय आदेश भी मजिस्ट्रेट अधिनियम की धारा 23 के अनुसार पारित कर सकेगा। अब अगर मजिस्ट्रेट के इन आदेशों से दोनों में से कोई भी पक्ष व्यथित होता है तो इसमें अपील के अधिकार के लिए धारा 29 में प्रावधान है। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश की प्राप्ति या तामीली के 30 दिन के अंदर सेशन न्यायालय में इसकी अपील हो सकेगी। इस तरह घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 एक ओर पीड़िता को अन्याय के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सहायता प्रदान करने की व्यवस्था देता है। इस व्यवस्था के अभाव में महिलाएं घर की चार दीवारी में हिंसा सहने के लिए विवश हो जाती थी और उनके इस कष्ट का अंत उनके जीवन के साथ होता था। वहीं दूसरी ओर हिंसा करने वालों को सावधान करता है कि ऐसा करने पर उन्हें किस तरह की विधिक परेशानी एवं दंड को भुगतना होगा। भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त गरिमा के साथ जीने के अधिकार को प्रदान करने में यह कानून अत्यंत उपयोगी है।
1: सखियो, अभी आप सुन रही थी वार्ता, विषय था घरेलू हिंसा अधिनियम, जानकारी दे रही थी डॉक्टर मयूर शिखा। सखियो, हम आशा करते हैं कि इस जानकारी से आप अवश्य ही लाभ लेंगी। अब रुक करते हैं अगले विषय का। सखियो, 21 मई का दिन हमें एक और महत्वपूर्ण संदेश देता है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध का। सखियो, आतंकवाद केवल हिंसा नहीं बल्कि मानवता पर हमला है। आतंकवाद के द्वारा किसी भी देश या समाज में भय, अशांति और विभाजन को विस्तार देने का प्रयास किया जाता है, लेकिन हमारा देश हमेशा प्रेम, शांति और भाईचारे के मार्ग पर आगे बढ़ा है। सखियों, आज आवश्यकता है कि हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि किसी भी प्रकार की हिंसा, कट्टरता और नफरत को अपने समाज में स्थान नहीं देंगे। सखियों, यहाँ हम बहनों की भूमिका और दायित्व और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि भावनात्मक रूप से एक संस्कारी समाज की नींव घर से ही रखी जाती है, जिसके लिए हम बहनें बच्चों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं और छोटी बड़ी हर बात सिखाने की जिम्मेदारी हमारी होती है, और यही सीख उस बच्चे का जीवन तय करती है कि समाज में वह कैसा व्यवहार करेगा। हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें हमेशा यही सीख देते हैं कि बच्चों के सामने कभी भी आपसी मतभेद या किसी की बुराई की बातें मत करो, बच्चे के कोमल मन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सखियों, रिश्तों को आपसी समझ, शांति और सौहार्दता से मजबूत बनाएं और मानवता के मूल्यों को समझकर अच्छे समाज का निर्माण हम सब करें। सखियों, अच्छे समाज के निर्माण के लिए मन का अच्छा होना आवश्यक है, और मन को अच्छा बनाने के लिए संगीत से बढ़कर और क्या साधन हो सकता है। तो सखियों, सुनते हैं मधुर गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म मौसम से, और इस गीत को गाया है भूपिंदर और लता मंगेशकर ने। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

सखियों, अब बात करते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत के सबसे युवा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने देश को तकनीकी और संचार क्रांति की नई दिशा दी। कंप्यूटर, दूरसंचार और युवाओं को आधुनिक विचार से जोड़ने का जो सपना उन्होंने देखा था, वही सपना आज विकसित भारत की आधारशिला बना हुआ है। सखियों, राजीव गांधी जी का जीवन हमें यह संदेश देता है कि किसी भी देश के विकास का मार्ग शिक्षा, तकनीक और संवाद से होकर गुजरता है। उनके इसी संदेश को विकास की नींव मानते हुए उनकी पुण्यतिथि पर हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रंग अलग हों, रूप अलग हों, फिर भी दिलों का मेल रहे, भाषाएं चाहे जितनी बदलें, अपनेपन का मेल रहे। सखियों, हम सब मिलकर संवाद और विकास के साथ सांस्कृतिक विविधता को अपनाएं, आतंकवाद का विरोध करें और राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। सखियों, आज के महिला सभा कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। सुनते रहिए आकाशवाणी और अब अनुमति दीजिए अपनी सखी पूर्णिमा को

0: महिला सभा कार्यक्रम का प्रसारण अभी आपने सुना आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।
1: कवि श्री राग तेलंग,
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीतमय संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
4: पानी की हर बूंद है अनमोल,
5: बहने ना दें इसे बेमोल,
4: आओ मिलकर सच कर दें हम धरती माँ का सपना,
5: बूंद बूंद जल संरक्षण कर पहना दें हरियाली का गहना।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: न सनसनी न सनसनी न सनसनी न उत्तेजना न उत्तेजना न शोर दिन रात न शोर दिन रात न शोर दिन रात ना ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 1:30 हुए हैं। ये समय है लोक संगीत के कार्यक्रम का और इस कार्यक्रम में अब आप सुनने जा रहे हैं आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति। आज कलाकार हैं तिलोत्तमा विश्वकर्मा, इनसे सुनते हैं कार्यक्रम के आरंभ में ये लंगूरिया।

और अब हम आपको एक बन्नी सुनवाना चाह रहे हैं, स्वर एक बार फिर तिलोत्तमा विश्वकर्मा का।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने ये बन्नी गीत सुना, और इसमें आवाज़ थी तिलोत्तमा विश्वकर्मा की, और इसी बन्नी गीत के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र का योगदान था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। समय हुआ है सुगम संगीत के कार्यक्रम का, और इस कार्यक्रम में एक बार हम आपको पुनः सुनवा रहे हैं जबलपुर केंद्र की ही प्रस्तुति। अभी कलाकार हैं मोनल सावरकर, इनसे सुनते हैं कार्यक्रम की ये पहली रचना एक गीत के रूप में।

और कार्यक्रम के इस हिस्से में आप सुनने जा रहे हैं मीराबाई का ये भजन मोनल सावरकर के स्वर में।

0: इसी गीत के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र का योगदान था और कलाकार थी मोनल सावरकर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 1:57 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चूनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: नमस्कार भोपाल, सुबह का नमस्कार खुशगवार हर बार, नई जानकारियां, शहर और देश दुनिया की गूंजेंगी स्वर लहरियां नए पुराने गीतों के साथ। सुबह 7:20 पर सुनिए हर रोज नमस्कार भोपाल।
2: इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। आप सुनिए फिल्म संगीत।

आप सुन रहे हैं भागम भाग फल में कुणाल गांजावाला और सुनिधि चौहान को। प्रीतम ने इस गीत की धुन बनाई थी और बोल थे समीर के।

और अब आ रहा है बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में इंदिवर के बोलों से सजा हुआ वो गीत जिसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने, फिल्म का नाम गिरफ्तार।

0: और गिरफ्तार फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब ख़त्म हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 2:10 होने को हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पूरी कर आज दिल्ली लौट आए हैं। इस दौरे में उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा किया। इटली में श्री मोदी ने वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की और दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया। दिल्ली लौटकर शाम 5 बजे प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल रोम में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के सर्वोच्च सम्मान FAO एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। ये सम्मान उन्हें किसानों के कल्याण, खाद्य सुरक्षा और श्री अन्न यानी मिलेट्स को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए दिया गया। श्री मोदी ने इस सम्मान को देश के करोड़ों किसानों, पशुपालकों और कृषि वैज्ञानिकों को समर्पित किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि ये सम्मान भारत की कृषि नीतियों की वैश्विक स्वीकृति है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के मंत्री क्वोन ओह यूल के साथ मिलकर भारतीय समर स्मारक का उद्घाटन किया। यह स्मारक कोरिया युद्ध के 75 वर्ष पूरे होने पर बनाया गया है। इसमें उन भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई है जिन्होंने उस युद्ध में अपनी सेवाएं दी थीं। इस मौके पर श्री सिंह ने कहा कि
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी

0: 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि सांदीपनी विद्यालयों में पढ़ाई के बाद बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट की गतिविधियां चलाई जाएं। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल स्तर पर ही व्यावसायिक शिक्षा देने पर भी जोर दिया गया। प्रदेश में RTE के तहत दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी कल जारी की गई, जिसमें 11,485 बच्चों को उनकी पसंद के प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त दाखिला मिला है। ये वो बच्चे थे जिन्हें पहले चरण में स्कूल नहीं मिल पाया था। इस तरह इस साल RTE के तहत मुफ्त दाखिला पाने वाले बच्चों की कुल संख्या 1,17,000 से ज़्यादा हो गई है। भोपाल की चर्चित मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में कल जिला अदालत ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि शव को -80 डिग्री तापमान पर सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए। इस बीच प्रदेश सरकार ने मामले की CBI जांच के लिए केंद्र को पत्र लिखने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ट्विशा के परिजनों से मिलकर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया और जरूरत पड़ने पर शव को दिल्ली एम्स भेजने की बात भी कही। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। कल 16 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया। खजुराहो सबसे ज़्यादा तपा, जहां पर तापमान 47.4 डिग्री तक पहुंच गया और 33 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। वहीं मौसम विभाग ने आज प्रदेश के भिंड, दतिया और निवाड़ी समेत 7 ज़िलों में तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है और 23 मई तक राहत के कोई आसार नहीं हैं। अब रुक करते हैं क्रिकेट की खबर का। IPL में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होगा। गुजरात पहले ही प्लेऑफ में जगह बना चुकी है, जबकि चेन्नई अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए जूझ रही है। कल रात के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराकर प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा बनाए रखा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कल आगरमालवा के नलखेड़ा स्थित पीताम्बरा सिद्धपीठ माँ बगलामुखी के दर्शन पूजन कर हवन अनुष्ठान किया। झाबुआ के भावेश सोलंकी को सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद कर जान बचाने के लिए राहवीर योजना के तहत प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया और शिवपुरी जिले के पिछोर अनुविभाग के भौती में कल राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने 100 से अधिक दुकानें स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण को हटाया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए

0: विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
2: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है। यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
3: It is ironic that Pakistan with its long time...
4: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
3: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए

0: कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
1: India has recently launched
2: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
1: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
2: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोकभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, VCK, CPI, CPM, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK ने आज लोकभवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र

0: के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
1: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
2: चाय, ये चाय।
3: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो, या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का ये पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। साथ दिया है बाबुल सुप्रियो ने, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

और भीगी पल के फिल्म का ये गीत आपने सुना था किशोर कुमार का गाया हुआ। एम जी हशमत ने इसे बोल दिए थे और जुगल किशोर तिलकराज ने संगीत तैयार किया था। सुनने के ख्वाहिशमंद थे हमारे ये सभी दोस्त, रामचंद्र माखीजा का, फिर शंकर लाल माखीजा।

कलाकार बनिया पारा धमतरी से इस गीत को सुनना चाहता था। अमित खातरकर, निहारिका, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि और पंजाब राव निम्बालकर, साथ में है संदीप पाटिल, इन्होंने भी इसी गीत को सुनना चाहा था। दतरंगी से भागवत वर्मा, गुलाब दास, मानिकपुरी लेवई से रंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छिनपुर से विश्वनाथ साहू और मवाली सिंगारपुर से सालिक पुजारी।

श्वेता भगत केशुत और तासु। मयंक शुक्ला, राशि शुक्ला, पंकज शर्मा, साधना शर्मा ने कोलार रोड भोपाल से इसी गीत को सुनना चाहा था। प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से मालवा रेडियो श्रोता संघ से ये चिट्ठी लिख भेजी है। बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने।

ये गीत आपने सुना युवराज फिल्म से, अलका याग्निक और जावेद अली ने इसे अपनी आवाज़ें दी थी, गुलजार के बोल थे और एआर रहमान की धुन थी। सुनना चाहा था ग्राम फांसी से राजकुमार डूडी, सरजीत से हैं प्रमोद कुमार और सौरभ डूडी, हांसी शहर से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत,

रविंद्र जैन के गीत और संगीत को आप सुन रहे हैं किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में। फिल्म का नाम है राम भरोसे और इस गीत को और इसके बाद वाले गीत को सुनवाने के लिए हमारे जिन सभी दोस्तों ने चिट्ठियां लिख भेजी है उन सभी के नाम आपको बता दें। संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सरमती पंचोलिया, इन्होंने घंटाघर चौक खंडवा से हमें खत लिख भेजा था। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति और बाबू रियांश ठाकुर ने चिट्ठी लिखी थी। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार वर्मा, साथ में हैं झावेंद्र कुमार, राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा ने सुनना चाहा है हमारे कार्यक्रम के इस अगले गीत को। डोंगरगांव जिला छत्तीसगढ़, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। और ये अगली और आखिरी चिट्ठी है उत्तम कुमार भगत, श्वेता, कीसु तासु, विकास शर्मा, ज्योति पुरुषवानी, मीना, नीतू सिंह और प्रतीका चतुर्वेदी की, इन्होंने हमें झारखंड से लिख भेजा था। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर का गाया हुआ ये गीत।

इस गीत में आप सुन रहे हैं राजेंद्र कृष्ण के बोलों को, रवि के संगीत निर्देशन में महेंद्र कपूर और लता जी का गाया हुआ ये गीत है। फिल्म का नाम है भरोसा।

0: और इसी नगमे के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश ख़त्म हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 2:58 होने को हैं। अब पेश है इस घंटे की ख़ास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों की यात्रा पूरी कर दिल्ली लौट आए हैं। इस दौरे में उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा किया। इटली में श्री मोदी ने वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की और दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल रोम में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के सर्वोच्च सम्मान FAO एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। ये सम्मान उन्हें किसानों के कल्याण, खाद्य सुरक्षा और श्री अन्न यानी मिलेट्स को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के मंत्री कोन ओह यूल के साथ मिलकर भारतीय समर स्मारक का उद्घाटन किया। ये स्मारक कोरिया युद्ध के 75 वर्ष पूरे होने पर बनाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि सांदीपनी विद्यालयों में पढ़ाई के बाद बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट की गतिविधियां चलाई जाएं। प्रदेश में RTE के तहत दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी कर जारी की गई, जिसमें 11,485 बच्चों को उनकी पसंद के प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त दाखिला मिला है। ये वो बच्चे थे जिन्हें पहले चरण में स्कूल नहीं मिल पाया था। भोपाल की चर्चित मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में कल जिला अदालत ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग खारिज कर दी है। हालांकि कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि शव को -80 डिग्री तापमान पर सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए। और मौसम में प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया, निवाड़ी समेत प्रदेश के 7 जिलों में तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है और 23 मई तक राहत के कोई आसार नहीं है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। इस सभा के समापन से पहले हम आपको जानकारी दे दें हमारी सांध्यकालीन सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर युवा दोस्तों के कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र का योगदान होगा। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 6:00। ग्राम लक्ष्मी आप सुन सकते हैं 7:21 पर। और सुर्खियों में इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात्रि 8:00। आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी रात 10:00। और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में पंडित उल्हास कासलकर का राग यमन कल्याण में ख्याल गायन आप सुन सकते हैं। ये थी जानकारी उन कार्यक्रमों की जिन्हें आप हमारी सांध्यकालीन सभा के प्रसारण में सुन सकते हैं। 3:02 होने को हैं। अब मीडियम वेव पर हमारा ये प्रसारण संपन्न होता है। आप शाम 5:00 से हमारे प्रसारण को पुनः मीडियम वेव पर सुन सकते हैं। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। नमस्कार। DTH के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। आप सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं हम तिलोत्तमा विश्वकर्मा के गाए हुए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ इस लंगोरिया से।

इसी बन्नी गीत के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण और उस सुगम संगीत का अब कार्यक्रम आप सुनने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र का योगदान है और कलाकार हैं मोनल सावरकर, इनसे सुनते हैं कार्यक्रम के आरंभ में।

और चित्रपट संगीत के आखिर में आप सुनेंगे किशोर कुमार का गाया हुआ ये गीत। साथ में आवाज़ है अलका याग्निक की, इंदिवर के बोल राजेश रोशन का संगीत, फिल्म का नाम कामचोर।

और इसी नगमे के साथ चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब ख़त्म हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण DTH के ऑडियो चैनल पर। 3:58 हुए हैं। अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि निवेशकों से कथित तौर पर 49 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में 7 राज्यों में लंबित 53 प्राथमिकियों को एक साथ मिला दिया जाए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक संकट के बीच भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP 6.4 से बढ़कर 6.5% हो गया है, जो 140 करोड़ भारतीयों की क्षमता को दर्शाता है। शिक्षा मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि स्कूल प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि इन संस्थानों को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसका गठन किया गया है। इससे व्यापार के लिए बेहतर वातावरण निर्मित करने और प्रदेश के निर्यात को बढ़ावा मिल सकेगा। प्रदेश में अब तक 12,56,000 से ज़्यादा किसानों से 93,00,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। किसानों को 2,625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है, जिसमें 40 रुपये बोनस भी शामिल है। और IPL क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है। अब सुनिए नाटक खुशबू का नगमा। लेखक हैं रामवल्लभ आचार्य और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।
2: प्रस्तुत है नाटक खुशबू का नगमा। लेखक कमर जमाली, प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।

0: गुड मॉर्निंग सर.
1: हेलो, गुड मॉर्निंग.
0: इट्स योर ब्रेकफास्ट सर.
1: ऑल राइट. मैडम कहाँ है?
0: बेबी के रूम में है सर.
1: क्या कर रही है बेबी?
0: ओह हाउ स्वीट शी इज इन हर डॉक्टर्स यूनिफॉर्म सर.
1: अच्छा तुम जाओ.
0: बट सर मैडम हैज टोल्ड मी.
1: शुको अंडरस्टैंड.
0: ओके सर. ओके सर.
1: ऑल राइट. बेबी तूने मेरी लाश रख ली बेटे. खुदा तेरी उम्र दराज करे. तुझ में वो सारी खूबियां समा जाएं जो.
2: अरे आपने नाश्ता नहीं किया अब तक? मैं कह रही हूँ नाश्ते की ट्रॉली कब से खड़ी है आपके सामने?
1: पता नहीं.
2: क्या बात है, क्या सोच रहे हैं आप?
1: कुछ नहीं.
2: कुछ तो
1: सोच रहा था. अजरा और सलीम ने तो मुझे मायूस कर दिया था. लेकिन बेबी के रूप में जैसे मुझे मेरी खोई हुई दुनिया मिल गई. आज मैं किस कदर खुश हूं तुम इसका अंदाजा नहीं कर सकती रतिया. मैं महसूस कर रहा हूं मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा हो गया. मैं देख रहा हूं मेरी दीदी मेरे सामने खड़ी है. मेरी दीदी, उनसे पहली मुलाकात का वाकया मुझे आज भी याद है. तब 10वीं में पढ़ता था मैं.

0: ए मिस्टर, देख के नहीं चलते?
1: जी
0: सुनते भी कम हो क्या?
1: सुनता तो हूँ जी।
0: तो फिर सड़क पर चलना नहीं आता क्या?
1: वो भी आता है, लेकिन शायद आप कुछ नहीं जानती।
0: क्या मतलब?
1: मतलब ये कि गाड़ी चलाना औरतों का काम नहीं, क्या समझी?

0: काफी गुस्ताख हो तुम।
1: आपसे कम हूं जी।
0: बात करना सीखो।
1: और आप भी गाड़ी चलाना सीखिए, क्या समझी?
0: ओह, तो ये बात है।
1: हाँ जी, बिल्कुल यही बात है। बड़ा रौब जमाती हैं आप तो।
0: कहाँ रहते हो?
1: ये दुनिया बहुत बड़ी है मिस साहिबा।
0: क्या नाम है तुम्हारा?
1: क्यों बताऊं?
0: अच्छा, अगर प्यार से पूछूं तो?
1: प्यार से? काफी चालाक हैं आप तो।
0: चलो यूं ही सही।
1: जब कोई प्यार से पूछे तो बताना ही पड़ेगा।
0: तो बताओ ना।
1: सुल्तान अहमद।
0: नाम तो अच्छा है।
1: फिर क्या इरादा है आपका?
0: मेरा नाम नहीं पूछोगे?
1: जी
0: मुझे पुष्पा कहते हैं। कहाँ जाओगे?
1: जी
0: फिर वही जी। अरे मैं पूछ रही हूँ, आप कहाँ जाओगे?
1: आखिर आप चाहती क्या हैं?
0: घबराओ नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी।
1: ओह शुक्रिया शुक्रिया, अभी अभी मेरे पांव सलामत हैं जी।
0: वो तो मैं भी देख रही हूँ, मगर मेरा ख्याल है अच्छे लड़के जिद नहीं करते।
1: आप कैसे कह सकती हैं कि मैं अच्छा लड़का हूँ?
0: देखते नहीं मैं तुमसे कितनी बड़ी हूँ।
1: हाँ तो क्या हुआ?
0: हुआ ये कि मैं बहुत सोच समझ कर बात कर रही हूँ, देख कर ही पहचान लेती हूँ कि तुम वाकई अच्छे लड़के हो।
1: अच्छा।
0: चलो बस अब बैठ जाओ।
1: अगर ये बात है तो चलिए, आप भी क्या याद करेंगी, बैठे जाते हैं।

0: हाँ, आप फरमाइए।
1: जी क्या फरमाऊं?
0: मेरा मतलब है, कहाँ जाएंगे आप?
1: ओ आजाद नगर।
0: वहीं रहते हैं?
1: जी हाँ, टॉकीज के सामने रहता हूँ मैं।
0: टॉकीज के सामने? कब से रहते हो वहां?
1: क्यों?
0: इसलिए कि मैं भी वहीं रहती हूँ।
1: अरे कहाँ पर?
0: वो नीली कोठी में।
1: ओ मैं पीली बिल्डिंग में रहता हूँ।
0: अच्छा
1: हाँ, अभी 1 साल हुआ है हम लोगों को, इंदौर से आए हम लोग,
0: अच्छा
1: और मेरे वालिद इंस्पेक्टर हैं सेंट्रल एक्साइज में।
0: और तुम शायद पढ़ते हो?
1: जी हाँ, 10th में।
0: मैं भी पढ़ती हूँ,
1: अच्छा कहाँ पे?
0: गवर्नमेंट कॉलेज में। बीए का फाइनल ईयर है मेरा।
1: फाइनल करने के बाद क्या करेंगी आप?
0: क्यों?
1: यूं ही पूछ रहा था।
0: पता नहीं क्या करूंगी। वैसे तो मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ।
1: ओ डॉक्टर, पर आप तो आर्ट की स्टूडेंट है ना?
0: वही तो, यही तो खराबी है इस दुनिया में। आदमी जो कुछ करना चाहता है वो कर नहीं पाता, और जो होता है वो चाहता नहीं।
1: ये बड़ी अजीब बात है, वाले साहब भी मुझे वकील बनाना चाहते हैं।
0: और तुम क्या चाहते हो?
1: भाई मैं तो इंजीनियर बनना चाहता हूं।
0: डॉक्टर क्यों नहीं?
1: मेरा ख्याल है मैं डॉक्टर से अच्छा इंजीनियर बन सकता हूं।
0: हाँ चलो, ये भी ठीक है। वैसे भी आज देश को वकीलों से ज्यादा तो डॉक्टर्स और इंजीनियर की ही जरूरत है।
1: मगर हमारे वाले साहब का ख्याल है कि इंजीनियर जिंदगी भर दूसरों के घर बनाता फिरता है, मगर खुद उसका कोई घर नहीं होता, खाना बदोशों की तरह इधर उधर घूमता फिरता।
0: अपनी जात के लिए सोचने वाले ये नहीं जानते कि खिदमते खल्क से अच्छा इस दुनिया में कोई और काम ही नहीं।
1: जी
0: अच्छा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरा मतलब है कि तुम्हारी बहन भी है?
1: नहीं, मैं अकेला हूं।
0: ओ
1: क्यों?
0: कुछ नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह बहुत अकेली हूं। मेरा भी कोई नहीं है।
1: ऐसा क्यों है? जिन लोगों के सीने मोहब्बत के नूर से मामूर हैं, वो भाई बहन के नाम को तरसते हैं, और जिनके भाई बहन हैं वो अपने सिवा कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं देखते।
0: अभी तुम बहुत छोटे हो, तुमको ऐसी बातें नहीं सोचना चाहिए।
1: मुझे मेरे अकेलेपन ने वक्त से पहले बूढ़ा बना दिया है। आप हैरान रह जाएंगी, कभी कभी मुझ पर दीवानगी का दौरा पड़ता है।
0: क्या?
1: मेरा जी चाहता है कि रास्ते चलते किसी भी लड़की को पकड़कर उसका मुंह चूम लूं, हाँ उसके बाल बिगाड़ दूं, और पूछूं कि भाई बहन का रिश्ता इतना महदूद क्यों है। मैं एकदम पागल हो जाता हूं।
0: अच्छा सुनो,
1: हुँ?
0: इधर।

0: देखो, अगर तुम चाहो तो मेरे बाल बिगाड़ सकते हो, मेरा मुंह चूम सकते हो।
1: दीदी, ये क्या कह
0: हाँ
1: रही हैं आप?
0: भैया, मेरे
1: दीदी,
0: अच्छे भैया।
1: ये लीजिए, ये आ गया मेरा घर।
0: और वो देखो, वो सामने रही मेरी कोठी।
1: अच्छा, वो है आपकी कोठी?
0: नहीं तो, मैं तो उसमें रहती हूं। अच्छा, कल आओगे ना?
1: जरूर।
0: अच्छा, बाय बाय।
1: बाय।

0: ओ, अब उठिए ना, कब तक सोते रहेंगे? मैंने कहा सुनते हैं आप? ए क्या, 10 बज गया?
1: तो क्या हुआ भाई, आज तो इतवार है ना।
0: कम से कम नाश्ता तो कर लीजिए, कब से पड़ा ठंडा हो रहा है?
1: आपने कर लिया?
0: फिर वही।
1: बेगम आपसे भी हद है, मैंने कितनी बार कहा है कि कम से कम इतवार के दिन तो नाश्ता कर लिया कीजिए, बेकार में मेरी वजह से भूखी रहती हैं आप।
0: अच्छा, आप जल्दी से उठ के शेव कर लीजिए, मैं जब तक चाय तैयार करती हूँ।
1: ठीक है। हाँ, सुल्तान कहाँ है?
0: पुष्पा कहाँ गया है?
1: पुष्पा के यहाँ? आखिर तुम उसे रोकती क्यों नहीं, जब देखो वहीं घुसा रहता है। हुआ ये कि अब वो बच्चा नहीं रहा, पूरी तरह जवान हो चुका है।
0: अरे वो तो मैं भी जानती हूँ, मगर कोई बात तो मालूम हो।
1: बेगम आपसे भी हद है, ये भी नहीं समझती कि जमाना कितना खराब है। खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो सारे शहर में आग लग जाएगी।
0: हाय अल्लाह, क्या कहते हैं आप?
1: बेगम मैं सच कह रहा हूं, बहुत बुरा जमाना है, पता नहीं कब क्या हो जाए।
0: मगर सुल्तान और पुष्पा के बीच तो सगे भाई बहनों जैसा रिश्ता है।
1: लोग तो इस तरह नहीं सोचते ना।
0: लोगों का क्या है, वो तो किसी को भी माफ नहीं करते।
1: वही तो मैं भी कह रहा हूं बेगम।
0: तो अजी, इसका ये मतलब भी नहीं कि लोगों की बातों में आकर हम अपने बच्चों की नियत पे शक करें।
1: मैं पूछता हूं, बिला वजह मुसीबत मोल लेने से फायदा? पुष्पा MA कर चुकी है और तुम्हारा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, फिर दोनों के दरमियान वो कौन सी कदर मुश्तरक है जो एक दूसरे से मिलते हैं।
0: तो क्या भाई बहन का प्यार कोई चीज नहीं?
1: ओहो, अब मैं तुमको कैसे समझाऊं? पुष्पा के घर वाले समझते हैं वो महज सुल्तान की खातिर शादी से इनकार कर रही है।
0: हाय अल्लाह, ये
1: हाँ,
0: आपसे किसने कहा?
1: उसके चचा ने।
0: अच्छा,
1: कल वो मेरे पास आए थे, कह रहे थे उनकी बीवी के रिश्तेदारों में एक अच्छा सा लड़का है, काफी दौलतमंद और पढ़ा लिखा भी है, मगर पुष्पा है कि किसी तरह तैयारी नहीं।
0: आए है तो इसमें सुल्तान का क्या कसूर?
1: कसूर यह है कि उनको यकीन है कि अगर सुल्तान पुष्पा पर जोर डाले तो जरूर तैयार हो जाएगी। इसका मतलब समझती हैं आप?
2: देखो सुल्तान, मैं सब कुछ समझती हूँ, तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं कि दूसरों की बातों में आकर मुझे सबक पढ़ा रहे हो तुम।
3: मगर मैं पूछता हूँ दीदी, हरी बाबू में ऐसी क्या बुराई है जो?
2: क्या चाहते हो तुम, मैं उस शख्स से शादी कर लूं जो बीवी और जागीर में कोई फर्क ही ना कर सके? क्या तुम इस बात को पसंद करोगे कि तुम्हारी बीवी ड्राइंग रूम की जीनत बनाकर बिठा दी जाए? क्या तुम यार दोस्तों की महफिल में अपनी बीवी की नुमाइश करके बड़े फख्र के साथ कह सकोगे कि ये है वो खूबसूरत याकार जिसे मैंने दौलत के बलबूते पर हासिल किया है?
3: हरगिज नहीं।
2: तो फिर सोचो, मेरी जिंदगी, मेरी हस्ती और मेरी खूबसूरती को शोकेस में सजाकर जगह जगह नुमाइश की जाएगी, तो क्या मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाऊंगी? बोलो।
3: अगर अंकल तो कह रहे थे कि वो
2: उनकी बात छोड़ो, वो तो ये चाहते हैं कि मैं जिंदगी भर ऐश करूं, मगर मैं जानती हूं ऐशो इशरत के बोझ तले दबकर मेरा वजूद मिट जाएगा, कुछ भी नहीं रहूंगी मैं।
3: लोग तो चाहते हैं कि आराम की जिंदगी गुजारे, और आप हैं कि आराम को हराम समझकर पता नहीं क्या चाहती हैं आप।
2: मैं जो कुछ चाहती हूँ वो तुम अच्छी तरह जानते हो सुल्तान।
3: दीदी,

0: मैं फैसला कर चुकी हूं, अगर मुझ पर ज्यादा दबाव डाला गया तो मैं
1: तो क्या करेंगी आप?
0: तो मैं सब कुछ छोड़कर चली जाऊंगी।
1: कहाँ?
0: हे दुनिया बहुत बड़ी है सुल्तान, और इसमें बहुत से काम अधूरे पड़े हैं।
1: क्या करेंगी आप?
0: जो चाहती हूँ वो तो नहीं कर पाऊंगी, मगर हाँ कोशिश जरूर करूंगी कि लोगों की खिदमत कर सकूं, उनके किसी काम आ जाऊं। आज मेरा अपना कोई नहीं, कोई भी तो नहीं कि जिसके सामने अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं।
1: दीदी, दीदी खुदा के लिए चुप हो जाइए, दीदी चुप हो जाइए प्लीज, नहीं तो मैं भी रो दूंगा दीदी, मैं भी रो दूंगा।
0: सुल्तान, एक बात कहूं मानोगे?
1: बोलो, कहो।
0: मैं जब यहां से जाने लगूं तो मुझे छोड़ने मत आना तुम।
1: छोड़ने मत आना? क्यों?
0: नहीं तो मैं जा नहीं सकूंगी। देखो सुल्तान, मेरे जाने के बाद तुम मुझे भूल जाना।
1: दीदी खुदा के लिए ऐसा मत कहिए दीदी, मैं भूल कर भी आपको नहीं भूल पाऊंगा दीदी।

0: अरे आप गए नहीं अब तक? मैं तो समझी थी कि
1: जाऊं कैसे, तुम्हारे बेटे साहब छोड़े तब ना।
0: है किसका बेटा?
1: क्या मतलब?
0: मतलब ये कि 10:30 बज रहा है।
1: 10:30 बज गया
0: जी, ये देखिए।
1: ओ अच्छा,
0: मगर सुनिए तो
1: क्या है,
0: वापसी में अजरा के लिए किताबें जरूर लेते आइएगा और आपके बेटे के लिए दूध का डिब्बा।
1: हाँ जरूर, लेकिन 4:30 बजे के करीब मुझे फोन कर देना याद से। अच्छा जा रहा हूँ मैं।
0: तौबा है मेरी, ये क्या करते हैं आप हर रोज?
1: क्या करता हूँ?
0: आपको पता नहीं बच्चों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। अजरा तो मुझसे कई बार पूछ चुकी है।
1: क्या?
0: यही कि हर रोज आप इस तस्वीर के सामने खड़े होकर ये पुजारियों की तरह क्या पढ़ते हैं?
1: पढ़ता नहीं, उनको याद करता हूँ।
0: याद करने का ये तरीका हमारे मजहबी उसूलों के खिलाफ है, ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम है ना?
1: तुम भी अच्छी तरह जानती हो रसिया कि दीदी मेरा आइडियल है, मैं उनको एक लम्हा के लिए भी अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकता।
0: मैं ये कब कहती हूँ कि आप उन्हें भूल जाइए, मगर ये तरीका ठीक नहीं है।
1: देखो रसिया, पूरे 8 साल हो चुके हमारी शादी को, इस बीच तुमने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। ये सोचकर मैं बहुत खुश था कि तुमने मेरे अंदर की सच्चाइयों को देख लिया है, तुम वाकई मेरी शरीक हयात हो। मगर आज तुमने सारा भरम दूर दिया। मैं तुम्हारी सूरत में उस गंदी जहनियत का अक्स देख रहा हूं जो
0: सुल्तान, खुदा के लिए मुझे गलत मत समझो, मैं कसम खाकर कहती हूँ मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है।
1: तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा?
0: गलती हो गई सुल्तान, माफ कर दीजिए। हेलो, कहाँ से जी? एक मिनट, आपका ट्रंक कॉल है।
1: ट्रंक कॉल कहाँ से?
0: हेड ऑफिस से।
1: हेलो जी, हाँ जी मैं बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर जी। जी हाँ, थैंक यू सर। सर ये सब आपकी मेहरबानी है सर। जी नहीं सर, मैं एकदम तैयार हूँ सर। जी जैसा फरमाया सर जी, बहुत अच्छा सर। थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन सर जी, खुदा हाफिज।
0: क्या हुआ?
1: कुछ नहीं, चलने की तैयारी करो।
0: कहाँ?
1: जबलपुर।
0: क्यों?
1: अरे भाई मेरा तबादला हो गया है।
0: तबादला? ये कैसे हो सकता है, एक साल में दो बार?
1: अरे भाई ये सब उसकी मेहरबानी है, मुझे प्रमोट करके ऐसी बना दिया गया है।
0: अच्छा सच? सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर?
1: हाँ।
0: या अल्लाह, तेरा

0: लाख लाख शुक्र है।
1: और सबसे बड़ी बात यह है कि पुष्पा दीदी के पास पहुंच जाऊंगा।
0: अरे हाँ, वो भी तो वही है ना।
1: हाँ रतिया,
0: ये बहुत अच्छा हुआ।
1: और तुमको ये शिकायत भी नहीं रहेगी कि मैं उनकी तस्वीर के सामने खड़े होकर अपने मजहबी उसूलों के खिलाफ वर्जी करता हूँ।
0: देखिए देखिए, इसका ये मतलब हुआ कि आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया।
1: मुझे यकीन है रतिया कि वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी।
0: मेरी बात का जवाब तो दीजिए ना।
1: क्या?
0: आपको मेरी कसम, कहिए ना कि आपने माफ किया।
1: अरे बेगम, तुमने मेरा नहीं दीदी का कसूर किया है, और वो इतने फराक दिल हैं कि तुम्हें जरूर माफ कर देंगे।
0: मगर आप नहीं करेंगे।
1: अरे भाई, मैं तो पहले ही माफ कर चुका हूँ। अच्छा, अब जल्दी तैयारी करो, मैं तब तक ऑफिस होकर आता हूँ।
0: जल्दी आइएगा।
1: अच्छा,
2: कौन? अरे भाई, कौन है?
1: दीदी।
2: अरे तुम?
1: हाँ दीदी।
2: सुल्तान?
1: हाँ दीदी, मैं हूँ।
2: अरे तुम इतने बड़े हो गए?
1: और आप भी तो कितनी बदल गई हैं। अरे बीमार हैं क्या आप?
2: नहीं तो। आओ अंदर आओ। मगर जरा ठहरो।
1: क्यों?
2: एक मिनट, मैं तुम्हारी आरती तो उतार लूं।
1: आरती? अरे मैं कोई भगवान का अवतार हूं क्या दीदी?
2: मेरा भैया भगवान के अवतार से कम है क्या? वो आज मेरे घर आया है, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है?
1: मैं भी कितना खुश नसीब हूं कि
2: कब आए?
1: आज ही, बल्कि बस अभी चला ही तो आ रहा हूं मैं।
2: सामान कहाँ है?
1: बंगले पर, और वहां आपकी बहू भी है।
2: बहू? तो क्या वो भी आई है?
1: हाँ दीदी, और आपकी दुआ से दो बच्चे भी हैं, अदरा और सलीम।
2: अच्छा, तो उन्हें क्यों नहीं लेकर आए?
1: मैं आपको साथ लेने आया हूँ।
2: मुझे?
1: हाँ आपको, जानती हैं आप, मैं अब मुस्तकिल तौर पर यहीं आ गया हूँ।
2: सच? अरे फिर तो मैं
1: दीदी, ऐसा कब से आपको?
2: कुछ नहीं, वो तो बस यूं ही कभी कभी ठसका सा लग जाता है।
1: ठसका? नहीं दीदी, ये तो दीदी।
2: तुम बताओ।
1: उस दौरान मैंने आपको बहुत से खत लिखे, अगर आपने किसी एक का भी जवाब नहीं दिया।
2: नहीं तो? अरे मैंने तो तुझको हर रोज खत लिखा।
1: अरे
2: खत लिखती थी और खुद ही उसका जवाब देकर फाड़ डालती थी।
1: मगर क्यों?
2: इसलिए कि मैं भी तेरी तरह थोड़ी थोड़ी पागल हूं ना।
1: तो फिर तैयार हो जाइए दीदी, आज से आप मेरे साथ रहेंगी।
2: पागल हो तुम तो, अपनी मोहब्बत के जोश में भूल रहे हो कि मैं सिर्फ तुम्हारी दीदी ही नहीं, बहुत से बच्चों की माँ भी हूँ।
1: बहुत से बच्चों की माँ?
2: हाँ सुल्तान, इस स्कूल में पढ़ने वाले ज्यादा बच्चे तो अनाथ और बेसहारा हैं, जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं। अगर मैं उन्हें छोड़कर चली गई तो चाय पियोगे?
1: हाँ जरूर पियूंगा, मगर अभी नहीं।
2: क्यों?
1: इसलिए कि रजिया से मैं आपके मुतालिक इतनी बातें कर चुका हूँ कि वो आपसे मिलने के लिए बेताब है।
2: अगर ये बात है तो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ।
1: चलो,
2: मगर एक शर्त है।
1: शर्त? क्या?
2: ठीक 7 बजे मुझे यहाँ छोड़ जाना।
1: क्यों?
2: अरे बच्चों के खाने का वक्त हो जाएगा, वो मेरे बगैर भूखे रहेंगे नहीं तो। अरे अरे अरे अल्लाह,
1: क्या हुआ रतिया? क्या हुआ तुम्हें रतिया?
0: कुछ नहीं, सुबह से ये वक्त हो गया।
1: अच्छा,
0: बार बार दर्द उठ रहा है।
1: मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ।
0: वो तो ठीक है, मगर दीदी वो हमारा इंतजार कर रही होंगी ना।

0: फिर क्या रहता है, ऐसी हालत में चलोगी तुम?
1: आप बुरा तो नहीं मानेंगे?
0: तुमसे भी हद है रसिया, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? वो तो खुद कई बार मुझसे कह चुकी हैं कि ऐसी हालत में बड़ी एहतियात की जरूरत है।
1: तो फिर आप चले जाइए प्लीज।
0: तुम्हें छोड़कर इस हालत में?
1: हाँ, मेरी तरफ से बहुत बहुत माफी मांग लीजिएगा उनसे।
0: नहीं रसिया, मैं फोन करके उन्हें यहीं पर बुला लेता हूँ।
1: नहीं, वो नहीं आ सकेंगे।
0: क्यों, क्यों नहीं आ सकेंगी?
1: वो बीमार हैं।
0: बीमार हैं?
1: हाँ, अभी कुछ देर पहले टेलीफोन पर उन्होंने बताया था, कल से उनकी तबीयत ठीक नहीं है।
0: फिर तो मुझे जाना ही पड़ेगा।
1: हाँ, आप हो आइए और सुनिए।
0: हाँ बोलो।
1: वो रास्ते में डॉक्टर जौहरी को कहते जाइएगा,
0: हाँ,
1: वो आ जाएंगे।
0: ठीक है।
2: तुम जानते हो, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी,
0: हाँ,
2: मगर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी।
0: हाँ, तो
2: जानते हो मेरे अंदर की ये ख्वाहिश क्यों पैदा हुई?
0: जी नहीं।
2: तो सुनो, मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को तड़पते हुए देखा है, चीखते हुए सुना है, डॉक्टर डॉक्टर, मगर डॉक्टर नहीं आया और मेरी माँ तड़प तड़प कर मर गई। उनको भी यही बीमारी थी
0: क्या?
2: पता नहीं, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी अजरा है ना?
0: हाँ दीदी।
2: वो जब बड़ी हो जाए तो
0: जी
2: उसको डॉक्टर बनाना।
0: जी
2: बनाओगे ना?
0: हाँ दीदी।
2: सुल्तान
0: जी, दीदी
2: देखो
0: जी,
2: ये मेरी आखिरी ख्वाहिश तुम
0: आपकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। दीदी दीदी दीदी दीदी दीदी, हेलो जी, हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। क्या लड़की हुई है? या खुदा, ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है?
1: ओह, आपने ये बात अब तक मुझसे क्यों छुपाई?
0: इसलिए कि मैं नहीं चाहता था हसरा और सलीम जो कुछ बनना चाहते हैं मैं उनके रास्ते में रुकावट बनूं।
1: तो फिर उनसे शिकायत भी तो गलत है ना?
0: मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, बल्कि खुश हूं मैं कि जब से बेबी ने इस घर में कदम रखा है दीदी की खुशबू मेरे चारों तरफ महकती रहती है। मुझे एक लम्हा के लिए भी महसूस नहीं हुआ कि मेरी दीदी मुझे छोड़कर चली गई।
3: पापा।
0: बेटे।
3: ब्लेस मी पापा, प्लीज, इट इज माय फर्स्ट केस, मे आई बी सक्सेसफुल?
0: विश यू ऑल द सक्सेस, ऑल द सक्सेस, गो, मे गॉड हेल्प यू, खुदा तुम्हें कामयाबी अता करे मेरे बेटे।
3: थैंक यू पापा, थैंक यू।
0: लेकिन सुनो बेटे।
3: यस पापा।
0: देखो बेटे, तुमने जिस रास्ते पर कदम रखा है वो इंसानियत, मोहब्बत, खुलूस और खिदमत का रास्ता है। कहीं ऐसा ना हो मेरे बेटे कि तुम्हारे कदम डगमगा जाए और मुझे किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े।
3: पापा।
0: तुम्हें मालूम है ना बेटे, तुम किसी की अमानत हो।
3: हाँ मैं जानती हूँ पापा, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है?
0: लोगों की खिदमत करना, याद है ना?
3: हाँ पापा। खुश रहो बेटे, खुश रहो।
0: जाओ बेटा, खुदा तुम्हें कामयाब करे।

अभी आप सुन रहे थे कमर जमाली का लिखा नाटक खुशबू का नगमा। भाग लेने वाले कलाकार थे अशोक बुलानी,

बदरुन्निसा, आशा मिश्रा, विकार हुसैन, अनीस फातिमा, मकबूल हसन और दीप्ति तंतुवाय। प्रस्तुति सहयोग श्रीमती वर्षा शर्मा और आनंद सिंह उद्देका, और इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे चित्रेंद्र स्वरूप राजन।

आकाशवाणी भोपाल से आप सुनिए संग्रहालय से, इसके अंतर्गत पंचतंत्र की आठवीं कड़ी का प्रसारण।

सभी श्रोतागण, दादा दादी एवं नाना नानियों को विशेष प्रणाम। आप सबको पंचतंत्र की छोटी छोटी कहानियाँ जरूर भाती होंगी। अभी तो ढेर सारी कहानियाँ और भी हैं। पिछली कथा में हमने सुना, लघु पतनक नामक कौवे ने देखा कि किस प्रकार चित्रग्रीव अपने साथियों को जाल में फंसा देखकर घबराया नहीं, बल्कि उन्हें हौसला दिया। सबने मिलकर जाल को उड़ा लिया। बहेलिया हार कर लौट गया। लघु पतनक भी उनके साथ उड़ चला। फिर उसने देखा कि हिरण्यक नामक चूहे ने उन सबको जाल से मुक्त कर दिया। लघु पतनक ने हिरण्यक से मित्रता कर ली। पहले तो हिरण्यक तैयार ही नहीं हो रहा था, फिर लघु पतनक के तर्क के सामने उसने हार मान ली। वे दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। एक दिन लघु पतनक ने उस जगह को छोड़ने का निश्चय किया। हिरण्यक को लेकर वो दक्षिण की ओर अपने मित्र मंथरक कछुए के पास पहुंच गया। मंथरक ने उनका बहुत स्वागत किया, परंतु मंथरक ने हिरण्यक से अपनी पुरानी जगह को छोड़ने का कारण पूछा।

रण्यक ने बताया, अपने भाग्य में जो लिखा है वो तो होकर ही रहता है। इस संदर्भ में उसने छोटी छोटी कहानियां भी सुनाई, एक वणिक पुत्र की कथा भी सुनाई जो हमेशा अपने भाग्य पर ही विश्वास करता था। उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। संयोगवश उसका मिलन राजकन्या से हो गया, लेकिन सच्चाई ज्ञात होने पर राजकन्या ने उसे निकाल दिया तो प्राप्त व्यर्थ नगर की ओर चल पड़ा। वहीं से एक बारात निकल रही थी, वो उसमें शामिल हो गया। अब आगे।

0: क्या शानदार बारात है। लगता है जैसे किसी बड़े आदमी के घर जा रही है। अच्छा, ये तो नगर सेठ की बेटी की शादी है। अरे ये कोलाहल कैसा, लोग इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? अरे ये तो एक मदमत हाथी महावत से छूट गया है, सबको रौंदता हुआ जा रहा है। हे प्रभु, हे प्रभु, इनकी रक्षा करो। ये दुल्हन बेचारी अकेली खड़ी है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। सुनिए, आप डरे नहीं, अब मैं आपका रक्षक हूं।
1: मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं? आप नहीं जानते मैं कितनी डरी हुई थी, मुझे थोड़ी राहत मिली।
0: मेरा हाथ थाम लो कन्या, तुम्हारा डर समाप्त हो जाएगा।
1: आपने आज मुझे मृत्यु से बचाया है, इसलिए अब आपको छोड़कर मेरी जीवित दशा में कोई भी दूसरा व्यक्ति मेरा पाणी ग्रहण नहीं कर सकता।
0: भाग्य में लिखी वस्तु मिल ही जाती है। हाँ, मनुष्य के भाग्य में लिखी वस्तु उसे मिल ही जाती है।
2: अगली सुबह राजा ने पूरा वृतांत सुना। अपनी कन्या को संपूर्ण अलंकारों एवं दास दासियों से युक्त करके 1000 गांवों के साथ अत्यंत आनंद के साथ प्राप्त व्रत को सौंप दिया। राजा ने उसे युवराज का सम्मान दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ, मनुष्य को भाग्य का लिखा मिल ही जाता है, और इसी कारण मैं लघु पत्नक के साथ यहाँ आ गया हूँ।
3: आप सबका इस तालाब के किनारे स्वागत है। आपका जो धन नष्ट हुआ उसके लिए चिंतित ना हो। भाग्य में यदि उपभोग का सुख नहीं है तो वह संभव नहीं होता, जैसे सौमिलक धन खो देता था।
2: सौमिलक धन खो देता था, वो कैसे मंत्रक?
3: तो सुनो, एक नगर में सौमिलक नाम का एक जुलाहा रहता था। वो अनेक प्रकार के रंगों और चित्रकारियों से युक्त रेशमी तथा राजाओं के पहनने योग्य बहुमूल्य वस्त्रों का निर्माण करता था, परंतु
4: प्रिय, मैं अनेक प्रकार के चित्रकारियों से युक्त रेशमी वस्त्रों के निर्माण में निपुण होने पर भी उतना धन नहीं कमा पाता, क्यों?
5: सही कहते हैं आप। दूसरे जुलाहे जो केवल मोटे वस्त्रों के निर्माण में ही कुशल थे, वे हमसे अधिक समृद्ध हैं।

0: मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि ये जगह मुझे रास नहीं आ रही। मुझे दूसरे शहर में जाकर व्यापार करना चाहिए।
1: हे स्वामी, ये सारी सुनी सुनाई बातें हैं। विदेश जाने पर धन लाभ भी हो, ये सारी मिथ्या बातें हैं। मनुष्य चाहे आकाश में उड़ जाए, चाहे पाताल में चला जाए, अथवा पृथ्वी के ही छोर तक चला जाए, किंतु जो वस्तु पहले नहीं मिली वो कभी मिलेगी भी नहीं। इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम यहीं पर कोई उद्योग।
0: प्रिय, तुमने ठीक नहीं कहा। कार्य की सिद्धि उद्योग से होती है, केवल मनोरथ मात्र से कुछ नहीं होता। इसलिए कर्म करते रहना चाहिए। मैं विदेश अवश्य जाऊंगा।
2: ऐसा निश्चय करके सोमिलक ने वर्धमान नामक नगर में जाकर 3 वर्ष तक कड़ी मेहनत की और 300 स्वर्ण मुद्राएं कमा कर लौटा। रास्ते में एक जंगल आया, वहां विश्राम के लिए रुका, परंतु उसका धन चोरी हो गया। वो पुनः शहर गया, धन कमाया, पर अत्यधिक सावधानी के बावजूद उसका धन फिर चोरी हो गया। चौथी बार उसने देखा, उसकी ओर देखकर 2 विचित्र आकृति के पुरुष कुछ वार्तालाप कर रहे थे। उसने ध्यान से सुना।

0: हे कर्ता, क्या तुम भली भांति नहीं जानते हो कि सोमिलक के भाग्य में भोजन और वस्त्र के अतिरिक्त धन नहीं है? फिर भी आपने इसको 30 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दे दी?
1: हे कर्मन, उद्यमी पुरुषों को उनका अंश दे होता ही है, पर इसके प्रारब्ध का अंतिम निर्णय तुम्हें ही करना है। तुम मुझे व्यर्थ ही उपालंभ दे रहे हो।
2: नहीं, मेरे श्रम के फल को कोई नहीं छीन सकता। मैं गठरी को संभाल कर रख लेता हूं। अरे ये क्या, अरे ये गठरी तो फिर खाली है। हाय हाय हाय हाय, अब क्या होगा? मेरे निर्धन रहकर जीवित रहने से मुझे क्या लाभ है? हाय हाय हाय हाय, मैं इस वट वृक्ष की शाखा में खुद को मानकर आत्महत्या कर लूंगा। मैं जीवित नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा।
0: अरे नहीं नहीं नहीं, सोमिलक, इस प्रकार का साहस न करो। तुम्हारे धन को चुराने वाला मैं हूं। भोजन और वस्त्र से अधिक धन तुम्हारे भाग्य में नहीं है। तुम घर लौट जाओ, पर मैं तुमसे प्रसन्न हूं। हां, चाहो तो कोई और वर मांग लो।
2: सच? यदि ऐसा है तो मुझे बहुत सा धन दे दो।
0: पर तुम उसे भोग नहीं पाओगे।
2: यद्यपि धन मेरे भाग्य में नहीं है, फिर भी मेरे पास धन होना चाहिए। धनी व्यक्ति की लोग सेवा करते हैं।
0: कैसे?
2: किसी नगर में तीक्ष्ण विषाण नामक एक सांड रहता था। मद के गर्व से उसने अपने समूह का साथ छोड़ दिया था और एकाकी नदियों के किनारे उगी हुई मरकत मणि के समान हरी हरी कोमल घास को चरते हुए नदियों के तट को अपने सींग से गिराया करता था। इस प्रकार स्वच्छंद विचरण करते हुए वो धीरे धीरे जंगली हो गया और वन में निवास करने लगा। उसी वन में प्रलोभक नाम का एक श्रृगाल भी रहता था। एक दिन वो श्रृगाल अपनी पत्नी के साथ नदी तट पर सुखपूर्वक बैठा हुआ था। इसी बीच तीक्ष्ण विषाण नाम का वो सांड जल पीने के लिए नदी तट पर आ गया। उसके लटकते हुए वृहत मांसल अंशों को देखकर श्रृगाली ने कहा,
3: स्वामी देखो, इस वृषभ पर मांस के टुकड़े जिस प्रकार से लटके

0: अटके हुए हैं, उससे यही ज्ञात होता है कि कुछ ही पलों में ये गिर जाएंगे। आपको इस वृषभ का अनुगमन करना चाहिए।
1: प्रिय, कौन जानता है ये मांसपिंड गिरेंगे या नहीं? तुम मुझसे व्यर्थ ही परिश्रम करवा रही हो। यहाँ तुम्हारे साथ रहकर मैं जल पीने के लिए आने वाले चूहों को पकड़कर खाया करूंगा। मेरे विचार से सांड के पीछे भागना उचित नहीं।
0: तुम उद्यमी नहीं हो, थोड़ा बहुत जो पा जाते हो उसी से संतोष कर लेते हो। कायर और आलसी पुरुष ऐसा करते हैं। और दूसरी बात, मैं चूहों का मांस खाते खाते ऊब चुकी हूँ। अरे देखो देखो, मांस के ये टुकड़े गिरने ही वाले हैं।

0: पत्नी की बात को श्रीगाल टाल नहीं पाया। वृषभ के पीछे घूमते हुए बहुत समय व्यतीत कर दिया, किंतु मांसपिंड नहीं गिरे। 15 वर्षों तक प्रतीक्षा करके वो श्रीगाल लौट आया। उसे लगा वो मांसपिंड कभी नहीं गिरेंगे।
1: देखो सोमिलक, यदि तुम्हें धन प्राप्ति की इतनी ही इच्छा है तो तुम मेरी बात मानो। तुम वर्धमानपुर जाओ, वहां 2 वणिक पुत्र निवास करते हैं। हाँ, एक का नाम गुप्त धन है और दूसरे का नाम उपभुक्त धन। दोनों के स्वभाव को देखो, फिर एक की प्रकृति का वर मुझसे मांग लेना।
2: ये कहकर वो पुरुष अंतर्धान हो गया। सोमिलक उस नगर में जाकर गुप्त धन के घर पहुंचा। उसे देखकर गुप्त धन स्त्री तथा बच्चों को फटकारने लगा। उनकी उपेक्षा की चिंता किए बिना सोमिलक उनके घर में प्रवेश कर बैठ गया। भोजन का समय हो जाने पर अनिच्छा से गुप्त धन ने थोड़ा सा भोजन सोमिलक को भी दे दिया। सोमिलक वहीं सो गया। रात में उसने देखा वही दोनों पुरुष वहां बातें कर रहे थे।
1: हे कर्ता, क्या आपने इस गुप्त धन के भाग्य में कोई अतिरिक्त व्यय नियत किया था जो इसने सोमिलक को भोजन के लिए दिया? ये तो अनुचित है।
3: हे कर्मन, इसमें मेरा कोई योग नहीं। पुरुष को उसके लाभ तथा हानि को प्रदान कर देना मेरा कर्तव्य है। मेरे दिए हुए फल का परिणाम आपके अधीन है।
2: अगले दिन उठकर सोमिलक ने देखा गुप्त धन आंत्रशोथ से पीड़ित है। इस कारण उस दिन गुप्त धन ने भोजन नहीं किया। फिर उस घर से निकलकर सोमिलक उपभुक्त धन के घर गया, जहां उसका विशेष स्वागत और सम्मान हुआ। उपभुक्त धन द्वारा प्रदत्त वस्त्र और भोजन से सम्मानित होकर सोमिलक एक भव्य शैया पर सो गया। रात्रि के समय उसने पुनः उन दोनों पुरुषों को देखा।
1: हे कर्ता, इसने सोमिलक के आतिथ्य में बहुत अधिक धन खर्च कर दिया। आप बतलाइए इसके ऋण का भुगतान कैसे होगा?
3: हे कर्मन, जो मैंने किया है वह मेरा कर्तव्य था। इसका परिणाम अब आपके हाथ में है।
2: प्रातः होते ही एक राज कर्मचारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया और उपभुक्त धन के हाथ में दे दिया। ये घटना देखकर सोमिलक ने मन में सोचा कि संचय रहित उपभुक्त धन ही श्रेष्ठ है।
0: धनोपार्जन की सार्थकता तो तभी होती है जब व्यक्ति उसका उपभोग करे तथा दान आदि से दूसरों को उपकृत करे। हे विधाता पुरुष, मुझे उपभुक्त धन की प्रकृति चाहिए।
2: इस कथा को सुनाकर मंथरक ने कहा,
4: मित्र हिरण्य, भोग को प्रधान मानकर तुम्हें धनहानि के विषय में दुखी नहीं होना चाहिए। कभी कभी धन के विद्यमान रहने पर भी उसे अविद्यमान ही मानना पड़ता है। धन को पाकर दान देना चाहिए अथवा उपभोग में लाना चाहिए, कभी भी संचय नहीं करना चाहिए। दान के समान कोई दूसरी निधि नहीं होती। भगवान शिव के पास धन के नाम पर केवल वृषभ नंदी हैं, फिर भी वो परमेश्वर कहलाते हैं। तुम उस खोए हुए धन की चिंता छोड़ दो मित्र।
5: हाँ मित्र हिरण्यक, मंत्रक की पुरुषवाणी पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए। उसने जो कुछ भी कहा है तुम्हारे हित के लिए कहा है। प्रिय बोलने वाले तो सुलभ होते हैं, परंतु अप्रिय और उचित बोलने वाले मित्र बहुत कम मिलते हैं।
6: मित्र मंथरक, मुझे लगता है आपका कथन सत्य है। अप्रिय होते हुए भी जो हितकारी बातों को कहते हैं

0: वे ही तो वास्तविक मित्र होते हैं।
1: मित्रों देखो, एक हिरण इधर दौड़ता हुआ आ रहा है। आप सब छुप जाएं, हो सकता है इसके पीछे कोई ब्याद आ रहा हो।
2: हाँ मित्र लघुवत्तक, ये मृग बड़ा ही कातर लग रहा है।
1: हाँ।
2: चलो चलो उसके पास चलते हैं।
1: हाँ चलो।
2: मृगराज, आप भयभीत प्रतीत होते हैं।
3: जी जी, मेरा नाम चित्रांग है। आप लोगों ने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है। सचमुच मैं भय संत्रस्त हूँ और बड़ी कठिनाइयों से बचकर आया हूँ। आप लोग मुझे अपनी शरण में लेकर कोई ऐसा स्थान बताएंगे जहाँ वो व्याध ना पहुँच सके।
1: मित्र, वो बहेलिया पर्याप्त मांस पिंडों को लेकर अपने घर चला गया है।
3: अच्छा,
1: अब कोई भय नहीं है, आप निश्चिंत हो सकते हैं।
4: उस दिन से चारों कौवा, कछुआ, चूहा और मृग तालाब के किनारे मनोविनोद करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन गोष्ठी में चित्रांग नहीं आया, सभी चिंतित हो गए।
0: मित्रों, क्या बात है, आज मित्र चित्रांग नहीं आया? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया?
1: शेर चीते के हाथ तो नहीं लग गया, या फिर किसी शिकारी के जाल में?
2: मित्र लघुपतनक, हिरण्यक और मैं उसे ढूंढने में असमर्थ हैं। हम तेज नहीं चल सकते, इसलिए तुम जाकर उसे खोजने का प्रयास करो।

0: भद्र, ये तुम्हारी क्या दशा है? ये कैसे हो गया?
1: मित्र, अब तो मेरा मृत्युकाल आ गया है। अच्छा हुआ मित्र आप आ गए। प्राणांत काल में मित्र का दर्शन सुखकारक होता है। अगर मैंने कभी भी कोई अप्रिय वचन कहा हो तो मुझे क्षमा कर देना मित्र।
0: भद्र, हम लोगों के रहते आपको इस प्रकार भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी हिरण्यक को लेकर आता हूं, आप आशान्वित रहे।
1: अच्छा,
0: अरे मित्र, ये अच्छा नहीं हुआ।
2: क्यों, क्या हुआ? क्या वहां बहेलिया आ गया?
0: नहीं, परंतु ये मंत्रक भी यहाँ चला आ रहा है। अरे ये उचित नहीं है। अगर अभी वो व्याध आ गया मैं तो आकाश में उड़ जाऊंगा। तुम विवर्ण में घुसकर आत्मरक्षा कर लोगे, चित्रांग भी तेजी से भाग जाएगा, परंतु ये मंत्रक धीरे धीरे चलकर अपने आप को कैसे बचा पाएगा?
3: क्या करूं, मैं अपने को रोक नहीं पाया। मित्र के विपत्ति की सूचना के बाद मैं कैसे रहता?
4: अभी वो चारों बातें कर ही रहे थे कि अचानक वही हुआ जिसका डर था। व्याध आ गया, सभी बच गए, पर मंत्रक कछुआ व्याध की पकड़ में आ गया। उसे धनुष की नोक पर टांग कर घर की ओर चल पड़ा। तीनों मित्रों की आंखों में आंसू बहने लगे। तभी तीनों ने एक उपाय किया। वो चित्रांग बहेलिए के मार्ग में जाकर तालाब के किनारे निर्जीव भूमि पर लेट गया। लघुपतनक उसके सिर पर बैठ गया। उसे देख व्याध मंत्रक को वहीं छोड़कर हिरण

प्रमाण लेने दौड़ पड़ा। इसी बीच हिरण्यक ने मंथरक के पाश को काट दिया। मंथरक वहां से भाग निकला। बहेलिया जब चित्रांग हिरण के पास पहुंचा तो वो भी तेजी से भाग गया। बेचारा व्याध सिर पीटता हुआ घर की ओर चल पड़ा। उस दिन से वो चारों मित्र सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इन प्रसंगों से हमें शिक्षा मिलती है कि विचारवानों को परस्पर मित्रता रखना चाहिए और मित्र के लिए सदैव प्रेम भाव रखना चाहिए। श्रोतागण, यहीं पर हमारा द्वितीय प्रकरण मित्र संप्राप्ति समाप्त होता है। अगली कड़ी में हम आपको काकोलुकियम की कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

संग्रहालय क्रम के अंतर्गत अभी आपने पंचतंत्र धारावाहिक का 8वां भाग सुना। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1513 डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। मीडियम वेव पर अब हमारा प्रसारण आरंभ होता है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में फील्ड अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान ये जानकारी सामने आई कि रेलगाड़ियों में हाल ही में हुई आग लगने की कई घटनाओं की शुरुआती जांच में असामाजिक तत्व शामिल होना पाए गए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। इस वर्ष की यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर कल भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्री समिट इवेंट का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इस कार्यक्रम में वन विभाग की 20 बाइक और एक रेस्क्यू ट्रक को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। देवास पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी और फैक्ट्री मालिक मुकेश विज को चीन से लौटते ही दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया है। और प्रदेश में अब तक 12,56,000 से ज़्यादा किसानों से 93,00,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। किसानों को 2,625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान हो रहा है, जिसमें 40 रुपये बोनस भी शामिल है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। युवाजन सुने कार्यक्रम युववाणी, योगदान हमारे जबलपुर केंद्र का है।

0: नमस्कार दोस्तों,
1: मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अंकिता
0: और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रश्मि।
1: और हम आप सभी का युवाओं को प्रेरित करने वाले हमारे खास कार्यक्रम युववाणी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
0: दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आकाशवाणी अपने 90 वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इसी तारतम्य में आकाशवाणी @90#RJNext कार्यक्रम के अंतर्गत एक तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन विगत दिवस स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जबलपुर में किया गया
1: और इस प्रतियोगिता के विजेता रहे हमारे दोस्त पीयूष चौधरी आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। पीयूष, हम आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। कैसा लग रहा है आपको हमारे कार्यक्रम में?
2: बहुत बहुत धन्यवाद अंकित और रश्मि। मैं युवाणी कार्यक्रम को रेगुलरली फॉलो करता हूँ और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर

0: कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
1: वाह पीयूष, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पूछते हैं आपसे आज के दो प्रश्न। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, सिंहस्थ कुंभ मेला हर 12 वर्ष में किस राज्य में आयोजित होने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाका किस देश के मूल निवासियों का पारंपरिक नृत्य है? इसी के साथ आइए शामिल करते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे लिया गया है फिल्म सितारे जमीन पर से और आवाज दी है सिद्धार्थ महादेवन, शंकर महादेवन और दिव्या कुमार ने।

0: दोस्तों, कभी सोचा है भीड़ का हिस्सा बने रहे तो हम क्या पाएंगे? नए रास्तों पर चलने से ही तो पहचाने जाएंगे।
1: जी हाँ दोस्तों, और मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो बड़ी ही गलत बात है।
0: दोस्तों, जब एक बार एक मशहूर

0: पेंटर से पूछा गया कि उनकी सबसे बेहतरीन पेंटिंग कौन सी है, तब उन्होंने एक खाली कैनवस की तरफ इशारा किया और कहा, ये, क्योंकि इसमें अभी संभावनाएं अनंत है।
1: वाह अंकिता, कितनी गहरी बात है। दोस्तों, हम और आप भी उस खाली कैनवस की तरह ही तो हैं। ज्यादातर लोग वही पुरानी तस्वीर बनने की कोशिश करते हैं जो सदियों से चली आ रही है, वही 9 to 5 जॉब वाले सेफ रास्ते।
2: पर कुछ लोग होते हैं जो किसी बनी बनाई तस्वीर का इंतजार नहीं करते, बल्कि खुद एक नया मास्टरपीस तैयार करते हैं, और ऐसे ही जुनून का नाम है स्टार्टअप।
0: जी हाँ दोस्तों, जैसे उस पेंटर ने खाली कैनवस में भविष्य देखा, वैसे ही एक एंटरप्रेन्योर मुश्किलों में मौका देखता है। स्टार्टअप एक नया और इनोवेटिव बिजनेस आइडिया होता है जो हमारी प्रॉब्लम्स का एक यूनिक सॉल्यूशन देता है।
1: दोस्तों, हमारे बीच से कई लोगों ने वही सदियों पुरानी रैट रेस का हिस्सा बनने के बजाय अपनी रेस खुद डिजाइन करी, और आज दुनिया उन्हें सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह जानती है।
0: सही कहा रश्मि, और इसी बदलाव का समर्थन देने के लिए सरकार स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के तहत फंडिंग और टैक्स बेनिफिट से युवाओं को स्टार्टअप की राह पर चलने के लिए प्रेरित कर रही है। स्टार्टअप इंडिया इंक्यूबेशन सेंटर्स, मुद्रा लोन और अटल इनोवेशन मिशन जैसे प्रयासों से सपनों को पंख दिए जा रहे हैं।
2: लेकिन दोस्तों, स्टार्टअप रातों रात खड़ा नहीं होता, इसके लिए डेली बेसिस पर कुछ आदतें अपनानी होगी।
1: जैसे ऑब्जर्वेशन और क्रिटिकल थिंकिंग, हर चीज को क्यों और कैसे के नजरिए से देखें, क्योंकि हर प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है।
0: और लर्निंग और नेटवर्किंग, नए स्किल्स, डिजिटल टूल्स और मार्केट ट्रेंड को समझें, साथ ही ऐसे लोगों से मिलिए जो आपके विजन को समझे और उसे और बेहतर बनाए।
2: और साथ ही एक्सपेरिमेंट और रेजिलियंस, एक्सपेरिमेंट करें और फेलियर से डरे नहीं, बल्कि उसे एक फीडबैक की तरह लीजिए।
1: दोस्तों, जो चली आ रही है सदियों से, उस लकीर को मिटाकर तो देखो।
2: दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी, बस एक कदम उठाकर तो देखो।
0: क्योंकि किनारे पर खड़ी कश्ती हमेशा महफूज ही रहती है, पर कश्तियां किनारों के लिए नहीं, लहरों से लड़ने के लिए बनती है।
1: इसी के साथ आइए शामिल करते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म हिचकी से ये गीत।

0: दोस्तों, कभी कभी इतिहास एक ऐसा दीपक जलाता है जिसकी लौ पीढ़ियों तक रास्ता दिखाती है, और हिंदी साहित्य के आकाश में ऐसे ही एक दीपक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी।
1: जी हाँ दोस्तों, जिस तरह माली बिखरे हुए पौधों को तराशकर एक सुंदर उपवन बना देता है, वैसे ही हिंदी साहित्य के बगीचे को संवारने वाले शिल्पकार थे आचार्य द्विवेदी।
0: आचार्य द्विवेदी ने भटकती हुई हिंदी भाषा को एक सही दिशा दिखाई और बिखरे हुए शब्दों को विचारों की गंगा में बदल दिया। दोस्तों, आचार्य द्विवेदी का जन्म 1864 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में हुआ था। साधारण परिवार और सीमित संसाधन होने के बावजूद उनकी जिज्ञासा हमेशा से ही असाधारण थी।
1: आचार्य द्विवेदी बचपन में कई बार दूसरों से किताबें उधार लेकर आते थे और रात भर उनकी हाथ से नकल उतारते थे, ताकि किताब लौटाने पर भी वह उसके अंदर का ज्ञान अपने पास सुरक्षित रख सके।
0: उन्होंने हमेशा स्वाध्याय को अपना सबसे बड़ा शिक्षक बनाया और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, मराठी और अंग्रेजी पर महारत हासिल की। आचार्य द्विवेदी ने अपने करियर की शुरुआत रेलवे विभाग में नौकरी से की, लेकिन उनका असली सफर तब शुरू हुआ जब वे सरस्वती पत्रिका के संपादक बने, और 1903 से 1920 तक सरस्वती सिर्फ एक पत्रिका नहीं बल्कि हिंदी साहित्य का मार्गदर्शक बन गई।
1: द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा को सरल, स्पष्ट और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्हीं के मार्गदर्शन में मैत्री शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी जैसे महान साहित्यकार उभरे। उन्हें द्विवेदी युग का प्रवर्तक कहा जाता है, एक ऐसा काल जिसमें हिंदी साहित्य को आधुनिकता और सामाजिक चेतना से जोड़ा।
0: 21 दिसंबर 1938 को आचार्य द्विवेदी का निधन हुआ, लेकिन उनके विचार और उनके शब्द आज भी जीवित हैं, हर उस पंक्ति में जो समाज को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, आचार्य द्विवेदी हमें सिखाते हैं कि सीमित संसाधनों के बावजूद असीम ऊंचाइयां पाई जा सकती हैं अगर हमारे अंदर सीखने की लगन और समाज के प्रति जिम्मेदारी हो। इसी के साथ आइए सुनते हैं फिल्म उरी से शांतनु सुदामे और शाश्वत सचदेव की आवाज में यह गीत।

0: दोस्तों, अभी कुछ देर पहले हमने आपसे स्टार्टअप भविष्य को लेकर बात की, जिसमें हमने जाना किस तरह नए बिजनेस सेटअप करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार हर क्षेत्र, हर नई सोच और हर नए प्रयास के विकास की ओर ले जाने का कार्य हमारे भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है।
1: अच्छा, अब किस नए प्रयास की बात कर रही हो तुम अंकिता?
2: रुको पीयूष, मैं बताती हूँ। यहाँ हम बात कर रहे हैं कौशल उन्नयन के बारे में। आज बदलते परिवेश के कारण हम सभी की लाइफस्टाइल में, काम करने के तौर तरीकों में भी समय के साथ साथ कई बदलाव आए हैं।
1: बिल्कुल सही कहा रश्मि। जैसे पहले हाथों से सारे लिखा पढ़ी के काम होते थे, आज टेक्नोलॉजी के चलते कंप्यूटर, मोबाइल फोन के द्वारा हमारे काम और भी आसानी से होने लगे हैं।
0: दोस्तों, कौशल उन्नयन का मतलब ही है अपने काम करने की काबिलियत को और बेहतर बनाना, नई चीजें सीखकर या पुराने काम में सुधार करके खुद को और सक्षम बनाना।
1: इससे युवाओं को रोजगार पाने के और सुनहरे अवसर मिल सकेंगे, साथ ही हर युवा नए स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए एक सही कदम उठाने योग बन पाएगा।
2: और दोस्तों, इसलिए इस दिशा में सरकार के द्वारा कई कदम भी उठाए गए हैं, जैसे स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और डिजिटल ऑनलाइन पहल जैसे कई प्रोग्राम्स।
0: और साथियों, इन कार्यक्रम का सबसे ज्यादा फायदा हम युवाओं को ही होगा। घर बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हमें हमारी स्किल्स को बढ़ाने का मौका जो मिल रहा है, बस जरूरत है इस ओर ध्यान देने की।
2: जी हाँ दोस्तों, और इसलिए हम सभी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने शेड्यूल में से रोज थोड़ा सा समय निकालकर अपनी स्किल्स को डेवलप करने पर ध्यान दीजिए। इसी के साथ आइए शामिल करते हैं हेशम अब्दुल वाहब की आवाज़ में फिल्म द गर्लफ्रेंड से यह गीत।

0: साथियों, कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है शुरुआत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को जानने का। आज का हमारा पहला प्रश्न था, सिंहस्थ कुंभ मेला हर 12 वर्ष में किस राज्य में आयोजित होने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश के उज्जैन में हर 12 वर्ष बाद सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित होता है। इसमें लगभग 30 करोड़ श्रद्धालु शामिल होते हैं।
1: और दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न था, हाका किस देश के मूल निवासियों का पारंपरिक नृत्य है? इसका उत्तर है न्यूजीलैंड। दोस्तों, हाका न्यूजीलैंड देश के माओरी समुदाय का पारंपरिक नृत्य है। ये अक्सर युद्ध, उपलब्धियों या मेहमानों के स्वागत के समय किया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ अब हम आज के कार्यक्रम की समापन की ओर पहुंच चुके हैं।
0: अगली मुलाकात का वादा करते हुए मैं आपकी रेडियो दोस्त अंकिता,
1: और मैं आपकी रेडियो दोस्त रश्मि,
2: और मैं आपका रेडियो दोस्त पीयूष,
1: आपसे अब इजाजत लेते हैं। हम मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में नई चर्चाओं के साथ।
0: तब तक दयालु बने,
2: जिज्ञासु बने,
1: और दुनिया में अपनी उज्जवल रोशनी बिखेरते रहें।
3: नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। योगदान हमारे जबलपुर केंद्र का था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी, वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।

अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं नीति मोहन और पपून के गाए गीत से। तुमको मेरी कसम फिल्म के लिए इस गीत को लिखा है श्वेता बोथरा ने और संगीतकार प्रतीक वालिया।

इस गीत के बाद लीजिए सुनिए द डिप्लोमेट फिल्म का गीत। वरुण जैन, रोमी और अनुराग सैकी ने इस गीत को गाया है। कौसर मुनीर के लिखे गीत को संगीत दिया है अनुराग सैकी ने।

मिस्टर आज़ाद। आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं। इला अरुण और कुमार सानू ने इस गीत को गाया है। गीतकार हैं इंदीवर और संगीतकार बप्पी लहरी।

अगला गीत AR रहमान की आवाज़ में है, इरशाद कामिल का लिखा हुआ है और संगीत AR रहमान ने दिया है। फिल्म है तेरे इश्क में।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नई रोशनी फिल्म का गीत, गीतकार राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार रवि।

0: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश, समय है अंतराल का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है और रिफाइनरी संयंत्र मांग को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। एलपीजी का उत्पादन बढ़ा दिया गया है और प्रतिदिन रिफाइनरी संयंत्र में लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी का उत्पादन हो रहा है। भारत ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज आयोजित 11वीं वार्षिक ब्रिक्स आतंकवाद रोधी कार्य समूह की बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आतंकवाद को पनाह देने और समर्थन करने वालों को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार की रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम योजना के अंतर्गत मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने का काम त्वरित गति से चल रहा है। अब तक 10,19,000 से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, जिनमें सर्वाधिक भोपाल शहर वृत्त में 4,38,000 से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह

0: तोमर ने बताया है कि समाधान योजना के तहत 15 मई तक 29,81,000 बिजली उपभोक्ताओं ने सरचार्ज में छूट का लाभ लिया है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 3 नवंबर को समाधान योजना 2025-26 की शुरुआत की गई थी, जो कि 15 मई तक लागू थी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: सबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
2: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
3: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शगुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
2: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
3: अक्ति तिहार के पावन दिन माँ उमंग एनसीईआरटी सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
2: उमंग एनसीईआरटी के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
3: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
2: जी,
3: अगला संदेश हमें मिला है
2: विलेज तेहका बजरंग चौक से चौलेश कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग,
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
2: एनसीईआरटी के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
3: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
2: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में। और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
2: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
3: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की।
2: जी,
3: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं।
2: जी,
3: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट।
2: जी,
3: तो शुरू करें?
2: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत।
3: जी
2: श्रोताओं, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
3: जी श्रोताओं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
2: जी
3: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
2: जी हाँ श्रोताओं, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
3: जी शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
2: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
3: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
2: श्रोताओं, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का

0: कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
1: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता
0: जी।
1: यही वो अनोखी जगह है जहाँ विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं
0: जी।
1: अद्भुत बात यह है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
0: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरिंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन यानी शोला फॉरेस्ट।
1: श्रोताओं, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊँचे नहीं होते।
0: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
1: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओ, आइए जानते हैं शोला वन के बारे में कुछ और बातें। शोला वन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
0: इसीलिए शोला वनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
1: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
0: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं। इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृ वृक्ष कहा जाता है क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
1: तो श्रोताओं, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृवृक्ष किसे कहते हैं।
1: 8800-440-559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

0: कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना

0: होता है।
1: धीरे धीरे चिड़िया चिड़े और कौवे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पड़ोसी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। श्रोता, अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी। इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है जंगल के साथी।
2: इस कार्यक्रम में जंगल के पशु पक्षियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को एक सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन में हो तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।

0: दादी माँ दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूँ।
2: आह,

0: ध्यान लगाकर सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी माँ आप सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ, सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई, एक हिरन, एक हिरन भाई, एक हिरन, एक हिरन भाई, एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई, एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई, एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई, एक हिरन।
1: दादी माँ, दादी माँ, क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
3: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं। अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू, तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई, एक खरगोश, एक खरगोश भाई, एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?

0: खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे? मेरे साथ खेलोगे?
0: हाँ, क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: दादी माँ, दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
3: राम जी, अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
1: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
3: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
1: बादल देखे, फिर दादी माँ?
3: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
1: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
3: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
1: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
1: दादी माँ, दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
3: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी?
1: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
3: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
3: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
1: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम। मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम। खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
3: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
6: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।

0: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
1: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
2: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी। फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
1: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
2: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
1: हाँ। अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़। इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
2: बिल्कुल सही कहा अटकू।
3: इसे काट। भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
2: अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं। चल चल।
0: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उसे देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, पेड़ उनसे बोला,
4: रुको रुको रुको रुको, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
1: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
2: हाँ अटकू चल आगे चलते हैं।
0: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे,
2: अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़।
1: अरे वाह क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
0: वो उसे काटने लगे।
3: काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें मैं कटहल दूंगा।
1: अच्छा ठीक है
2: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
0: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
5: ना, क्या मिलेगा काट कर मुझे? अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ न होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें?
2: हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
0: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया फल सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।
6: अरे वाह अटकू मटकू,
0: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
1: पेड़ हमारे
2: दोस्त हैं।
1: जीवन में हरियाली लाओ
2: पेड़।

0: लगाओ भीड़ लगाओ।
1: पेड़ हमारे दोस्त, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: उमंग NCERT का ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। प्रेम तपस्या फिल्म के गीत से शुरुआत कर रहे हैं। शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

स्काई फोर्स फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विशाल मिश्रा की आवाज़ में। इरशाद कामिल के लिखे गीत को संगीत दिया है तनिष्क बागची ने।

तवायफ़। लीजिए इस फिल्म का गीत सुनिए आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में। हसन कमाल ने गीत लिखा है, संगीतकार हैं रवि।

श्रोता, उस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से फिल्म संगीत कार्यक्रम। अगला गीत नादानिया फिल्म से है। सचेत टंडन, असीस कौर और सचिन जिगर ने इस गीत को गाया है। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार सचिन जिगर।

मिसेज फिल्म का गीत सुनिए विद्या गोपाल की आवाज़ में। अरुण कुमार पल्लवी भारद्वाज हुसैन ने इस गीत को लिखा है। संगीतकार हैं फैजान हुसैन।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए लेकिन फिल्म का गीत सुरेश वाडकर की आवाज़ में, शब्द रचना गुलजार की और संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकर।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कुवन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंपों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेक और नाथुला दर्रों के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। भारत ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज 11वीं वार्षिक ब्रिक्स आतंकरोधी कार्यसमूह की बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आतंकियों को पनाह देने और समर्थन करने वालों को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता पर बल दिया। चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। ये सम्मेलन 28 से 31 मई तक नई दिल्ली में होना था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। गुजरात पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज़।

विवरण। पहले आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। सुर्खियों में ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8 बजे। आपकी फरमाइश का समय है 10 बजे। 10:30 पर राग रजनी में आज हम आपको सुनवाएंगे पंडित उल्हास कसालकर का ख्याल गायन, राग होगा यमन कल्याण। शाम 7:21 पर भोपाल से प्रसारित ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम में सुनेंगे अरुणा सोम कुमार से की गई भेंट वार्ता, पोषण का खजाना, मिलेट्स या श्री अन्न। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी भोपाल से सुबह के नियमित कार्यक्रमों के अलावा 7:20 पर आप सुनेंगे सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सुरमई सवेरा ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 8:30 पर। गांधी चर्चा का समय है 9:15। जिले की चिट्ठी सुनवाएंगे 10 बजे। 10:05 पर महिला संसार में सुनिए सजीव फोनिन कार्यक्रम आओ सखी बात करें। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में 10:30 पर सुनेंगे पंडित साजन मिश्र का ख्याल गायन, राग है विलास खानी तोड़ी। ये थे आकाशवाणी भोपाल से कल सुबह प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। ग्यारह बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण किया जाएगा। इसमें 11 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। आपकी फरमाइश का समय रहेगा 12 बजे, दोपहर 2:30 और रात्रि 10 बजे। संग्रहालय से क्रम के अंतर्गत दिन में 12:30 पर सुनिए पंचतंत्र धारावाहिक की 9वीं कड़ी। छतरपुर केंद्र की प्रस्तुतियों में हम आपको सुनवाएंगे 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। ये सभी प्रस्तुतियां हमारे छतरपुर केंद्र की होंगी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है शाम 6 बजे। कल रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। खेल जगत में 9:30 पर कल हम आपको सुनवाएंगे देवेंद्र खुराना की वार्ता, अंडर-18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2026। दस बजकर 30 पर राग रजनी में सुनिए राग यमन में पंडित साजन मिश्र का ख्याल गायन। कल शाम 7:21 पर भोपाल से प्रसारित ग्राम सभा में आकर्षण रहेगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। ये थे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। इसी के साथ ये कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पूरी कर लौटे, भारत को मिली 40 अरब डॉलर निवेश की सौगात। देश में पेट्रोल डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार, 3 दिन में 1,34,00,000 सिलेंडर की डिलीवरी। भोपाल में कल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्री समिट का आगाज, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री करेंगे शुभारंभ। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की कई विभागों की समीक्षा, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू करने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पूरी कर आज दिल्ली लौट आए हैं। यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यह 5 दिवसीय यात्रा भारत के लिए बड़ी कामयाबी लेकर आई है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर, एआई, ग्रीन हाइड्रोजन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों की 50 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें करीब 40 अरब डॉलर के नए निवेश की प्रतिबद्धताएं मिली हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी वीरभूमि पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा कि राजीव गांधी का दूरदर्शी नेतृत्व और देश के प्रति समर्पण पार्टी को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार मौजूद हैं और सभी रिफाइनरी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि पिछले 3 दिनों में 1,34,00,000 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी की जा चुकी है।
4: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हज़ार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
3: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्रालय में पशुपालन, स्कूल शिक्षा, परिवहन विभाग, जनजातीय कार्य और सहकारिता विभाग की एक एक कर समीक्षा बैठक ली। डॉक्टर यादव ने कृषि, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करने के निर्देश दिए। वहीं परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना शुरू करने के निर्देश दिए गए। इस योजना के पहले चरण में 1,164 मार्गों पर 5,206 बसें चलाई जाएंगी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। यह बोर्ड भारत सरकार के राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया है। बोर्ड में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही सीआईआई, फिक्की जैसे प्रमुख व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। देवास पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित और फैक्ट्री मालिक मुकेश विज को चीन से लौटते ही दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया है। बीते 14 मई को देवास के टोककला इलाके में हुए इस भीषण ब्लास्ट में 6 मजदूरों की मौत हो गई थी और 20 से ज्यादा गंभीर रूप से झुलस गए थे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
5: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
3: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की जल स्रोत पूजन एवं गंगा कलश यात्रा के पोस्टर का आज विमोचन किया। ये यात्रा 25 मई से प्रदेश के सभी जिलों में निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण को जन भागीदारी का अभियान बताते हुए लोगों से जल स्रोतों की रक्षा में आगे आने की अपील की है।
6: जल संरक्षण को लेकर के जल गंगा संवर्धन अभियान 30 जून तक चलने वाला है। ऐसे में गंगा दशमी के दिन पूरे प्रदेश में एक साथ सभी कुएं, बावड़ी, नहर, तालाब इत्यादि स्थानों पर श्रमदान करते हुए बड़ा अभियान लिया गया है। सभी संस्थाओं को जोड़

0: कल सभी पंचायत सभी नगरीय निकाय हर स्थान पर जलगंगा संवर्धन का बड़ा काम करने वाले हैं। तो इस सबसे जुड़े हुए अभियान के लिए आम जनता से भी आह्वान करता हूं कि वो सब जुड़े।
1: अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर कल भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्री समिट इवेंट का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इस कार्यक्रम में वन विभाग की 20 बाइक और एक रेस्क्यू ट्रक को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कार्यक्रम में जैव विविधता संरक्षण और बिग कैट संरक्षण पर विचार विमर्श के साथ ही भारत में चीता पुनर्स्थापन अभियान पर विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कंप्यूटर ड्रॉ के जरिए इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1000 यात्रियों का चयन किया है। ये यात्री जून से अगस्त के बीच लिपुलेख और नाथुला दर्रों के रास्ते 20 जत्थों में रवाना होंगे और हर जत्थे में 50 यात्री होंगे। नई दिल्ली में आज 11वीं ब्रिक्स आतंकवाद रोधी कार्य समूह की बैठक में भारत ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय के सचिव सिबी जॉर्ज ने आतंकवाद को पनाह देने वालों को जवाबदेह ठहराने और आतंकी वित्त पोषण पर अंकुश लगाने की जरूरत पर जोर दिया। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI ने ई सिगरेट तस्करों पर बड़ा शिकंजा कसा है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में एक साथ छापेमारी कर 3 लाख इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पकड़ी गई हैं, जिनकी कीमत 120 करोड़ रुपये बताई जा रही है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक ये सारा माल चीन से चोरी छिपे मंगवाया गया था। भारत में साल 2019 से ही ई सिगरेट और इस तरह के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स निकोटीन उत्पादों पर पूरी तरह से पाबंदी है। इन दिनों बालाघाट की सुनीता सिहोरे की खूब चर्चा है। उनके घर में 70 तरह के देशी बीजों का अनोखा खजाना है, जो उन्होंने खुद जमा किया है। आजीविका मिशन की बीज सखी सुनीता ये बीज किसानों को मुफ्त देती हैं और ये बीज कम पानी कम खाद में भी अच्छी पैदावार देते हैं। सुनीता जैसी महिलाओं की बदौलत रासायनिक खेती की आंधी में खो चुके देसी बीज एक बार फिर खेतों में लौट रहे हैं। अब पूरे प्रदेश में 454 बीज सखियां और 29 जिलों में 99 बीज बैंक तैयार हो चुके हैं। अब रुक करते हैं क्रिकेट का। IPL में अब से कुछ ही देर में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। गुजरात पहले ही प्लेऑफ में जगह बना चुकी है, जबकि चेन्नई अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए जूझ रही है। अब बात करते हैं मौसम की। नौतपा शुरू होने से पहले ही प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में आ गया है। खजुराहो में 47.4 डिग्री तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर बन गया है, जबकि राजधानी भोपाल में भी पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। गर्मी का असर इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी पड़ रहा है। वन विहार नेशनल पार्क में शेर, बाघ और तेंदुओं के लिए कूलर, पर्दे और ग्रीन नेट लगाए गए हैं। वहीं सतना, रीवा और टीकमगढ़ समेत 6 जिलों में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर लोगों को मोबाइल पर चेतावनी संदेश भेजे जा रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर और अनूपपुर में आज जनगणना 2027 कार्य के प्रचार प्रसार के लिए जनगणना प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शहडोल जिले में नाव एवं मोटरबोट में निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों को बैठाने पर रोक के साथ कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं। सागर नगर निगम ने CM हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 98.32 वेटेज स्कोर प्राप्त कर प्रदेश की 16 नगर निगमों में प्रथम स्थान हासिल किया है। सीहोर जिला अस्पताल में महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग ने एक कदम सुपोषण की ओर अभियान के तहत बच्चों को पोषण टोकरियां बांटी गईं। झाबुआ खनिज विभाग के अमले ने जिले में सघन जांच अभियान चलाकर अवैध रूप से खनिज ले जा रहे 5 वाहनों को जब्त किया है। छिंदवाड़ा वनवृत्त में लक्ष्य का 50% से अधिक तेंदुपत्ता संग्रहण पूरा हो चुका है और शिवपुरी जिले के ग्राम सिरसोना और टीला में फार्मर रजिस्ट्री अभियान के अंतर्गत कैंप का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पूरी कर लौटे। भारत को मिली $40 अरब निवेश की सौगात। देश में पेट्रोल, डीजल और LPG का पर्याप्त भंडार। 3 दिन में 1,34,00,000 सिलेंडर की डिलीवरी। भोपाल में कल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्री समिट का आगाज। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री करेंगे शुभारंभ। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की कई विभागों की समीक्षा। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू करने के दिए निर्देश। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। नमस्कार।

ग्राम लक्ष्मी सुनविवारी हमारी सवे बिन्ना जिज्जी काकी चाची फुआ मौसी हरोखों हमारी मने पूनम बहन की प्रेम भरी नेह भरी राम राम। हम उम्मीद करत हैं कि सभी जने खूब नौनी हुओ और देखो का है कि मौसम बहुत ही गर्म हो रहा है और तो और पारा 48 तक के पार पहुँच गए है। मैंने सूर्य देवता अपने तीखे तेवर दिखा रहे हैं। सो हम तो जो ही कह चाहते हैं कि दिन भर पर्याप्त पानी पियो, शरीर को ठंडो रखो, दोपहर के समय में लंबे समय तक धूप में ना जाओ, घर में रहो और हल्के वजन के रंग के सूती कपड़ा पहनो, पानी के ठंडे पेय पदार्थन को लगातार पानी के संगे संगे ठंडे पेय पदार्थन को लगातार सेवन करो ताकि शरीर में ठंडक बनी रहे। सो जो तो हती बातचीत अपन और भी कर हैं, लेकिन सबसे पहला सुन लेते हैं जो देवी गीत संध्या कौशिक को गाओ भाव।

0: बुंदेली समाचार।
1: सबसे पहले बात पीएम मोदी के स्वदेश लौटने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पूरी करके आज दिल्ली लौट आए। इस दौरा में उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली को दौरा करो। इटली में श्री मोदी ने उत्तर की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करी और दो ही देशों ने अपने संबंधन को विशेष रणनीतिक साझेदारी बढ़ावे को फैसला करो है। और अब बात पीएम मोदी के सम्मान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल रोम में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के सर्वोच्च सम्मान FAO ग्रीन एग्रीकोला मेडल से नवाजोगो। जो सम्मान उन्हें किसानन के कल्याण, खाद्य सुरक्षा और श्रीयन यानी कि मिलेट्स को वैश्विक पहचान दिलावे के लाने दोगो। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कही है कि जो सम्मान भारत की कृषि नीतियन की वैश्विक स्वीकृति है। और अब बात रेल मंत्री की सुरक्षा बैठक की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में फील्ड अधिकारियों के संग अहम सुरक्षा बैठक करी है। बैठक में ट्रेनन में आग लगवे के हालिया घटनाओं पर चर्चा करी गई। शुरुआती जांच में असामाजिक तत्वों को हाथ होबे की बात भी सामने आई है। इन मामलों की RPF सक्रियता से जांच कर रही है। जांच के संगे संगे रेलवे नेटवर्क में CCTV कवरेज बढ़ावे और AI निर्धारित निगरानी तंत्र लगावे पे भी जोर दो जा रहा है। और अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के मौके पर कल भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्री समिट इवेंट को शुभारंभ करो जय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इस कार्यक्रम में वन विभाग की 20 बाइक और एक रेस्क्यू ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर हैं। और अब बात राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड को गठन करो गयो है। जो बोर्ड भारत सरकार के राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति के लाने बनाओ गयो है, जिसे प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बेहतर वातावरण बन पावे और निर्यात को सोई बढ़ावा मिल पावे। और अब बात कर रहे थे समाधान योजना की। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने बताई है कि समाधान योजना में 15 मई तक 29,81,000 बिजली उपभोक्ताओं ने सरचार्ज में छूट को लाभ लो है। उन्होंने बताई है कि पिछले साल 3 नवम्बर को समाधान योजना 2025-26 की शुरुआत करी गई थी, जो योजना 15 मई तक लागू रहेगी। अब बात कर लेते हैं देवास ब्लास्ट के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की। देवास पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के मामला में पुलिस ने मुख्य आरोपी फैक्ट्री मालिक मुकेश विज को चीन से लौटते ही दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लो है। बीती 14 मई को देवास के टोंक कला इलाका में भय ई भीषण ब्लास्ट में 6 मजदूरों की मौत हो गई थी और 20 से ज्यादा गंभीर रूप से झुलस गए थे। और अब बात कर रहे थे RTI के तहत दाखिला लेबे की। प्रदेश में RTI के तहत दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी कल जारी करी गई। इसमें 11,485 बच्चन को उनकी पसंद के प्राइवेट स्कूलन में मुफ्त दाखिला मिलो। जे बे बच्चा हते जिन्हें पहले चरण में स्कूल नहीं मिल पाओ हतो, ई तरह से जा साल RTI के तहत मुफ्त दाखिला पावे वाले बच्चन की संख्या 1,17,000 से भी ज़्यादा हो गई है। और अब बात कर लेते हैं टुषा शर्मा केस की CBI जांच की। भोपाल की चर्चित मॉडल टुषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में कल जिला अदालत ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग को खारिज कर दो है। इसके बीच प्रदेश की सरकार ने मामला की जांच सीबीआई से करवाबे के लाने केंद्र को पत्र लिखवे को फैसला करो है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टुषा के परिजनों से मिलकर निष्पक्ष जाँच को भरोसा सोई दिलाओ है। और अब बात कर रहे थे प्रदेश में गेहूँ की खरीदी की। प्रदेश में अब तक 12,56,000 से ज़्यादा किसानों से 93,00,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा गेहूँ खरीद हो जा चुका है। किसानों को 2,625 रुपया प्रति क्विंटल की दर से भुगतान हो रहा है, जी में 40 रुपया बोनस भी शामिल है। अब तक 19,423 करोड़ रुपया किसानों के खातन में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश की सरकार ने गेहूँ खरीदी की अंतिम तारीख 23 मई से बढ़ा के 28 मई कर दी है। और अब मौसम की बात कर लेते हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी को कहर जारी है। कल 16 शहरों में पारा 44 डिग्री के भी पार पहुंच गयो है। खजुराहो सबसे ज़्यादा तपो, जिते तापमान 47.4 डिग्री तक पहुंच गयो। उतई मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया, निवाड़ी इके समेत 7 जिलों में तेज लू को रेड अलर्ट जारी करो हो तो, और 23 मई तक गर्मी से राहत मिलबे के कोई भी आसार नहीं है। चलत बात कर लेते हैं IPL के मैच की। IPL में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स

0: और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच खेलो जा रहा है। गुजरात पहले ही प्लेऑफ में जगह बना चुकी है, जबकि चेन्नई अंक तालिका में चौथे स्थान के लाने जूझ रही है। इसके संग ही बुंदेली समाचार समाप्त है।
1: बुंदेली समाचार।
0: बैनहरों, हमारी सरकार बैनन के भले के लाने कई सारी योजनाएं चला रही है। लखपति दीदी योजना भारत सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनावे और उनकी पारिवारिक आय को कम से कम 1,00,000 रुपया सालाना तक पहुंचावे की एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसके लाने महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, आसान लोन और बाजार तक पहुँच प्रदान करी जात है। योजना में कौशल विकास मने महिलाओं को कृषि, डेयरी, हस्तशिल्प, ड्रोन संचालन और आईटी जैसे क्षेत्रन के लाने प्रशिक्षित करो जात है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं की आय बढ़ावे के लाने उन्हें 5,00,000 तक के लोन प्राप्त करवे में सहायता सुई दई जात है। और योजना के तहत 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनावे को लक्ष्य रखो गो है। और ई के लाने आवेदक महिलाओं को कौनो न कौनो स्व सहायता समूह या फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ो हो वो भी जरूरी है। और आय के मापदंड के आधार पर लखपति दीदी वो महिला मानी जात है जी की पारिवारिक वार्षिक आय 1,00,000 रुपया से भी ज्यादा होवे। और ई के लाने आवेदन करवे के लाने दस्तावेजन की सूची में आधार कार्ड, वोटर आईडी, आय और मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता को विवरण, पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जैसी जानकारियां शामिल हैं। सो आप और भी अगर ई के लाने एलिजिबल हो तो आप और आंगनबाड़ी केंद्र या ग्राम पंचायत कार्यालय से संपर्क करके आवेदन कर सकती कर सकती हो। और चलो बातचीत तो जो हो गई और अब अपन सुन लेते हैं जो दादरा रुद्र दत्त दुबे को गाँव भाव।

0: बैनाहरों हमाई आपकी अपन सभी जनों की सुबह की शुरुआत चाय की चुस्किन के संगे होत है। लेकिन जो चाय हमाई आपके अपन सभी जनों के दिनचर्या को हिस्सा बन गई और ई किलाने हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाओ जात है। ई को उद्देश्य है चाय के लंबे इतिहास, गहरे सांस्कृतिक महत्व और ई के सतत उत्पादन और उपभोग के बारे में वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ावो। जा दिन को मनाबे की शुरुआत पहली बेर भई थी 2005 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रस्ताव के बाद पहलो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस नई दिल्ली में आयोजित करो गो हो। पहले चाय उत्पादक देशन में ई खो 15 दिसंबर को मनाओ जात थो, लेकिन बाद में संयुक्त राष्ट्र ने ई खो आधिकारिक तौर पर 21 मई को घोषित करो। ई खो मनाबे को उद्देश्य चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकन के कल्याण, निष्पक्ष व्यापार और सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों के प्रति ध्यान आकर्षित करवो। दुनिया भर में लाखन परिवारन की आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में चाय उद्योग के योगदान को सम्मान करवो भी ई में शामिल है। तनाव कम करवे और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनावे में चाय के गुणन को उजागर करवो भी ई दिना के महत्व को बतात है। सो फिर देर काय बात की है, आप और भी अपनी पसंदीदा चाय को प्याला लेके ई दिन को मनाओ। सो चलो अब आपको सुनवा देते हैं एक बड़ी अच्छी जानकारी हम आज लेके आए हैं। कहे कि श्रीयन मैंने मिलेट्स जो होते हैं पोषण को खजाना मैंने सुपर फूड कहे जाते हैं, जे फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और आवश्यक खनिजन के पावर हाउस हैं। सो ना केवल मानव स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं बल्कि पर्यावरण और देश के छोटे किसानों की समृद्धि के लाने भी बेहद फायदेमंद है। सो पोषण को खजाना या श्रीयन ई विषय पर अपन सुनत हैं भेंट वार्ता विशेषज्ञ हैं अरुणा सोमगुवर और इनसे बातचीत करी है अंशु तिलेठे बहन ने।
1: बहनों नमस्कार। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है और पूरे परिवार की सेहत की जिम्मेदारी हमारी गृहिणियों पर, हमारी बहनों पर होती है। आज हमने स्वास्थ्य को लेकर ही भेंटवार्ता का विषय चुना है। हमारी बहनें ये बात अच्छे से जानती हैं कि मिलेट्स या श्री अन्न कितने महत्वपूर्ण हैं हमारी सेहत के लिए, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो आज हम ऐसा ही कुछ विषय लेके आए हैं, पोषण का खजाना मिलेट्स या श्री अन्न। हमारी आज के इस विषय की विशेषज्ञ हैं श्रीमती अरुणा सोमकुमार, आप पोषण विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन में। अरुणा जी आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार बहनों।
1: जैसा कि हमने विषय लिया है पोषण का खजाना मिलेट्स या श्री अन्न, तो सबसे पहले हमारी बहनें, हमारे श्रोता यही जानना चाहेंगे कि मिलेट्स की क्या खूबियाँ हैं और यह शरीर के लिए क्यों फायदेमंद है।
2: बहनों मिलेट्स में कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, पोटेशियम, फाइबर आदि तत्व होते हैं। मिलेट्स शरीर में स्थित अम्लता को दूर करता है। इसमें विटामिन B3 भी होता है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। यह थायराइड, यूरिक एसिड, किडनी, लीवर, श्वास और अग्नाशय से संबंधित रोगों से लाभदायक होता है। मिलेट्स पाचन तंत्र में सुधार करने में भी मदद करता है। मिलेट्स में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट शरीर में फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करता है और दैनिक आहार में मिलेट्स का सेवन करके मोटापा, मधुमेह, हृदय और कैंसर जैसे रोगों से भी बचाव किया जा सकता है। चावल और आटे से बने व्यंजनों की जगह अगर आप मिलेट्स को हर घर में यूनिट कुक हाउस में शामिल करते हैं तो मोटे अनाजों में जिन्हें उच्च पोषण मूल्य, स्वास्थ्य लाभ और सरलता से उगने के कारण अनाजों में सर्वश्रेष्ठ सुपर फूड भी माना जाता है।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। आगे हम जानना चाहेंगे कि श्री अन्न क्या है।
2: श्री अन्न छोटे दानों वाली अनाज और खाद्य फसलों का एक समूह है जिसमें रागी और बाजरा जैसे प्रमुख श्री अन्न शामिल होते हैं, जबकि कोदो, सवा, कुटकी और कांगनी ये अन्न छोटे श्री अन्न में की श्रेणी में इनको रखा जाता है
1: जी।
2: इनकी उच्च गुणवत्ता के कारण इन्हें पौष्टिक अनाज का नाम भी दिया गया है
1: जी।
2: जिसमें पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, आहार, फाइबर, विटामिन B और खनिज भी

0: शामिल है
1: जी।
0: श्री अन्न अपने ग्लूटेन मुक्त पोषण संरचना के कारण चावल और गेहूं से असाधारण रूप से बेहतर होते हैं
1: जी।
0: इसमें कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ प्रोबायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं जो फिटनेस और स्वास्थ्य को अच्छा रखने में भूमिका निभाते हैं
1: जी। बिल्कुल, कितने प्रकार के श्री अन्न पाए जाते हैं?
0: बहनों, श्री अन्न मोटे तौर पे दो प्रकार के होते हैं, जैसे बड़े जो श्री अन्न होते हैं और एक होते हैं छोटे श्री अन्न। तो बड़े श्री अन्न होते हैं जो ज्वार, बाजरा और रागी इसमें शामिल होते हैं, और जो छोटे श्री अन्न होते हैं जिनको अपन मिलेट्स बोलते हैं, उसमें कोदो, सवा, कांगनी और कुटकी भी शामिल है
1: जी। जी, श्री अन्न के स्वास्थ्य लाभ व संभावित स्वास्थ्य लाभ क्या हैं?
0: श्री अन्न जो ग्रहण करता है उसमें जो अपने स्वास्थ्य के लिए जो लाभदायक होता है वो सब पाचन तंत्र में मदद करता है
1: जी।
0: और जिनको हृदय की यानी जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है उसमें भी ये सहायता करता है। अगर आप मूड देखा जाए, जैसे आपका पेट बहुत भारी लग रहा है और आप अगर मिलेट्स लेते हो तो पेट में थोड़ा सा हल्कापन महसूस होता है तो मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है
1: जी।
0: और डायबिटीज वालों के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी है और मोटापे को भी नियंत्रित करता है और ऑक्सीडेटिव तनाव जैसे शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुँचाता है उसमें श्री अन्न ये काम करता है
1: जी। जी,
0: और जैसे अगर संभावित लाभ देखा जाए तो जैसे कैंसर होता है तो कैंसर को भी रोकता है ये, घाव भरने में भी मदद करता है, हड्डियों को स्वस्थ रखता है और फफूंद रोधी और सूक्ष्म रोधी क्रिया में भी सहायक रहता है
1: जी। बहुत अच्छी जानकारी, हम आगे बढ़ेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि श्री अन्न सफ़ेद चावल से बेहतर क्यों है?
0: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो श्री अन्न है इस जो सफ़ेद चावल से इसलिए बेहतर है क्योंकि 100% 100% इसमें अधिक फाइबर होता है जो पाचन में बहुत सहायक होता है, 200% अधिक प्रोटीन होता है जो मांसपेशियों और स्वस्थ शरीर के निर्माण में भी बहुत सहायक होता है, और 300% अधिक लोहा होता है जो रोग प्रतिरोधक प्रणाली को बेहतर बनाने में सहायक होता है, और 600% अधिक फोलेट रक्त परिसंचलन और शरीर के विकास में भी बहुत सहायक होता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा। और अगर हम आपसे जानना चाहें कि श्री अन्न क्यों लें हम,
0: हाँ,
1: तो आप क्या कहना चाहेंगी?
0: श्री अन्न को अन्य अनाजों की तुलना में अधिक पौष्टिक तत्व माना गया है क्योंकि इसमें प्रोटीन, फाइबर, सूक्ष्म पोषक और होने के कारण अक्सर इन्हें पोषक अन्न भी कहते हैं। इनमें कार्बन, जल कणों की मात्रा कम होती है तथा ये शुष्क परिस्थितियों में भी, कम उपजाऊ भूमि में भी ये उग जाते हैं।
1: कम परिश्रम भी लगता है।
0: हाँ, कम परिश्रम भी लगता है और बहुत बहुत कम पानी में भी इसकी खेती हो जाती है,
1: आसानी से हो जाती
0: है। हाँ
1: जी।
0: और जो श्री अन्न है घरेलू उपयोग में भी लाए जाने वाले पौधों में से एक है और इसका जो अफ्रीका और एशिया में लाखों परिवारों में पारंपरिक भोजन भी इसका कर रहे हैं। आज अफ्रीका और एशिया के विकासशील देशों में 90% से भी अधिक लोग श्री अन्न का उत्पादन करते हैं और अपने दैनिक जीवन में इसको लेते हैं। कई देशों में श्री अन्न की खेती भी होती है और इसकी खाद्य एवं पोषक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की क्षमता को भी महसूस नहीं किया जा रहा।
1: हम आपसे आगे बढ़ेंगे और जानना चाहेंगे कि श्री अन्न के प्रमुख स्वास्थ्य लाभ क्या हैं?
0: ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने मैडम। जो श्री अन्न होते हैं उसके स्वास्थ्य में तो हमेशा लाभ ही रहता है क्योंकि मिलेट्स का ऐसा रहता है जो शरीर में कभी उसका दुष्प्रभाव नहीं होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा देखा जाए तो उसके प्रमुख स्वास्थ्य लाभ होते हैं जैसे पाचन में सुधार और वजन कम करना। श्री अन्न जो होता है वो प्रचुर मात्रा में फाइबर बहुत होता है इसमें, जो तेज़ी से वजन कम करने और पेट की समस्याएँ जैसे गैस, कब्ज से राहत दिलाने में बहुत सहायक होता है, और जो शुगर पेशेंट है जिनको डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल रहता है उसको भी यह नियंत्रण करता है, ब्लड शुगर को नियंत्रण करता है, और इसमें विटामिन B3 होती है जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी मदद करता है
1: जी।
0: और इसके अलावा जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं जिसको, प्रोटीन और खनिजों में भरपूर होने के कारण यह शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ाता है
1: जी।
0: जहाँ पर अब दिल की बात किया जाए, जो हृदय अपना स्वस्थ रखते हैं या दिल की धमनियों के लिए भी फायदा रहता है और हृदय संबंधी समस्याओं के खतरे को भी ये कम करता है
1: जी।
0: और आयरन और कैल्शियम इसमें भरपूर होता है, खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं जो एनीमिया जैसी समस्याओं को भी दूर करने में मदद करते हैं
1: जी। जी, मतलब सेहत से भरपूर है हमारे श्री अन्न।
0: श्री अन्न,
1: मैं आगे बढ़ूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि कंगनी श्री अन्न से क्या

0: जी हाँ
1: कंगनी श्री अन्ना यानी कंगनी ये मिलेट्स ही है जिसको श्री अन्न का नाम दिया गया है। कंगनी को अंग्रेजी में फॉक्सटेल मिलेट्स कहा जाता है जो भारत में सबसे पुराने और पौष्टिक मोटे अनाज के रूप में होता है। यह ग्लूटेन मुक्त है और प्रोटीन आयरन कैल्शियम फाइबर और विटामिन B12 से भी भरपूर होता है और यह मधुमेह हृदय रोग संबंधी पाचन संबंधी समस्याओं के लिए भी ये बेहतरीन सुपर फूड इसको कहा जाता है।
0: जी
1: और जिसमें हम देखा जाए तो मधुमेह में क्या रहता है कि ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में भी मदद करता है, हड्डियों की मजबूती में कैल्शियम और आयरन हड्डियों को मजबूत बनाता है,

0: होते हैं तो लंबे समय तक पेट भरा महसूस होता है, जिससे वजन नियंत्रित रहता है। और हृदय संबंधी अगर देखा जाए तो विटामिन B12 और अन्य पोषक तत्व होने के कारण भी हृदय रोग के खतरे को ये कम करता है। पाचन में भी सुधार करता है क्योंकि इसमें मौजूद फाइबर पाचन को दुरुस्त रखता है।
1: जी जी, हम आगे बढ़ेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि हरी छोटी कंगनी श्री अन्न से हम क्या समझें।
0: हरी कंगनी ये भी एक छोटा अनाज होता है, ये भी पौष्टिक होता है। यह पाचन, वजन नियंत्रण और हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें भी फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। ये भी प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन से भरपूर होते हैं। इसकी विशेषता ये है कि इसके पत्ते चौड़े होते हैं और यह 80 से 100 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी ऊंचाई लगभग 2.53 तक होती है। और स्वास्थ्य में लाभ के लिए देखा जाएगा तो ये हड्डियों को मजबूत बनाता है, पाचन में भी सुधार लाता है, मधुमेह को भी नियंत्रित करता है और इसमें आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और इसका उपयोग चावल की तरह बना के दलिया, खिचड़ी या उपमा के रूप में भी खाया जा सकता है, क्योंकि मिलेट्स के ये बहुत सारे प्रकार हैं जिसमें कोदो, कुटकी, कंगनी और सवा, ये सब मिलेट्स के प्रकार है जिसको श्री अन्न बोला गया है।
1: अच्छा, एक चीज मेरे जहन में आ रही है जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मिलेट्स हैं कैसे लेना चाहिए उन्हें।
0: हाँ, कोदो, कुटकी, मिलेट्स और सवा जो होता है ये मोटे और छोटे अनाज होते हैं। तो जैसे अगर अपन ग्रामीण स्तर में देखा जाए तो वो खीर बना के भी ले सकते हैं, उसको चावल के लिए भी उपयोग में ले सकते हैं, उसको उसका पोहा बना के भी ले सकते हैं, पाउडर बना के उसको आटा रूप में ले सकता, हलवा बन के भी उसको उपयोग में कर सकते हैं। हाँ। अपने दैनिक आहार में उसको शामिल कर सकते हैं। अगर इसका और इसकी प्रोसेसिंग की जाए तो इसका अपन पोहा बना के भी अपन इसको अपने दैनिक उसमें ले सकते हैं। जैसे कोदो का बन सकता है, कुटकी का पोहा बन सकता है। कोदो कुटकी के बारे में अगर अपन दोनों के फायदे के बारे में अगर बोलना चाहे तो कोदो जो रहता है इसमें उच्च फाइबर होता है और ये कब्ज से भी राहत होता है, वजन घटाने में भी ये काफी मदद करता है, हड्डियों को भी स्वस्थ रखता है। और जो कुटकी रहते हैं वो डायबिटीज पेशेंट उन लोगों को भी नियंत्रित करता है। सूजन है जिसको जलन की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उसको भी वह कम करता है। और बच्चों में जैसे अस्थमा को जो रोग होता है उनको कुटकी श्री अन्न खिलाएं तो उसमें भी ये ठीक रहता है,
1: फायदा
0: करता है। और फाइबर से भरपूर कुटकी भी है और कोदो भी है।
1: इसी तरह से बाजरा भी हम लोग श्री अन्न में लेते हैं। हाँ। तो इसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा हमारी बहनों को।
0: हाँ, बाजरा जो है उसको मोटा अनाज या बड़ा अनाज के रूप में लिया जाता है। ये स्वादिष्ट होता है और ये बाजरा हमेशा रोटियों के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि बाजरा पोषक तत्व का एक बड़ा भंडार है जिसमें 361 कैलोरी होती है। जैसे अगर अपन कहे जाए कि 100 ग्राम बाजरा अगर लेते हैं तो उसमें आप दूध की तुलना में 6 गुना अधिक मैग्नीशियम होता है, एक अंडे के बराबर प्रोटीन होता है, एक सेब के बराबर फाइबर होता है और बाजरा में आयरन की मात्रा पालक से 3 गुना अधिक होती है। और बाजरा के जो स्वास्थ्य के जो अपने शरीर में जो लाभ होते हैं तो उसमें भी है कि हृदय रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है, वजन घटाने में भी मददगार है, और जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको भी खतरा कम होता है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो बाजरा अपने दैनिक जीवन में ले सकते हैं, आहार के रूप में ले सकते हैं। जिनको डायबिटीज़ है उसको भी ये नियंत्रित करता है और मांसपेशियों को भी ये स्वस्थ रखने में मददगार मिलता है।
1: हमने अभी बाजरा की बात करी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। इसी तरह हम आपसे जानना चाहेंगे कि ज्वार क्या होता है और इसके क्या फायदे हैं।
0: ज्वार न केवल भारतीयों का मुख्य भोजन है बल्कि एक बहुउपयोगी मिलेट्स भी है। ज्वार न केवल स्वादिष्ट और पौष्टिक है बल्कि इसका चिकित्सीय प्रयोग भी है। ज्वार प्रोटीन से भरपूर ऊर्जा का भी अच्छा स्रोत है। इसमें बहुत सारा आयरन भी होता है और रागी की तरह यह भी सुपाच्य और योग्य आरोग्य वर्धक है। 100 ग्राम ज्वार के बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आप 100 ग्राम ज्वार आप लेते हैं अपने इसमें तो चावल की तुलना में 2 गुना फाइबर होता है इसमें, एक अंडे के बराबर प्रोटीन की मात्रा होती है, केले की तुलना में 4 गुना मैग्नीशियम होता है और बादाम की तुलना में 3 गुना आयरन होता है। इसलिए ज्वार भी दैनिक आहार के रूप में आप ले सकते हैं मिलेट्स के।
1: आगे बढ़ेंगे और हम आपसे जानना चाहेंगे रागी के विषय में।
0: रागी भी एक मिलेट्स होता है जिसे ये अपने स्वाद और पोषण की वजह से सबसे ठंडा और समृद्ध मिलेट्स माना जाता है। और इसमें विशेष रूप से कैल्शियम पाया जाता है जो हड्डियों व दांतों को मजबूत करता है। रागी है अन्य खनिजों और फाइबर से भी भरपूर होता है। इसमें विटामिन B1 और B2 होता है। रागी में

0: कैल्शियम की मात्रा यानी 100 ग्राम रागी में 344 मिलीग्राम कैल्शियम होता है और कई चिकित्सीय आहारों में ये लिया जाता है, ये बहुत ही सुपाच्य होता है
1: जी।
0: जैसे अगर अपन कहा जाए कि 100 ग्राम रागी के बारे में अगर आपको जानना है तो जैसे चावल और गेहूं की तुलना में अगर आप 100 ग्राम रागी लेते हैं तो 4 गुना आयरन होता है और चावल की तुलना में 10 गुना कैल्शियम होता है, गेहूं की तुलना में 2 गुना पोटेशियम होता है, गेहूं और चावल की तुलना में 3 गुना इसमें फाइबर होता है।
1: आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि श्री अन्न के पौष्टिक खाद्य उत्पाद कौन कौन से हो सकते हैं।
0: जैसे श्री अन्न है तो उससे भी अपन काफी सारी मिठाइयां बन सकती है, उससे हलवा बन सकता है और ज्वार से जैसे इडली बन सकता है, उपमा बन सकता है, डोसा बन सकता है और जो मिलेट्स होती है जिसको अपन श्री अन्न बोलते हैं वो सूजी भी बन सकता है, उसका पाउडर करके अपन पास्ता बन सकते हैं, उसका पाउडर बना के आप नूडल्स ले सकते हैं, उसको बेक करके अपन बिस्किट्स बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं, केक बना सकते हैं और अगर देखा जाए तो अपन उससे पिज्जा भी बना सकते हैं।
1: बिल्कुल सही, मतलब कि जो हम अनाज से गेहूं से बना के खा सकते हैं चीजें, उसी तरह जो हमारे श्री अन्न हैं, मिलेट्स हैं, उनसे हम हर तरह की पौष्टिक आहार बना सकते हैं जो स्वादिष्ट भी होंगे और बच्चों को आकर्षित करने वाले भी होंगे और निश्चित तौर पे ये हमारे पूरे परिवार की सेहत का आधार होंगे।
0: हाँ जी।
1: तो अरुणा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमें पोषण का खजाना मिलेट्स या श्री अन्न विषय पर इतनी महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी दी। हमारी बहनें निश्चित ही इस जानकारी का भरपूर फायदा उठाएंगी और अपना स्वयं का और अपने परिवार की सेहत का पूरा पूरा ख्याल रखेंगी। धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: बैनहरों अव्यपन ने सुनी जो भेंट वार्ता पोषण का खजाना मिलेट्स या श्री अन्न ई विषय पे, विशेषज्ञ हती अरुणा सोमकुवर, इनसे बातचीत करी हती अंशु तलेठे बैन ने। देखो कहा है कि हर साल 21 मई को भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, जो दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। इको उद्देश्य है आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ देश के संकल्प को मजबूत करवे के लाने लोगन को जागरूक करबो। बता दें कि 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री दूर में एक आतंकवादी हमला में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की दुखद हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद केंद्र सरकार ने जादिना को आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में घोषित करो हो, तो इको उद्देश्य है युवाओं को आतंकवाद और हिंसा की संस्कृति से दूर रखवो, आम लोगों के कष्टन को उजागर करवो और देश के हित में पड़वे बारे नकारात्मक प्रभाव के बारे में सोई जानकारी फैलावो। ई मौका पर सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों में आतंकवादी विरोधी प्रतिज्ञा ली जाती है और संगे संगे कई सारे कार्यक्रमों को आयोजन सोई करो जाता है। सो जो तो हती बातचीत और अब अपन सुन लेते हैं जो गारी, इको गांव है मेंदराम खैरैया ने।

मैं ना हरों ग्राम लक्ष्मी होए और खापे पनाबे की कोनो बात ना होए। तो देखो का है कि बहुत ही जोर की गर्मी पड़ रही है। सो ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं नींबू पुदीना की शिकंजी बनाबे की विधि। इके लाने काका लेना है एक बड़ो ग्लास ठंडो पानी, एक नींबू पुदीना की पत्तियाँ 8 से 10 बारीक कटी भाई या पीसी भाई, शक्कर लेने हैं 3 चम्मच या जितनी आप और लेत हो, कालो नमक आधी छोटी चम्मच, सिको जीरा को पाउडर आधी छोटी चम्मच और बर्फ़ के टुकड़ा। बनावे के लाने एक ग्लास ठंडो पानी लेके इमें नींबू को रस निचोड़ देवे, इमें चीनी कालो नमक भुनो भर जीरा डाल के मिला लेवे, पुदीना की पत्तियों को हाथन से मसल के या पीस के मिला देवे और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से तब तक मिलावे जब तक कि शक्कर पूरी तरह से ना घुल जाए, और सबसे बाद में बर्फ़ के टुकड़ा डालें और ठंडो ठंडो पीवें और अपने घर में सभी को पिवाएं। सो जो तो हती व्यंजन विधि आज की। और अब आप और उनको कछु हम सलाह दे देते हैं, हल्की सिंचाई करके मिट्टी में नमी बनाए रखें, गर्मी एवं नमी की कमी से बचाव करवें, खेत को खरपतवार मुक्त बना के रखें तथा कीटों जैसे कि सफ़ेद मक्की माहू फली छेदक की नियमित निगरानी करके कीटनाशक उनको प्रयोग करें, पीले स्टिकी ट्रैप लगावें जिससे कि प्रकोप होवे पे नीम को तेल या और दवाइयों को सही छिड़काव करवें, पीच शेरा मोजिक इस संक्रमित पौधन को तुरंत निकाल के नष्ट कर देवे और संगे संगे अनुशंसित उर्वरक को प्रयोग सुई करो जाए, आम में पुष्पन अवस्था में नियमित सिंचाई करवे, मल्चिंग अपनाएं ताकि नमी बनी रहे और फूल और फल झड़बो कम हो जावे, कीट जैसे कि हॉपे मिली बग और रोग जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू एंथ्रेक्नोज की निगरानी करवे, कीट नियंत्रण के लाने नीम को तिल और इमीटाइक्लोप्रोड को नियंत्रण के लाने छिड़काव करें, संगे संगे भिंडी में शाकीय अवस्था में नियमित सिंचाई करवें, खरपतवार को नियंत्रण करवें, पानी की कमी से बचावें और कीटन की निगरानी करें, ई में भी लौकी में शाकीय अवस्था में मिट्टी में नमी को बनाए रखें, उचित जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करवें, फल मक्की के नियंत्रण के लाने फेरामोन ट्रेप लगावें, संक्रमित फलन को हटावे और कीट नियंत्रण करवे के लाने, ई में भी नीम को तेल और मैनकोजेब और सल्फर को उपयोग करवें। और पशुपालन सलाह, पर्याप्त स्वच्छ पेयजल पशुओं को उपलब्ध करावें, उन्हें छायादार स्थानन पर रखवें, हरो चारा सूखो चारा खनिज मिश्रण इन सभी चीज़ों को संतुलित मात्रा में दे पर शुरू करें। सो जो तो हती बातचीत और सलाह और ई के संगे आज को ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम हम इतना ही समाप्त करते हैं। स्वीकार करो पूनम बैन की राम राम।

0: ग्रामलक्ष्मी कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सुर्खियों में के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्राची प्रिया। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की 5 देशों की महत्वपूर्ण विदेश यात्रा और उसके प्रमुख निष्कर्षों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई से 20 मई तक 5 देशों की यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा के प्रत्येक चरण की विस्तृत

0: कवरेज आकाशवाणी के संवाददाताओं ने की। कार्यक्रम में हम उनकी विशेष रिपोर्ट भी आपको सुनाएंगे। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों की यात्रा पूरी कर दिल्ली वापस लौटे। 5 देशों की इस यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 15 मई को संयुक्त अरब अमीरात से की। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति और स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान की ओर से यूएई पर हुए हमलों की निंदा की और हॉर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित तथा निर्बाध परिवहन के महत्व पर भी जोर दिया। दुबई में प्रसार भारती के विशेष संवाददाता विनोद कुमार ने इस यात्रा को संयुक्त अरब अमीरात से कवर भी किया। आइए सुनते हैं उनकी ये विशेष रिपोर्ट।
1: इस दौरे में कई महत्वपूर्ण समझौता पर साइन किया गया। एनर्जी के मोर्चे पर इंडिया की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिसर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने एक कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत इंडिया की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिसर्व में यूएई का हिस्सा बढ़ाकर 30 मिलियन बैरल्स तक पहुंचा जाएगा। ये इंडिया की एनर्जी सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा और जरूरी कदम है। साथ ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अडनोक के बीच एक लॉन्ग टर्म एलपीजी सप्लाई अरेंजमेंट भी संपन्न हुआ, जो दोनों देशों की एनर्जी साझेदारी को और मजबूत करता है। डिफेंस कॉरपोरेशन के क्षेत्र में भी एक बड़ी पेश रकम हुई। दोनों देशों ने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप का फ्रेमवर्क साइन किया, जिसमें इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस और इंटेलिजेंस एक्सचेंज शामिल है। ये वो एरियाज हैं जो आज के दौर में दोनों देशों के लिए तेजी से स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी बनता जा रहा है। निवेश के मोर्चे पर यूएई ने इंडिया में 5 अरब US डॉलर्स की कमिटमेंट का ऐलान किया। 3 अरब डॉलर्स इमरेट्स न्यू डेवलपमेंट बैंक से आरबीएल बैंक में आएंगे। दोनों देशों ने गुजरात की वडिनार में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने का भी एग्रीमेंट किया और साथ ही मैरीटाइम सेक्टर के लिए एक स्किल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क भी तैयार किया गया है। ये दोनों कदम इंडिया में रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे और देश की इंडस्ट्रियल सामर्थ्य को भी नए ऊंचाइयां देंगे। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दूसरे चरण में नेदरलैंड्स पहुंचे। ये उनकी नेदरलैंड की दूसरी यात्रा थी। नेदरलैंड्स यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग को लेकर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन की मौजूदगी में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत दोनों कंपनियां गुजरात के धोलेरा में भारत के पहले सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र के विकास में साथ मिलकर काम करेंगी। इस यात्रा के दौरान कई अन्य अहम समझौते और घोषणाएं भी हुई, जिनके दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इन उपलब्धियों पर विस्तार से जानकारी के लिए आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता सुश्रुत शर्मा की ये विशेष रिपोर्ट।
2: व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा और यूरोप में सबसे बड़ा निर्यातक देश है। वर्ष 2024-25 में दोनों देशों का व्यापार 27.8 अरब डॉलर का रहा। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक है। यह यात्रा केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है। हाल में संपन्न भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद इससे व्यापक भारत यूरोपीय संघ संबंधों में भी मजबूती आने की संभावना है। नीदरलैंड्स में यूरोप की एक बड़ी भारतीय मूल की आबादी रहती है। यहाँ 90,000 से अधिक NRI, PIO और 2,00,000 से अधिक सूरीनामी हिंदुस्तानी हैं, जो डच समाज में पूरी तरह से एकीकृत हैं। प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय प्रवासी भारत नीदरलैंड्स साझेदारी का जीवंत सेतु हैं। सूरीनामी हिंदुस्तानी समुदाय के लिए OCI कार्ड की पात्रता 4थी पीढ़ी से बढ़ाकर 6ठी पीढ़ी तक करने के निर्णय का प्रवासी समुदाय ने उत्साह पूर्वक स्वागत किया। नीदरलैंड्स यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने अफसली डाइक बांध का दौरा किया। यह दौरा कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड तकनीकी सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है। अफसली डाइक के 90 से अधिक वर्षों के अनुभव का लाभ उठाते हुए नीदरलैंड्स इस परियोजना को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। अफसली डाइक 32 किलोमीटर लंबा समुद्री बांध है, जिसने डच जल रक्षा तथा भूमि सुधार को नई परिभाषा दी है। कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खंबात की खाड़ी पर लगभग 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाया जाएगा। ये नर्मदा, साबरमती, माही और ढा

0: गडर जैसी प्रमुख नदियों के मीठे पानी को रोकेगा और एक विशाल तटीय जलाशय का निर्माण करेगा। ये परियोजना कृषि और औद्योगिक विकास के लिए बंजर भूमि के विशाल क्षेत्रों का सुधार करेगी। इस यात्रा के परिणामों को 17 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपलब्धियों के तौर पर देखा जा सकता है। इनमें शामिल हैं स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को गति देने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पर एक संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रूपरेखा, आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए दुर्लभ खनिज सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना के माध्यम से जल प्रबंधन पर डस्ट सहयोग, कृषि और कौशल विकास के अंतर्गत त्रिपुरा में पुष्प कृषि और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच उत्कृष्टता केंद्र, शिक्षा और अनुसंधान के लिए नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालयों के बीच समझौता ज्ञापन और स्वास्थ्य तथा सीमा शुल्क जैसे अन्य क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देना है। नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: श्रोताओं, नीदरलैंड्स की यात्रा संपन्न कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 मई को स्वीडन पहुंचे। प्रधानमंत्री की ये दूसरी स्वीडन यात्रा भारत स्वीडन संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुई, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाया। श्रोताओं, इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वो रहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। ये विदेशी शासनाध्यक्षों को दिया जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है, जो दोनों देशों के बीच गहरे लोकतांत्रिक और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक है।
2: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
1: आकाशवाणी की संवाददाता साक्षी सिंह प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने के लिए स्वीडन में थी। आइए सुनते हैं उनकी ये विशेष रिपोर्ट।
3: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के लिए एक संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी ये यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। दोनों देशों ने संयुक्त नवाचार साझेदारी 2.0 की शुरुआत की और AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: स्वीडन की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री 18 मई को नॉर्वे पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्लो स्थित रॉयल पैलेस में नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम से मुलाकात की और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और इंडिया नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। श्रोताओं, नॉर्वे की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की जनता और वहाँ के नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान केवल उनका नहीं बल्कि भारत और नॉर्वे के बीच लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों और दोनों देशों की जनता के बीच आपसी विश्वास तथा स्नेह का सम्मान है। आइए सुनते हैं श्रोताओं, आकाशवाणी संवाददाता संगीता गोलपोड़े की विशेष रिपोर्ट, जो इस यात्रा को कवर करने के लिए नॉर्वे में थी।
4: ओस्लो में आयोजित 30वें भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन ने भारत नॉर्डिक संबंधों को एक रणनीतिक आयाम प्रदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ

0: ओस्लो में आयोजित 30वें भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन में भारत नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक उन्नत करने का निर्णय लिया गया। स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी में भारत की विशाल क्षमता और नॉर्डिक देशों की विशेषज्ञता को साथ लाना इसका उद्देश्य है। नॉर्डिक ब्लॉक के देश हरित प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी और डिफेंस के क्षेत्र में विभिन्न विशेषज्ञता रखते हैं। शिखर सम्मेलन में प्रत्येक सदस्य की विशेषज्ञता के अनुसार सहयोग करने पर चर्चा की गई। नेताओं ने भारत के सागरमाला और महासागर कार्यक्रमों के माध्यम से सस्टेनेबल शिपिंग पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। भारत और नॉर्डिक देशों ने हाल ही में लागू हुए ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के मद्देनजर आर्थिक सहयोग को और गहरा करने का निर्णय लिया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि वे वैश्विक भू राजनीतिक उथल पुथल और आर्थिक तथा तकनीकी परिवर्तन के दौर में मिल रहे हैं। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और नॉर्डिक देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ निखिल कुमार।
1: 5 देशों की इस यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 20 मई को इटली पहुंचे, जहां उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ औपचारिक वार्ता की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को एक नए और उच्च स्तर पर ले जाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देशों ने व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग को नई गति देने का संकल्प लिया और वर्ष 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य दोहराया। सेमीकंडक्टर्स, स्वच्छ ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, फार्मा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। विज्ञान, नवाचार और एआई के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत में इनोवेटिव इंडिया नामक एक नए नवाचार केंद्र की स्थापना की भी घोषणा की गई। इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम तकनीक, ग्रीन हाइड्रोजन और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे भविष्य के क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने छात्रों, शोधकर्ताओं और कुशल पेशेवरों की आवाजाही बढ़ाने, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने और वर्ष 2027 को भारत इटली संस्कृति एवं पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने पर भी सहमति व्यक्त की।
2: आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की 5 देशों की ये यात्रा भारत और नॉर्डिक देशों के संबंधों को नए स्तर पर ले जाने और यूएई के साथ हमारे संबंध को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण साबित हुई। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी अनिकेत ने। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में यह कार्यक्रम अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है फिल्म संगीत। मुद्दत फिल्म का गीत सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। गीतकार इंदिवर, संगीतकार बप्पी लहरी।

और आइए आप सुनते हैं जावाज फिल्म का गीत। मनहर और साधना सरगम ने इस गीत को गाया है, इंदीवर ने गीत लिखा है और संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी।

इस गीत के बाद अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं संगीत फिल्म का गीत, अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज़ें, संतोष आनंद की शब्द रचना और संगीतकार आनंद मिलिंद।

लाल दुपट्टा मलमल का। इस फिल्म का गीत सुनते हैं अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में। मजरूह सुल्तानपुरी ने गीत लिखा है, संगीतकार हैं आनंद मिलिंद।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए 1942 ए लव स्टोरी फिल्म का गीत। कुमार सानू की आवाज़, जावेद अख्तर के बोल और आर डी बर्मन का संगीत।

0: कुमार सानू के गाए 1942 ए लव स्टोरी फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, समय है अंतराल का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: कवि श्री राग तेलंग,
4: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीत में संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है, और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
5: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
6: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन

स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
3: अमेरिका एंड इंडिया,
4: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
3: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में LPG प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन LPG देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुशील शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
4: पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और

0: पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
2: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशान के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन होजमार्क कजर्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit guarantees advantages for every segment of the society. Asserts world is looking towards India as a trusted partner. Railway Minister Ashwini Vaishnav stresses on enhancing technology-driven security systems and improving operational security. Government reiterates that country has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG. Centre issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. India-Africa Forum Summit postponed. IMD issues red alert for heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for tomorrow. And in IPL cricket, match between Gujarat Titans and Chennai Super Kings underway in Ahmedabad. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal today said that the world is looking towards India as a trusted partner.

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बे। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 5 मुल्कों का दौरा समाज के हर तबके के लिए फायदों की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देख रही है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निजाम को बढ़ाने और सिक्योरिटी की कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। हुकूमत ने एक बार फिर कहा है कि मुल्क में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और LPG की खतरखा सप्लाई मौजूद है। मरकज ने इबोला से मुतासर मुल्कों से आने वाले और वहां से गुजर कर आने वाले मुसाफिरों के लिए सेहत से मुतालिक एडवाइजरी जारी की है। भारत अफ्रीका फोरम समिट मुलतवी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल गर्मी की सख्त सूरत हाल से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर और BJP लीडर पीयूष गोयल ने आज कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद शराकतदार के तौर पर देख रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 5 मुल्कों के दौरे पर

0: नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि यह दौरा समाज के हर तबके के लिए फायदों की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम का दौरा इस बात का मजहर है कि भारत आलमी मंजरनामे पर मजबूती से खड़ा है। उन्होंने बताया कि सफर के दौरान 57 अहम माहदों पर दस्तखत किए गए, जिनमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी का मुत्तहिदा अरब अमारात का वादा शामिल है। उन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुबैना तौर पर उनकी तौहीन-आमेज बयान के लिए उनकी नुक्ताचीनी की। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा है कि भारत और अमरीका फितरी शराकतदार के तौर पर काम कर रहे हैं और कई शोबों में एक दूसरे की तकमील कर रहे हैं, जिनमें टेक्नोलॉजी इख्तिरात, इंतहाई दकीक नौयत के दिफा, डिजिटल डाटा मराकज, क्वांटम कंप्यूटिंग और तिब्बी आलात शामिल हैं। नई दिल्ली में अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सालाना लीडरशिप समिट से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी बाहमी एतमाद और मुश्तरका इक्तसादी मफादात के सबब मुस्तहकम हुई है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत आलमी कंपनियों के लिए एक भरोसेमंद फ्रेमवर्क मुहैया करता है और इसमें आला पैमाना, सलाहियत और मार्केट के मौके शामिल हैं। उन्होंने आलमी सप्लाई चेन को मुस्तहकम करने के सिलसिले में एमएसएमई के रोल को उजागर किया। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने फील्ड अफसरान के साथ नई दिल्ली में आज एक आला सतह की सिक्योरिटी के जायजे से मुतालिक मीटिंग की। मीटिंग के दौरान ये बात सामने आई कि रेलगाड़ियों में हाल ही में आग लगने के कई वाकयात की इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि इसमें समाज दुश्मन अनासिर शामिल थे। वजारत ने बताया कि इन वाकयात को इंतहाई संजीदगी से लिया गया है और रेलवे की तहफुजाती फोर्स पूरी सरगर्मी के साथ इसकी छानबीन कर रही है। टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निज़ाम को बढ़ाने, पूरे रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज को वसत देने और सिक्योरिटी कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। हुकूमत ने आज एक बार फिर यकीन दिलाया है कि भारत में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और एलपीजी की भरपूर सप्लाई है और रिफाइनरीज मांग पूरा करने के लिए अपनी ज्यादा से ज्यादा सलाहियत का इस्तेमाल कर रही हैं। एलपीजी की पैदावार में इजाफा हुआ है और रिफाइनरीज में रोजाना तकरीबन 46 से 47 हज़ार टन एलपीजी तैयार की जा रही है। नई दिल्ली में मगरबी एशिया की सूरत हाल पर बैन वजारती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि सप्लाई मुस्तहकम है और सभी पेट्रोल पंपों पर दस्तियाबी को यकीनी बनाने के इकदाम किए जा रहे हैं।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हज़ार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: रसोई के मकसद के लिए एलपीजी की सप्लाई मुस्तहकम है और पिछले 3 दिन में 1,34,00,000 घरेलू एलपीजी सिलेंडर फराहम किए गए हैं। सेहत खिदमात के डायरेक्टोरेट जनरल ने मुतासरा मुल्कों से आने वाले या वहां से गुजर कर आने वाले मुसाफिरों के लिए इबोला बीमारी के मुतालिक एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक वो मुसाफिर जिन्होंने ज्यादा खतरे वाले मुल्कों, जिनमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा और जनूबी सूडान शामिल हैं, इनका सफर किया है और जिन्हें बुखार, सरदर्द, आसाब में जकड़न, बगैर किसी वजह के खून बहने और कह आने और निगलने में परेशानी का सामना है, तो उनसे जोर देकर कहा जाता है कि वो फौरन तिब्बी अमले से रुजू करें। एक रिपोर्ट।
2: हुकूमत ने कहा है कि तस्दीकशुदा इबोला मरीजों या मुश्तबा मरीजों से खून लेने के सबब बराह रास्त रबते में आए मुसाफिर इमिग्रेशन क्लियरेंस से कबल हवाई अड्डे की सेहत ऑफिसर या हेल्थ डेस्क से फौरन रुजू करें। हुकाम ने मजीद कहा है कि किसी मुसाफिर के अपनी आमद के 21 दिन के अंदर ऐसी किसी बीमारी के आसार पैदा होते हैं तो उसे फौरन तिब्बी मदद तलब करनी चाहिए और अपने पिछले सफर के मुतालिक हिफ्जान सेहत के अहलकारों को खबर देनी चाहिए। मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वो सेहत से मुतालिक बैन अक्वामी जाब्तों पर अमल आवरी और तहफ्फुज को यकीनी बनाने की गरज से सेहत जाँच और अवामी सेहत के इकदाम के सिलसिले में ताउन करें। दिल्ली से दीपेंद्र और अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: आलमी सेहत तंजीम का कहना है कि 21 मई तक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो और युगांडा में इबोला की एक अनोखी किस्म बुंदी बोगियों से मुतालिक 650 मुश्तबा मामलात का पता चला है, जिसमें 144 अमवात भी शामिल हैं। इतवार को आलमी सेहत तंजीम ने इसे बैन अलाक्वामी तशवीश की एक अवामी सेहत इमरजेंसी करार दिया था। अलबत्ता उसने कहा था कि ये वबाई सतह पर

0: नहीं है। सेहत की इस सूरत हाल के पेश नज़र भारत अफ्रीका फोरम समिट जो इस माह की 28 तारीख को नई दिल्ली में शुरू होना थे मुलतवी कर दिया गया है। इससे कबल आज ही भारतीय हुकूमत ने अफ्रीका में रहने वाले, सफर पर जाने वाले या अफ्रीकी मुल्कों से वापस आने वाले इबोला वायरस से मुतासर लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। अब तक भारत में किसी मामले की कोई इत्तला नहीं है। ज़िरात और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है कि भारत ने ज़रई पैदावार में इजाफा करके गजा की फराहमी को यकीनी बनाने के अमल को मुस्तकम करने और लाखों की किसानों की जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लाकर दुनिया के सामने एक नया मॉडल पेश किया है। रोम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को गजा और ज़रई तंजीम FAO एग्रीकोला मेडल से नवाजे जाने पर मुसर्रत का इजहार करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि ये एजाज नए भारत के बढ़ते हुए वकार की एक अलामत है।
1: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भूखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: चौथा भारत अफ्रीका फोरम समिट जो इस माह की 28 तारीख से 31 तारीख तक नई दिल्ली में मुनक़द होना था, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सेहत की सूरत हाल के पेश नज़र मुलतवी कर दिया गया है। वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा है कि भारत अफ्रीकी यूनियन के सदर नशीं और अफ्रीकी यूनियन कमीशन के दरमियान मुशावरत की गई, जिसमें समिट और उससे वाबस्ता सरगर्मियों को मुनक़द करने पर गौर खोज किया गया, जिसमें अफ्रीकी लीडरों और तरफेन की मुकम्मल शराकतदारी और शमूलियत को यकीनी बनाने की अहमियत का एतराफ़ किया गया। इस सलाह मशवरे के बाद दोनों फरीकैन ने इस बात से इत्तेफाक किया कि चौथा भारत अफ्रीकी फोरम समिट बाद की किसी तारीख पर तलब करना ज़्यादा मुनासिब होगा। समिट और इससे वाबस्ता मीटिंगों की नई तारीख बाहमी मुशावरत से तय की जाएगी और जल्द ही इस सिलसिले में ऐलान किया जाएगा। भारत ने अफ्रीका के आवाम और वहाँ की सरकारों के साथ अपनी यकजहती का इजहार किया है और कहा है कि वो अफ्रीका की CDC की क़्यादत वाली कोशिशों में तआवुन के लिए तैयार है, जिनका मकसद सेहत की मौजूदा सूरत हाल से निमटना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने दहशतगर्दी की तमाम शक्लों, खुसूसन सरहद पार की दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुत्तहिदा आलमी कोशिशों पर जोर दिया है। नई दिल्ली में दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक ब्रिक्स की वर्किंग ग्रुप के 11वें सालाना इजलास से खिताब करते हुए मगरबी खित्तों के खारिजी उमूर की वजारत के सेक्रेटरी CB George ने जोर देकर कहा कि दहशतगर्दों को पनाह देने और उनकी हिमायत करने वालों को जवाबदेह ठहराने की ज़रूरत है। सरहद पार दहशतगर्दी के हवाले से तशवीश का इजहार करते हुए MEA के सेक्रेटरी ने दहशतगर्द ग्रुपों की हिमायत करने और उनको पनाह देने वालों को जवाबदेह ठहराने की ज़रूरत पर जोर दिया है। ब्रिक्स की वर्किंग ग्रुप के 11वें सालाना इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने दहशतगर्दी की माली एयानत, इंतहा पसंदी और दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के गलत इस्तेमाल से निपटने के लिए मजबूत बैन अल-अक़वामी तआवुन की अपील की। भारत ने अक़वाम-ए-मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के इजलास में नस्ल कुशी वाले पाकिस्तान के तवील दागदार रिकॉर्ड को उजागर किया है। मुसल्लह महाज़ाराई में आम शहरियों के तहफ्फुज के बारे में सलामती कौंसिल के सालाना खुले मुबाहिसे में इजहार ख्याल करते हुए अक़वाम-ए-मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदा हरीश परवर्तने ने कहा कि गुज़श्ता दहाइयों के दौरान पाकिस्तान के गैर इंसानी तर्ज अमल से उसकी सरहदों और इससे बाहर भी तशद्दुद की हरकतों के जरिए दाखिली नाकामियों का रुख बाहर की जानिब मोड़ने की उसकी कोशिशों की अक्कासी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सितम ज़रीफ़ी की बात है कि पाकिस्तान ने, जिसका नस्ल कुशी की हरकतों का तवील दागदार रिकॉर्ड रहा है, उन मामलात का हवाला देने की कोशिश की है जो कुल्ली तौर पर भारत के दाखिली मामलात हैं। जनाब हरीश ने ये रायजनी उस वक्त की जब पाकिस्तान के नुमाइंदे ने बहस के दौरान जम्मू कश्मीर का मामला उठाया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के स्कूल तलबा के एक वफद ने आज उपराष्ट्रपति भवन में नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। नायब सदर जमहूरिया ने सरकारी स्कूलों के गरीब और पसमानदा तबके के तलबा को एक तालीमी दौरे पर दिल्ली लाने के कदम को सराहते हुए कहा कि इस तरह के दौरों से तलबा क्लासरूम से हटकर काफ़ी कुछ सीखेंगे और उनके नज़रियात में वसत पैदा होगी। नायब सदर जमहूरिया ने अपनी बातचीत में

0: लबा को मशवरा दिया कि वो अपने मौजूदा माली हालात की वजह से हिम्मत न हारे। उन्होंने ये भी कहा कि तालीम से वो अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के अहल बनेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 16वीं आसाम कानून साज असेंबली का स्पीकर मंतखब होने पर रंजीत कुमार दास को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में लोकसभा स्पीकर ने कहा कि जनाब दास का कानून साजी का वसी तजर्बा और अवामी खिदमत के लिए गैर मुतजलजल अज़्म असेंबली के वक़ार और जमहूरी रिवायात को मजबूत करेगा। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए शदीद से शदीद तरीन गर्म लहर की सूरत हाल के बारे में रेड अलर्ट किया है। इस तरह की सूरत हाल इस हफ्ते जारी रहेगी। इसी तरह के हालात दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और साहिली आंध्र प्रदेश में भी रहने का इम्कान है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से अख्तितामी हफ्ता तक गर्म लहर की सूरत हाल रहने के बारे में पेशगोई की है। भारतीय महकमे मौसमियात ने मगरबी बंगाल और उड़ीसा में आइंदा 2 से 3 दिन तक गर्म और मरतूब मौसम रहने की भी पेशगोई की है। IMD ने कहा है कि सब हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में इतवार तक शदीद से शदीद तरीन बारिश होने की तवक्को है। महकमे मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कल तक गरज चमक और झालाबारी के साथ तूफान की पेशगोई की है। इसी दौरान IMD ने अंडमान निकोबार जजायर, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, उत्तराखंड, साहिल कर्नाटक, कोंकण, गोवा और शिमाल मशरकी खत्ते में आइंदा 2 दिनों तक बिजली की चमक और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के बारे में भी पेशगोई की है। ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइस ने आज मुंबई में कौमी स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया और घंटी बजाने की रिवायती तकरीब में शिरकत की। इस प्रोग्राम में कलीदी खुतबा देते हुए उन्होंने एक बार फिर कहा कि कुब्रुस भारत और यूरोप के दरमियान एक कुदरती राहदारी है, नीज वो वसी तर मशरकी बहरे अरब और मशरक वस्ता के दरमियान एक राहदारी है जो उमंग, इख्तरा और मुस्तकबिल पर मरकूज खाके के साथ सियासी और इकतसादी इस्तेहकाम फराहम करती है। समाजी इंसाफ और तफवीज इख्तियारात की वजारत कल अच्छी कारकर्दगी वाली निगहदाश मईशत तख्लीक देने के एक वर्चुअल प्रोग्राम का इनेकाद करेगी। वजारत ने बताया कि इस तकरीब की अहम सरगर्मी मुअम्मर शहरियों के लिए जीवन ऐप और मुअम्मर अफराद की निगहदाश्त वाले करने वालों के बारे में जानकारी के शतायु डैशबोर्ड का आगाज करेगी। IPL क्रिकेट में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी एक मैच में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 230 रन का निशाना दिया है। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। गुजरात टाइटंस की तरफ से सुदर्शन ने 53 गेंदों में शानदार 84 रन बनाए। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 5 मुल्कों का दौरा समाज के हर तबके के लिए फवाइद की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देख रही है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निजामों को बढ़ाने और सिक्योरिटी की कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। हुकूमत ने एक बार फिर कहा है कि मुल्क में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और LPG की खातिर खास सप्लाई मौजूद है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। त्रिशूल फिल्म के गीत से शुरुआत कर रहे हैं। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यसुदास ने इस गीत को गाया है। गीत लिखा है साहिर ने और संगीतकार हैं खय्याम।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में आइए सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया गीत, फिल्म है प्रेम बंधन।

ये गीत जानी दुश्मन फिल्म से है, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ें, वर्मा मलिक की शब्द रचना और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

फिल्म अमर अकबर एंथोनी, किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आपकी फरमाइश कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका दोस्त प्रेम शरण खेमरिया। कार्यक्रम का पहला गीत स्वर्ग से सुंदर फिल्म के लिए फरमाइश की है। ग्राम महसवाड़ी, तहसील मलकापुर, महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े, अजय खिरोड़कर, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के सदस्य हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जौंधले, आरती जौंधले। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं स्वर्ग से सुंदर फिल्म का गीत किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज़ों में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर है। कटारा हिल्स भोपाल से योगेश्वर सिंह भारतीय, प्रेमबाई भारतीय, भैरव प्रताप सिंह भारतीय, लोकेंद्र प्रताप सिंह भारतीय, ललिताबाई भारतीय,

बावड़िया कला भोपाल से फरमाइश की है डॉक्टर शेखावत सिंह भारती, डॉक्टर गीता श्याम नानी ने, और साथ में ही इस गीत को सुनना चाहते हैं शाश्वत भारतीय और अमिता भारतीय, दुर्गा भारतीय। दिल्ली शहर मोरी गेट से इस गीत के लिए फरमाइश भेजी है कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ने। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं आपकी कसम फिल्म का गीत। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार राहुल देव बर्मन।

अगली फरमाइश धर्मात्मा फिल्म के गीत के लिए आई है, किशोर कुमार की आवाज़, इंदीवर की शब्द रचना और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं रेलवे कॉलोनी बठिंडा से जगमल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हरदिया खान, आसमा, सालिया, शोएब खान, मुज्तबा खान, रऊफ शाहिद, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से फरमाइशी पत्र भेजा है टीडी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। और कालका से फरमाइश की है शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल ने। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं धर्मात्मा फिल्म का गीत।

पुणे से फरमाइश करते हैं प्रियंका, पंकज, आर्य, चरुण और वरुण, बाबा साहेब बड़ोदे और चंद्रप्रभा बड़ोदे, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतिक विरक और मीका विरक। इंदौर से फरमाइश की है लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने, आप सभी ने फरमाइश की है बागी फिल्म के गीत की। इसे गाया है अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल ने। गीतकार हैं समीर और संगीतकार आनंद मिलिंद।

श्रोताओं, आपकी फरमाइश कार्यक्रम का आखिरी गीत हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर पेश है। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवाबगढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। पटेल नगर मलोट पंजाब से फरमाइश की है डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया ने। अगली फरमाइश है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया की। आप सभी ने फरमाइश की है लम्हे फिल्म के गीत की। लता मंगेशकर, इला अरुण और साथियों की आवाज़ें, आनंद बख्शी की शब्द रचना और शिवहरी का संगीत।

अब आज का आपके फरमाइश कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज सुनिए पंडित उल्हास काशालकर का ख्याल गायन, राग है यमन कल्याण।

0: अभी आपने पंडित उल्हास कसालकर का ख्याल गायन सुना, राग था यमन कल्याण। अब आज का राग रजनी कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।